Into the 李光补电台。第二首歌是 Jazz 八儿新唱的，请收听。

और अब समय हो गया है श्री रामचरितमानस पाठ के, संगीतमय पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 53वां।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार

0: काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
1: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सुयश सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
2: The government is supporting the sector through technology transfers.
3: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सुयश सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
3: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,

0: दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में, खासकर दक्षिणी हिस्सों में, वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
1: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मोडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister

0: में के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्रा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी मोहदे पर तेजी से अमल दरामद के तय अपने अज़्म को दोहराया है। आरबीआई ने कहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ। इस तरह ये 2025-26 में 221 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की हो गई। आज से जापान में 20वें एशियन गेम 2026 का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले के मौके पर आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तकर्रुरशुदा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुल्क भर में 45 मकामात पर 20वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। नए तकर्रुरशुदा उम्मीदवारों को वजारत खजाना, रेलवे, उमूर दाखिला, सेहत और खानदानी बहबूद और वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया जाएगा। 20वें रोजगार मेले के साथ ही मजमूई तौर पर तकरीबन 12,75,000 नौजवान तकर्रुरनामे हासिल करेंगे। रोजगार मेला नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी शराकतदारी को बढ़ाने को यकीनी बनाने के हुकूमत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेज यकजा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटियां, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती और आबोहवा की तब्दीली के मामलात पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी लागू करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, हुक्मरानी और इदारा जाती तआवुन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश किए जाएंगे। आदाद शुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत ने कुछ मुंतखब जिलों की मेहनत मार्केट का मुख्तसर जायजा पेश किया है। आदाद शुमार के कौमी दफ्तर ने जिला सतह की बुनियादी मेहनत मार्केट के अंदिये पहली बार जारी किए। तकरीबन 57.8% जिलों में खवातीन की अफरादी कुवत की शिरकत की शरह LFPR 40% या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ज्यादा आबादी वाले सरकर्दा 50% जिलों की कारकुनों की आबादी का तनासुब WPR 37.3% से लेकर 76.7% तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा आबादी वाले 100 जिलों के तहत गुजरात के शहर सूरत में LFPR और WPR की सबसे ज्यादा सतहें रिकॉर्ड की गईं, जबकि ये बिहार के शहर दरभंगा में LFPR और WPR की सबसे कम शरें थीं। गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल की सदारत में कमेटी को बिल की दफात के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन संजय जायसवाल ने कहा कि मीटिंग दोस्ताना माहौल में हुई और अरकान ने बहुत से सवाल किए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: कमेटी में स्पीकर की तरफ से नामजद लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। 12 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल पर मजीद गौर खोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सामने पेश किए जाने से इत्तेफाक किया था। बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदही पर मबनी बनाने के लिए 2010 के इस बिल में तरमीम करना है। भारत में स्वदेशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2026 में कारोबारी माहौल का ताजा तरीन सर्वे कराया था। उसमें 40 से ज्यादा आलमी मार्केट्स के कारोबारी माहौल में भारत का पहला मकाम रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के सोशल मीडिया में मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का कारोबारी माहौल इस्तेहकाम, तरक्की और कारोबार को आसान बनाने के लिए बेहतरीन पैमाने मुकर्रर कर रहा है। हालांकि आलमी सतह पर एक तरह का बहरान पाया जाता है। कारोबारी माहौल के 2026 के सर्वे में 21 मार्केट्स का गहराई से जायजा पेश किया गया है, जिससे बैरून मुल्क कारोबार के स्वदेशी कंपनियों के तनाजुर का एक वसी मंजर फराहम होता है। सर्वे का मकसद बुनियादी स्वदेशी बरामदाती मार्केट्स में इक्तसादी कारकर्दगी, खाके और कामकाज के हालात के तकाबुल के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करना है। इस जायजे में कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस भी जाहिर किए गए हैं और उन स्वदेशी कंपनियों के लिए मौके की निशानदेही भी की गई है जो नई मार्केट्स में दाखिले या मौजूदा मार्केट्स में तौसी में गौर खौस कर रही हैं। नंदीग्राम असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक पुराने अराजी के हुसूल के खिलाफ तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सराय ने बताया कि इस मामले में प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। 2007 की नंदीग्राम तहरीक से मुतालिक मुख्तलिफ मामलों में मुबैना तौर पर उनका नाम सामने आया था। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया है और इसके लिए बीजेपी पर बदले की सियासत का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी ने इन इल्जाम को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर जनाब पीयूष गोयल ने भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मोहदे CEPA पर तबादला ख्याल के लिए कनाडा के बैन अलाक्वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ मीटिंग की। कल नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान फरीकैन ने बातचीत में तेजी लाने और मोहदे की जल्द अज जल्द तकमील की यकीन दहानी की। तवक्को है कि CEPA सामान, खिदमात, सरमायाकारी और इक्तसादी तावुन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इसे एतमाद का इजहार किया कि CEPA की जल्द तकमील से दोतरफा तिजारत और भारत कनाडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल होगी। भारत के खलाई शोबे की असलाहत जो भारत की खलाई पॉलिसी 2020 में शुरू की गई थी, उससे मुल्क का खलाई प्रोग्राम हुकूमत की इजारादारी से एक मुतहर्रिक मुकाबला जाती सरकारी प्राइवेट इको निज़ाम में तब्दील हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: खलाई शोबे की असलाहत से खलाई टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में मदद मिल रही है। खला से मुतालिक स्टार्टअप गैलेक्स आई, जिसकी बुनियाद IIT मद्रास में इंजीनियरों की एक टीम ने रखी थी, उसने मिशन दृष्टि तैयार किया है जो दुनिया के पहले ऑप्टो SAR सैटेलाइट के तौर पर इसका एक सबूत है। खलाई शोबे में असलाहत सरकारी प्राइवेट शोबे के लिए हौसला अफजा हैं और इसमें खला के शोबे में इको निज़ाम तख्लीक देने और कामकाज में इजाफे में मदद मिल रही है। बेंगलुरु से सुधांद्रु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात साल ब साल की बुनियाद पर 2025-26 में 8.2% इजाफे के साथ 221.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT पर मबनी खिदमात की बरामदात से मुतालिक कल शाया हुए सालाना सर्वे के मुताबिक 7,569 सॉफ्टवेयर बरामदकार कंपनियों से सर्वे के लिए राबता किया गया, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियों समेत 2,363 कंपनियों ने रद्देअमल जाहिर किया। इन कंपनियों का मुल्क की कुल तखमीना सॉफ्टवेयर बरामदात में तकरीबन 89% हिस्सा है, जो मस्कूरा साल के दौरान भारत की मजमू सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात का 2/3 से ज्यादा है, जबकि BPO खिदमात IT से वाबस्ता खिदमात की बरामदात के सबसे बड़े जुजू के तौर पर बरकरार रही। अमरीका को की गई 54.1% बरामदात के साथ अमरीका भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट रहा है। इसके बाद यूरोप 31.8% भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि बर्तानिया का हिस्सा कुल बरामदात का 15.4% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमत ज्यादातर ऑफ साइड मोड के जरिए फराहम की

0: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी सुनने वालों को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, दर्द एक सामान्य अनुभव है, लेकिन जब ये दीर्घकालिक हो जाता है तो वो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इस कार्यक्रम में हम दीर्घकालिक दर्द के कारणों, लक्षणों और प्रबंधन के तरीकों पर बातचीत करेंगे। हम विशेषज्ञों से जानेंगे कि कैसे हम इस समस्या से निपट सकते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आइए सुनिए ये कार्यक्रम। विषय है दीर्घकालिक दर्द, कारण, लक्षण और प्रबंधन। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नम्रता डबास, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेन मेडिसिन हैं, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीप दिवांशु लाल, आप कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन में। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं मंजीत कौर।
1: सर, आपका और मैम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर दबास आपसे, और ये जानेंगे कि दीर्घकालीन दर्द क्या होता है।
3: देखिए, दर्द दो तरह के होते हैं। एक एक्यूट, मतलब कि आपको कोई भी चोट लगी या आपकी कोई भी सर्जरी हुई, उसके बाद जो दर्द होता है उसको बोलते हैं हम एक्यूट पेन। वो नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का, कि बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट किया। वो दर्द यूजुअली विद इन 3 महीने खत्म हो जाते हैं दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, उन चीजों से ये वाले दर्द कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी दर्द 3 महीने से ज्यादा चल रहा है, मतलब हाँ, आपकी जो चोट लगी थी वो हील हो चुकी है, सर्जरी हुई थी वो ठीक हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन उसके बाद भी वो दर्द चले जा रहा है या फिर बार बार आ रहा है, आप दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवाई छोड़ते हैं, वापस से दर्द आ जाता है, इस तरह का जब ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है फिनोमिना, उन सबको हम बोलते हैं क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन वो कुछ भी हो सकता है, कमर दर्द से रिलेटेड हो सकता है, घुटना, कूल्हा, कंधा, ये वाले दर्द हो सकते हैं, कैंसर का दर्द हो सकता है, या फिर एक एंटिटी होती है ट्राइजमिनल न्यूरालजिया जिसमें फेस का दर्द होता है वो हो सकता है, या इस तरह से किसी भी कोई भी बीमारी से रिलेटेड पेन जो कि बहुत लंबे समय से चले जा रहा है, वो सब दर्द के कारणों में क्रोनिक पेन में आते हैं।
1: तो ये तो था क्रॉनिक पेन, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर लाल से और जानना चाहेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं।
2: सो क्रॉनिक पेन हम अगर कैटेगराइज करें तो एक तो वो डिजेनरेटिव पेन, एज रिलेटेड पेन में आता है। दूसरा इसका कारण है न्यूरेल्जिया, नर्व पेन। तीसरा इसका कारण है कैंसर पेन। तो डिजेनरेटिव पेन में हमारा जैसे शरीर, हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में घिसाव होता है तो हमें दर्द महसूस होता है, तो उसमें आप स्पाइन पेन हो सकता है आपको, नी पेन, हिप पेन, एंकल पेन, शोल्डर पेन, और जो नर्व पेन होता है जैसे कि मैडम ने बताया ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, हर्पीस जॉस्टर पेन, पोस्ट सर्जरी नर्व एंट्रैपमेंट, ये पेन होता है, और तीसरा कैंसर पेन।
1: तो इसका उपचार किस तरीके से किया जाए जिससे कि जो आम जन लोग हैं उनको इससे आराम मिल पाए?
2: तो सबसे पहले अगर आपका कोई पेन है जो कि क्रॉनिक हो गया है, जो कि 3 महीने से पुराना हो गया है, उसमें जो कोर है वो है प्रिकॉशंस, परहेज, उठने बैठने के परहेज वो हमें ठीक से लेने चाहिए। उससे हमारे बहुत तरह के स्पाइन पेन और नी पेन और शोल्डर पेन, सामान कैसे उठाना है, टेबल को कैसे धक्का लगाना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, जूते कैसे पहनने हैं, कितना आगे झुकना चाहिए, कितनी बार, अगर कोई सामान नीचे गिर गया है तो उसको कैसे उठाना चाहिए, पूरा नीचे बैठ के उठाना चाहिए, आगे झुक के उठाएंगे तो आप स्पाइन को बहुत ज्यादा स्पाइन पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक तो हुआ परहेज, दूसरा हुआ वर्जिश, एक प्रॉपर सुपरवाइज्ड कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर मसल ट्रेनिंग। वो हर ज्वाइंट के लिए अपने अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के शेड्यूल्स होते हैं, तो आप अपने पेन फिजिशियन एंड उनकी टीम में जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन के डॉक्टर होते हैं आप उनकी सुपरविजन में कर सकते हैं। तीसरा, इन सब से भी ये पेन नहीं जाता तो मेडिसिंस, अथवा जो हम मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन करते हैं हम उसकी सहायता ले सकते।
1: और डॉक्टर डबास ये भी जानना चाहेंगे कि लक्षण कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से पहचाने क्रॉनिक पेन को?
3: देखिए, लक्षण जॉइंट स्पेसिफिक है। आप जैसे सपोज नर्व वाला दर्द है तो नर्व वाले दर्द में जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया या जैसे डॉक्टर दीप ने बोला कि हर्पीस जॉस्टर वाला पेन है, उसमें मरीज को जलन हो सकती है, चबक लग सकती है, करंट झटके लग सकते हैं, ये वाले न्यूरालजिक पेन है। डीजेनरेटिव वाले पेन है कि ठीक है, पेशेंट को उठना बैठना, रोजमर्रा के काम करना या रात में दर्द होना, सुबह जब उठते हैं बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होना, हील पेन है तो शुरू के कुछ स्टेप्स बेड से नीचे उतर के चलना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। देन कैंसर पेन हो गया 24/7 वाला पेन, कि वो सारा टाइम ही दर्द रहेगा। तो जो सिम्टम्स हैं वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस तरह के दर्द में यही आएगा। डिपेंडिंग अपॉन के क्या कॉज है पेन का, पेशेंट सिम्टम्स बताता है।
1: अगर हम टेस्ट की बात करें तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि डायग्नोज हो पाए, और ये किस तरीके का पेन है और उसका क्या उपचार है?
3: देखो, पेन का प्रॉपर जनरेटर ढूंढना कि दर्द का कारण क्या है, जैसे कि हर कमर दर्द शियाटिका नहीं होता, उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है। तो पेशेंट को पहले प्रॉपर, जब फिजिशियन के पास जाते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन करके हमारे माइंड में एक डायग्नोसिस बन जाता है कि दर्द का प्रमुख कारण क्या होगा, पेन जनरेटर क्या होगा। उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होती है, कोई भी स्कैन कराने हैं, एक्सरे कराने हैं, या फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज करानी है, कोई भी स्कैन उसके बेसिस पे किए जाते हैं। एंड देन उन स्कैन्स में क्या प्रॉब्लम आई है और हमने एग्जामिनेशन में क्या सोचा था, वो डायग्नोसिस को कोलैबोरेट किया जाता है। फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि दर्द का कारण क्या है, और उस पेन जनरेटर को ढूंढकर उस पेन जनरेटर का इलाज किया जाता है, ना कि हम सिम्टम्स को दबा दें। दर्द को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन दर्द का कारण क्या है वो कारण ढूंढकर उस कारण का ट्रीटमेंट करना, ये ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, बेहद ही अहम जानकारी। और डॉक्टर लाल, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में हमको कोई भी दर्द होता है तो हम सडनली कोई ना कोई पेन किलर ले लेते हैं, तो क्या एकदम पेन किलर लेना ठीक है या फिर उसका क्या कुछ उपचार सही दिशा में करना चाहिए?
2: खुद से पेन किलर लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती हैं वो जो इजीली अवेलेबल होती हैं तो वो सेफ मानी जाती हैं, लेकिन खुद से पेन किलर, सेम पेन के लिए बार बार पेन किलर लेना इज नॉट एडवाइजेबल एंड शुड नॉट बी टेकन, हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारे लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है। और दूसरा, आपको खुद से दवाई लेना, बार बार एक ही चीज के लिए दवाई लेते रहना, वो उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो हमें एक टाइम निकाल के पेन फिजिशियन के पास जाके हमारा पेन का जो जनरेटर है, पेन जनरेटर, जैसे कि मैडम बता रहे हैं कि पेन का सोर्स क्या है, पेन इजाद कहाँ से हो रहा है, वो क्लिनिकली हमें पता चल जाता है। एंड देन हम उसके रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, जांचें कराते हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गई, एक्सरे हुआ, एमआरआई हुआ, वो करा के हम आप पेशेंट को एक लंबे समय के लिए समाधान दे सकते हैं। हमारा पेन का जो साइकिल है ब्रेक करने का एक ही मंतव होता है, मस्कुलोस्केलेटल एंड डीजनरेटिव पेन में, जैसे कि जॉइंट्स पेन एंड स्पाइन पेन में, सो दैट पेशेंट को एक पेन फ्री इंटरवल दिया जाए लंबे समय तक के, सो दैट पेशेंट अपना रिहैबिलिटेशन, अपनी वर्जिश अच्छे से कर पाए और बार बार ये क्रॉनिक पेन के साइकिल में ना फंसे।
1: और डॉक्टर साहब, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जैसे तो आपने बताया कि सीधा डॉक्टर से पहले ही बात करें, बट जब वो घर पर है और घर पे उसे घरेलू उपचार से हम कहते हैं, तो क्या कुछ उसे करना चाहिए जिससे उसे रिलीफ मिल सके इंस्टेंट?
2: घरेलू उपचार अगर वो डॉक्टर साहब के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो उसमें एक राइस प्रोटोकॉल होता है, जिसमें रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, रेस्ट करनी चाहिए, नए दर्द को हमेशा आइस लगानी चाहिए, पुराने दर्द में हम गर्म सिकाई करते हैं। तो अगर कोई सूजन है या मान लो कमर में लचक आ गई, तो वो जो कमर में लचक आई है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है पेन का, हमारा ब्रेन बता रहा है कि वहां पे दर्द है, आप उसका ज्यादा उपयोग मत कीजिए, अगर ज्यादा उपयोग करेंगे उस शरीर के उस हिस्से का तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन इतना तो भगवान ने, नेचर ने हमें स्मार्ट बनाया है। लेकिन अगर वो पेन आपका घरेलू उपचार से, रेस्ट से, आइस लगाने से, या कोई घर पे दर्द की मलहम रखी है वो लगाने से नहीं आराम मिलता, तो जरूर आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। या वो दर्द आपका आपको काम नहीं करने दे रहा, आपको आपके काम पे नहीं जाने दे रहा है, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई नहीं करने दे रहा, और जो होम मेकर फीमेल्स हैं उनको अपना घरेलू काम करने में दिक्कत है, तो आपको अपने पेन फिजिशियन से मिलना।
3: इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी दर्द जो समझो आपने घरेलू उपचार लिया, 2-3 दिन उपचार लिया, लेकिन ना आपकी सूजन कम हुई ना आपकी तकलीफ कम हुई, उस वाले मरीज को श्योरली अपने पेन फिजिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दर्द का कारण कुछ और हो और जिसका इलाज बहुत ही मैंडेटरी है।
1: और जरूर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। और क्या क्रॉनिक पेन से पूरी तरह सामान्य जीवन जीना संभव है?
3: बिल्कुल, क्रोनिक पेन अगर सही टाइम पे उपचार लिया जाए तो सामान्य जीवन जीना बहुत संभव है। अगर इस दर्द का सही टाइम पे इलाज नहीं होता तो उससे मरीज का जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो खराब होती है, पेशेंट की स्लीप, नींद खराब होती है, पेशेंट की भूख पे फर्क पड़ता है, पेशेंट की जो सोशल लाइफ है वो खराब होती है। अगर आप सारा टाइम कमर दर्द से परेशान हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर निकलना बंद कर देंगे, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सोशली आइसोलेट हो जाएंगे। तो इसलिए क्रोनिक पेन का सही समय पे उपचार बहुत जरूरी है, और अगर सही समय पे उपचार करके प्रॉपर पेन जनरेटर का पता लगा के ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत हद तक सामान्य जीवन जीना बिल्कुल पॉसिबल है।
1: क्रोनिक पेन के प्रोसीजर के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे।
3: देखिए, क्रोनिक पेन के प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं, दो कैटेगरीज में आते हैं, रीजेनरेटिव थेरेपीज बोलते हैं या फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशंस या नर्व ब्लॉक, ये दो कैटेगरीज में यूजली मैनेज।

0: तरीके से क्रॉनिक पेन होता है ये भी जरूर जानना चाहेंगे।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। कुछ बीमारियों में तो क्रॉनिक पेन जो होता है वो हमें बीमारी दिखती है, लेकिन कुछ में आपको पेशेंट पेन बताता है लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं। अब इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, हर्पीज निकला, पेशेंट निकला, ठीक हो गया, 1.5 महीने में, 1 महीने में जख्म भर गए, लेकिन मरीज को 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। तो हमें कोई जख्म दिख नहीं रहा है, वो जख्म भर गया है, लेकिन मरीज को उस जगह पे फिर भी पेन चल रहा है। एक कंडीशन होती है फैंटम पेन। मान लो दुर्भाग्यपूर्वक किसी पेशेंट का हाथ या पैर कट जाता है, लेकिन हाथ कट जाता है, सिर्फ कंधे पे स्टंप बचता है, लेकिन उसको फिर भी हाथ में दर्द महसूस होता है या हाथ में खारिश होती है, इसको हम फैंटम पेन बोलते हैं। ये भी एक क्रॉनिक नर्व पेन है, जिसको हम क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन भी बोलते हैं। एक एंटिटी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें बहुत मुश्किल है कोई कारण ढूंढना, लेकिन स्टिल पेशेंट को पेन महसूस होता है एनी वेयर इन द बॉडी। उसमें बहुत रिसर्च है कि प्रोबेबली इन पेशेंट्स में देर इज लैक ऑफ हैप्पी हार्मोन्स, बिकॉज जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे को अंदर ही अंदर हमारे पेन को रिलीव करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से एंडोजीनियस मॉर्फिन निकलती है, बॉडी थोड़ी बहुत अफीम बनाता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको एक्सरसाइज करके बड़ा अच्छा महसूस होता है और छोटा मोटा क्रैम्प उनका बेटर भी हो जाता है। और अब बात करते हैं वो क्रॉनिक पेन कंडीशन जो हमें दिखती हैं, जैसे कोई पेशेंट चल रहा है, चलते चलते लिंप कर रहा है, पैर लड़खड़ा रहा है, तो कमर से उसको सैटिका हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, वो बैक पेन हो रहा है, किसी का कंधा नहीं मूव कर रहा, वो हमें दिख रहा है कि फ्रोजन शोल्डर है। तो इन सब कंडीशंस में हम जो मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशंस करते हैं, हर कंडीशन के लिए डिफरेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस हैं, जो कि डे केयर एडमिशन में ही होती हैं, इनको 24 आवर एडमिशन की जरूरत नहीं है, जो कि आज की डेट में हर गवर्नमेंट पैनल और हर इंश्योरेंस पैनल में वो सुविधा उपलब्ध है, इंक्लूडिंग रीजनरेटिव मेडिसिन। तो इससे हम पेशेंट को बहुत अच्छा पेन साइकिल ब्रेक करके दे सकते हैं और बहुत लंबे समय के लिए आराम दे सकते हैं।
0: मैम ये जरूर जानना चाहेंगे जैसे कि कंटिन्यूएशन मेडिसिन लेना ही क्या इसका एक समाधान है, क्या अदर ऑप्शंस पर जा सके, यानी कि एक्यूप्रेशर थेरेपी या कुछ और तरीके की हम लोग ट्रीटमेंट लें।
2: कि कॉन्टिन्यूस मेडिसिन लेना ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है। हमारे पास इस तरह से बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि इंडिया में अब जैसे वो क्वैक प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, तो कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जो बॉडी को डिपेंडेंट बना देती हैं और वो दवाइयां वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कॉन्टिन्यूसली लेते रहते हैं। कुछ सालों तक उनको बहुत अच्छा लगता है वो दवाइयां लेकर, और फिर कुछ साल बाद जब डिपेंडेंट हो जाते हैं वो दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं। तो दवाइयां लेना सोल्यूशन नहीं है। जैसे पहले भी हमने बात की कि हमें पेन जनरेटर ढूंढना बहुत जरूरी है और पेन जनरेटर ढूंढकर उसका इलाज करना बहुत मैंडेटरी होता है। हाँ, ये वाली जो पद्धतियां होती हैं, जो एक्यूप्रेशर है या ड्राई नीडलिंग है, ये सब कुछ हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस अंडर गाइडेंस, ये सब कुछ हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे एक बहुत ही कॉमन से पेन की बात करते हैं, सपोज फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर हम फोर्सफुली अगर उसमें एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हमारी मांसपेशियों में डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी पेन को ट्रीटमेंट करते हैं पेन फिजिशियन के पास जाके, उस पेन का पहले इलाज करते हैं, जो हम शोल्डर की मूवमेंट ओपन कर देते हैं, हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं इस तरह के जिससे शोल्डर की पेन फ्री मूवमेंट हो जाती हैं। वो प्रोसीजर करने के बाद अगर हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जो दर्द में जो रिलीफ है, जो एक्सरसाइजेस का जो रिलीफ था, वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। तो सिर्फ एक्सरसाइज करना सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ दवाई लेना सॉल्यूशन नहीं है, या सिर्फ इंटरवेंशन करना सॉल्यूशन नहीं है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए कि सारे लोग, हमारे जो पेन फिजिशियंस हैं वो और उनके साथ जो अटैच्ड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो मिलकर एक अप्रोच डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट में ये प्रोसीजर होना चाहिए और इस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए।
0: लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करता है क्रॉनिक पेन में?
1: यस मैम, हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल से आप बीपी भी प्रिवेंट कर सकते हो, डायबिटीज भी प्रिवेंट कर सकते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले पेन, स्पाइन पेन, नी पेन, ज्वाइंट पेन, इनको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। बट दुर्भाग्यपूर्वक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आज की फास्ट पेस लाइफ में थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत पेशेंस और बहुत एफर्ट लगता है।
0: और अब्बास मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि क्रॉनिक पेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ हमारे लिसनर्स के लिए रहेगा कि किस तरीके से इसको अगर हम घर में क्योर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर ये एक्सेस में ये पेन जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: देखिए, क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता। क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने प्रॉपर फिजिशियन से इवेलुएट करना और उसका ट्रीटमेंट लेना मैंडेटरी है। बट यस, घर पे हेल्दी लाइफस्टाइल के अच्छा डाइट, अच्छा फ्रूट्स, फाइबर रिच डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर लाइफस्टाइल, कि अगर आपके लॉन्ग सिटिंग

0: आवर्स हैं, आपकी जॉब इस तरह की है, डेस्क जॉब है, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो आपको चेयर पे किस पोस्चर में बैठना है और कितना टाइम में आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना है एंड क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आपकी स्पाइन हेल्दी रह सके, ये सब कुछ आप घर पे फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉर प्रिवेंटिंग बेसिकली द क्रोनिक पेन्स।
1: और इस विषय पर हमारे श्रोताओं के लिए क्या कुछ मैसेज और जानकारी आप देना चाहेंगे?
2: एक ही मैसेज है हमारी तरफ से कि अगर आप किसी भी तरह के दर्द में, चाहे वो मांसपेशी का दर्द है, हड्डी का दर्द है, घुटने कमर कंधे का दर्द है या कैंसर का पेन है, और अगर आप उससे पीड़ित हैं, आपको नहीं कोई समाधान मिल रहा, तो आप अपने नजदीकी पेन फिजिशियन से मिलिए। हमारे ISSP की वेबसाइट पे हर शहर में जितने भी पेन फिजिशियन काम करते हैं, वो अपने शहर का नाम डालेंगे तो वहाँ के शहर के सारे पेन फिजिशियन का नाम उस वेबसाइट में दर्ज है।
1: आज का ये अहम जो टॉपिक था, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद।
3: दीर्घकालिक दर्द, कारण, लक्षण और प्रबंधन। अभी आप इस विषय पर ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर नम्रता डबास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन, और डॉक्टर दीप दीवांशु लाल, कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मंजीत कौर। दीर्घकालिक दर्द केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक और भावात्मक चुनौतियां भी पैदा करती हैं। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी रहा होगा।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: श्रोताओं, हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व एल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एल्जाइमर्स एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपकी रोजाना की दिनचर्या को काफी प्रभावित करती है। इस बारे में हमने बात की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से।
5: What is the basic difference between the two, dementia and Alzheimer's?
6: So, जो Alzheimer's disease या Alzheimer's dementia is a variety of dementia. तो डिमेंशिया की मतलब नहीं है कि दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर आदमी जो भूलते हैं या भूलने लगते हैं, ये नहीं कि उनको डिमेंशिया हो गया। सो दैट इज एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि अगर हम कुछ भूलने लगे तो हमको डिमेंशिया हो गया। नहीं, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज कि हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं है, तो कहीं वेराइटीज होते हैं, उसमें ट्रीटेबल होते हैं, जो अच्छी तरह उपचार हो जाएगा और बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ होते हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ होता है हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, वो डिजेनरेशन से हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है। तो उन वेराइटीज में सबसे कॉमन वेराइटी है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। सो देयरफॉर हर भूलना डिमेंशिया नहीं है, हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिसीज नहीं है।
3: श्रोताओं, हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद के लिए लोगों को जागरूक और जानकार बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी जानकारी को समेटे है हमारी भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। स्वाति,
7: धन्यवाद।
3: डॉक्टर स्वाति, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे लोग सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपकी नजर से एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं?
7: दो प्रमुख कारण हम समझते हैं। एक तो हुआ मानसिक स्वास्थ्य, जहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है कि जिसकी वजह से एक पर्सन आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। उसके अलावा नशा करना, कोई तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना भी कारण बन सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि डिप्रेशन नहीं होता लेकिन किसी फेलियर की वजह से या किसी क्राइसिस की वजह से उस इंसान को एक बहुत सेंस ऑफ वर्थलेसनेस कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी, मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, या एक सेंस होना कि मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, मीनिंगलेस है, मेरे जीने से किसी को क्या फर्क पड़ता है या मेरे मरने से भी क्या हो जाएगा, वो सब भी कारण बन सकते हैं। सामाजिक की हम अगर बात करें तो दो तीन कारण पाए गए हैं उसमें। एक होता है कि आपको जहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं आती, आइसोलेशन हो जाता है। दूसरा वजह हो सकता है कि आपकी, मान लीजिए, कम्युनिटी या सोसाइटी या फैमिली इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि आपको उसमें अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ वो नहीं मिलता। जहाँ पे औरतें किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं उनमें इस तरह के सुसाइड देखे जाते हैं। या जैसे अगर हम फार्मर्स वगैरह की बात करें तो जहाँ पे एक सिस्टम से वो हो जाना कि ये सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिस्टम को भी एक पॉइंट देना कि देखिए आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इंसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हो।
3: जी जी, बहुत सारे आपने कारण बताए, तो उससे मुझे लगता है कि शायद जिंदगी के किसी पड़ाव पर भी इस तरह की भावना किसी को आ सकती है।
7: बिल्कुल।
3: या आप कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप बताना चाहेंगी जहाँ पर ये ज्यादा कॉमन है सुसाइड टेंडेंसी?
7: आने को तो किसी भी स्टेज पर आ सकता है, बट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क का एज माना गया है वो है 15 साल से लगभग 35 से 40 साल। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट्स की एंड यंग एडल्ट्स की। और उसके अलावा एल्डरली में भी, जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी सुसाइड की प्रवृत्ति देखी गई है। अच्छा। जो हाई रहती है
3: तो वो उनका कारण क्या बनता है?
7: उनमें कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है तो लोनलीनेस, अकेलापन, फाइनेंशियल इश्यूज अगर हो गए हैं, क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस, तो मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, पेन वगैरह होना। एंड सबसे और इम्पोर्टेंट है जो सुसाइड देखा गया है वो जो लोग विडो, पति या पत्नी गुजर गए हैं, उनमें सुसाइड का रिस्क बहुत हाई देखा गया।
3: तो जैसा मैं अभी पूछ रही थी आपसे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लगे, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन, डिप्रेशन इतना कॉमन लूज वर्ड्स की तरह यूज होता है कि हम रोज ही बोलते हैं कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ, आज तो मुझे एंजाइटी हो रही है, तो क्या ये सुसाइड की तरफ इशारा करती है, ये कैसे पता लगे?
7: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने कान और आंख खुले रखेंगे तो हम जान सकते हैं कि अगर हमारे आसपास वाला, हमारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर शायद इस तरफ जा रहा है।
3: जी।
7: तो कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं, जहाँ पे एक इंसान ने, मान लीजिए, बहुत बार एक बात नेगेटिव, नकारात्मक बातें करनी शुरू कर दी, जिंदगी क्या है, क्या करना है, फ्यूचर में तो सब ऐसे ही है, कुछ भी तो ठीक नहीं होने वाला, मेरे तो कुछ करने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद कभी इस तरह से बातें कि इससे अच्छा तो भगवान उठा ले, या चलते चलते एक्सीडेंट ही हो जाए, मन करता है कभी कभी कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। हाँ। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप आएगा जहां पे इंसान शायद ये बोलने लगे कि मुझे कभी कभी लगता है कि खुद को हानि पहुंचा लूं, खुद को कुछ कर लूं। फिर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हो सकता है वो दवाइयां इकट्ठा करने लगा हो, ब्लेड्स रखने लगा हो, या बाहर से कोई पेस्टिसाइड या ऐसी कोई चीज खरीद के अपने पास रख ली हो, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। जाके रिश्तेदारों से मिलना, ऐसे लोगों से मिलना जिनसे वो यूजुअली नहीं मिलेगा फैमिली में, काइंड ऑफ सेइंग गुड बाय कि मैं जाने वाला हूँ, एक्सप्लिसिटली ना बोले,
3: कुछ लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा,
7: लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिलेगा, अपनी चीजें किसी और को उसने दे दी कि चलो दे देता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस होती है, एक मान लीजिए एक लंबे समय से इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस, एंजाइटी में चल रहा है, अचानक से बिना किसी ट्रीटमेंट के या बिना किसी वजह के अचानक से पॉजिटिव मूड हो जाना, एंड उस समय केसेस देखे गए हैं कि इट वाज काइंड ऑफ बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब जाना है यहाँ से, इट वाज काइंड एक बर्डन हट जाता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट अब मेरा फैसला हो गया कि मुझे क्या करना है, दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि कुछ गड़बड़ हो,
3: रेड फ्लैग है जिसको हमें जरूर वॉच करना चाहिए, और ये मुझे लगता है लोग मिस करते होंगे। अच्छा, जैसे बहुत समय, कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम भी दिखते हैं, हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, और कई बार हमारे साथ भी ऐसी कई चीजें हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, और कई मिथ्स भी हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो जितना अवेयर हम फिजिकल बीमारियों के लिए हैं उतना हम मेंटल बीमारियों के लिए नहीं है, तो कई बार हम उनको नेग्लेक्ट भी करते हैं, तो कहां से ये नेग्लेक्ट जो है ये हार्मफुल हो सकता है?
7: अगर जैसे मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड रहा है और एक बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में बात कर रहा है और आपने इग्नोर इग्नोर कर दिया वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बच्चा अगर आपको पता चले कि आपका फ्रेंड या अगेन कोई फैमिली मेंबर खुद को हर्ट कर रहा है, चाहे सुसाइड के लिए नहीं कर रहा बट खुद को हर्ट कर रहा है, और आपने कहा चलो हर्ट ही तो कर रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लेड से अपने आप को काट लिया या दीवार सर पे दे दिया मार दिया या हाथ से मुक्का मार दिया, तो कोई बात नहीं सुसाइड नहीं करेगा। सो ये रीजंस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पहले उन्होंने कभी अटेम्प्ट किया है और वो हमने इग्नोर कर दिया कि पहले एक बार तो करा है लेकिन अब नहीं करेगा,
3: समझा बुझा दिया है,
7: समझा बुझा दिया है, दवाइयां भी दे रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं,

0: अब तो ये ठीक हो जाएगा तो अब ये नहीं करेगा।
1: अच्छा, तो रिलैक्स नहीं होना है।
0: रिलैक्स नहीं होना है। अगर वो जो हमने रिकग्नाइजिंग साइंस की बात करी, अगर उनमें से कुछ भी दिखता है तो सतर्क हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहा है।
1: अच्छा, ये भी बताइए कि कई बार जैसे फैमिलीज में भी हमने देखा है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कहे जाते हैं जेनेटिक भी होते हैं कई बार, और एक्वायर्ड तो होते ही हैं। तो अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री रही है तो क्या वो इफेक्ट कर सकता है फ्यूचर जनरेशन में?
0: बिल्कुल कर सकता है। जेनेटिक्स का रोल होता है, जैसे फर्स्ट डिग्री में अगर किसी को, फर्स्ट डिग्री मतलब पेरेंट्स हैं या सिबलिंग है, उसमें किसी को मेंटल इलनेस है तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। सेकेंड डिग्री ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा कम करेगा, तो ऐसे करके होता है। तो रिस्क फैक्टर्स तो हाई होते हैं अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो।
1: तो इस तरह के सिम्टम्स वाला, जैसे हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप जाएं और मिलें डॉक्टर से और बताएं, पूछें कि क्या है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप निदान, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं?
0: सो जब हमारे पास पेशेंट पहली बार आता है तो सबसे पहले उसकी डिटेल केस हिस्ट्री ली जाती है, पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से पहले हम बात करते हैं, अगर स्पेशली अगर चाहे वो एडल्ट है, बच्चा है, कोई भी है, एंड फिर हम फैमिली मेंबर्स से भी बात करते हैं। तो उसमें हम सारी चीजें, जितने भी मेंटल इलनेसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग अब्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज, उन सबको हम डिटेल में असेस करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अगर सुसाइडल आइडियाज हैं, क्या क्या वो बता रहा है कि हाँ मेरा मन करता है मैं खुद को हार्म कर लूं, क्या उसने कोई प्लान बनाया है, क्या उसने कोई चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, या जाके जैसे रेलवे स्टेशन में देख के आया है क्या हो रहा है। तो हम फिर सिवेरिटी कितनी है, कितना,
1: उसकी स्टेजेस भी होती हैं।
0: स्टेजेस में जैसे बोला गया, एक शुरू में आएगा कि भगवान मुझे उठा ले, इसको कहते हैं डेथ विश, कि मैं कुछ नहीं करूंगी अपने आप को बट भगवान उठा ले। उसके बाद एक्टिव सुसाइडल आइडिया, कि कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे ही खुद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन विदाउट एनी प्लान, कोई प्लान नहीं बनाया। और तीसरा होता है जहां पे प्लान बनाना शुरू कर दिया, तो आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कहां से, किस तरह के सब्सटेंसेस से, किस चीज से मैं कंज्यूम कर सकता हूं, या किससे पेनलेस डेथ हो सकती है, और फिर उससे लास्ट में आपने एक्चुअली उन चीजों को इकट्ठा करना या देखना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगना, वो फिर लास्ट स्टेज।
1: कोई ऐसी हेल्पलाइन हो या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो आप कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताना चाहें?
0: तो एक जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने शुरू करी है वो है टेलीमानस, जिसका नंबर है 14416। वहां पे काउंसलर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन करेंगे, आपके इश्यूज को समझेंगे और आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करके, किसी भी चीज में, चाहे वो मेंटल इलनेस है, सुसाइड है, पर्सनालिटी इश्यू है, और उसके बाद वो आपको एक्सपर्ट्स के पास रेफर करेंगे, एंड ये सारी चीजें आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं इजिली। सो उसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट हेल्पलाइंस वगैरह भी हैं और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है।
1: तो बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिल रही है डॉक्टर स्वाति। तो आज श्रोताओं, आपने सुना आत्महत्या और इसके कारण, इसका उपचार और इसका बचाव। अभी आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: और श्रोताओं, अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम धरती आकाश का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर निमिष कपूर और आप सुन रहे हैं विज्ञान और तकनीक से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो केवल रेल की पटरियों पर नहीं चल रही बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, उसके भीतर यात्री सफर कर रहे हैं, इंजन अपनी पूरी शक्ति से ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस ट्रेन में न डीजल जल रहा है और न उससे पारंपरिक इंजन की तरह धुआं निकल रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर यह ट्रेन चल कैसे रही है, और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। और भारत ने अब हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन को वास्तविक परिचालन में उतार कर स्वच्छ रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन, जिसे नमो ग्रीन रेल का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद में किया गया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन तकनीक पर काम कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। तो आज की हमारी इस वार्ता में हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन पर, यह कैसे चलती है, भारत में इसका क्या महत्व है और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की उपलब्धि कहां तक जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हाइड्रोजन ट्रेन वास्तव में विकसित भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में रेलवे का बहुत विशाल नेटवर्क है। देश के अनेक रेल मार्ग विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं और विद्युत ट्रेनें यहाँ प्रभावी ढंग से चल रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ रेल मार्ग ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेनें संचालित होती हैं। यहीं पर हाइड्रोजन ट्रेन एक संभावित विकल्प बनकर सामने आती है, क्योंकि किसी रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने के लिए ओवरहेड बिजली के तारों सहित पूरी विद्युत अवसंरचना विकसित करनी पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसी व्यवस्था अलग तरीके से काम करती है। इस ट्रेन में बिजली बाहर से लगातार नहीं लाई जाती, बल्कि ट्रेन के भीतर ही हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है। यानी हाइड्रोजन ट्रेन अपने साथ अपना ऊर्जा स्रोत लेकर चलती है। इसीलिए गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर इसका महत्व बढ़ जाता है। भारत की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का उद्देश्य भी ऐसे ही गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर डीजल ट्रेनों के स्थान पर स्वच्छ हाइड्रोजन आधारित तकनीक को बढ़ावा देना है। जींद सोनीपत रेलखंड को इसी उद्देश्य से पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। अब आते हैं इस तकनीक के सबसे रोचक हिस्से पर। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन को सामान्य अर्थों में जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, इसके बजाय इसमें इस्तेमाल होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, यानी PEMFC। नाम जरा वैज्ञानिक है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस पहुंचती है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग किया जाता है। विशेष झिल्ली प्रोटॉन को तो दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भारी विद्युत परिपथ से होकर गुजरते हैं और यहीं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा पैदा करता है। यह बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रॉनिक मोटरों को चलाती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन के प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं, यानी इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद है पानी और ऊष्मा। डीजल इंजन की तरह यहाँ दहन से धुआं नहीं निकलता। यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। अब एक और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। हाइड्रोजन का भार के हिसाब से ऊर्जा घनत्व लगभग 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम बताया गया है, जबकि डीजल का लगभग 43 मेगाजूल प्रति किलोग्राम है। अर्थात समान भार की तुलना करें तो हाइड्रोजन में डीजल की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हाइड्रोजन का उपयोग अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं करता कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था शून्य कार्बन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे बनाया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा की मदद से तैयार किया जाता है तो इसका पर्यावरणीय लाभ काफी अधिक हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन की कहानी केवल ट्रेन तक सीमित नहीं है। यह कहानी जुड़ी है ऊर्जा उत्पादन से, नवीकरणीय ऊर्जा से और पूरे ऊर्जा तंत्र के परिवर्तन से। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कितनी शक्तिशाली है, अब थोड़ा ट्रेन की तकनीकी संरचना पर भी बात कर लेते हैं। भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं। इनमें 2 हाइड्रोजन चलित पावर कार और 8 यात्री डिब्बे हैं। प्रत्येक पावर कार में 1200 किलोवाट क्षमता का फ्यूल सेल लगाया गया है, यानी दोनों पावर कार मिलकर लगभग 2400 किलोवाट बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। ट्रेन की स्वीकृत अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इसका डिजाइन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और परीक्षणों के दौरान इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया गया। ट्रेन में लगभग 2600 यात्रियों की यात्रा क्षमता है और यह ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी, जहां 13 मध्यवर्ती स्टेशन है। यह सिर्फ ट्रेन नहीं, पूरा भारतीय सिस्टम है। किसी नई ट्रेन को बनाना एक बात है, लेकिन एक ऐसी ट्रेन बनाना जिसमें हाइड्रोजन का उत्पादन या आपूर्ति, उसका भंडारण, संपीड़न, ईंधन भरना, सुरक्षा के इंतजाम, ट्रेन का डिजाइन और परिचालन, सब कुछ एक साथ काम करे, बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है। इस परियोजना में कई भारतीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड, RDSO लखनऊ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन और हाइड्रोजन के भंडारण और वितरण से जुड़ी व्यवस्था के लिए PESO यानी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने लाइसेंस प्रदान किया है। हाइड्रोजन ट्रेन और डीजल ट्रेन में फर्क क्या है? अब एक बहुत सरल तुलना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। डीजल ट्रेन में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक निकल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन में बिजली रासायनिक प्रक्रिया से पैदा होती है, इसलिए ट्रेन के संचालन के द्वारा

0: स्थानीय स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं होता। मुख्य उत्पाद जल वाष्प और ऊष्मा होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर के कारण ध्वनि प्रदूषण भी अपेक्षाकृत कम हो सकता है। रखरखाव के दृष्टिकोण से भी फ्यूल सेल आधारित प्रणाली में पारंपरिक दहन इंजन के कई चलायमान हिस्से नहीं होते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हाइड्रोजन ट्रेन हर स्थिति में डीजल ट्रेन से बेहतर है। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन का भंडारण, संपीड़न, वितरण और ईंधन भरने के इंतजाम। इसलिए इसकी वास्तविक आर्थिक उपयोगिता का मूल्यांकन लंबे समय के परिचालन अनुभव के बाद ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसका इंतजार शायद आपको भी है, क्या भारत दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला पहला देश है? नहीं, हाइड्रोजन रेल तकनीक पर दुनिया के कई देश पहले से काम कर रहे हैं। भारत ने जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो फिर भारत की उपलब्धि क्या है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। भारत की असली उपलब्धि इस बात में है कि उसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को भारतीय रेल प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने, ट्रेन में एकीकृत करने और वास्तविक परिचालन में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस परियोजना में भारतीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। RDSO ने तकनीकी और डिजाइन की विशेषताओं में बड़ा योगदान दिया है। अब इस पूरी कहानी को विकसित भारत के व्यापक संदर्भ में देखते हैं। विकसित भारत केवल बड़ी इमारतों, तेज रेलगाड़ियों या आधुनिक शहरों का नाम नहीं है। विकसित भारत का अर्थ है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन, उन्नत तकनीकी क्षमता, स्वदेशी अनुसंधान और निर्माण, कुशल मानव संसाधन और ऐसी अर्थव्यवस्था जो भविष्य की तकनीकों को अपनाने के साथ उन्हें विकसित भी कर सके। हाइड्रोजन ट्रेन इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। भारत आज अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। यदि सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ता है तो भविष्य में हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है हाइड्रोजन ट्रेन का संबंध केवल रेलवे से नहीं है, इनका संबंध है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से, जलवायु लक्ष्यों से, आत्मनिर्भर भारत से और हरित अर्थव्यवस्था से। भारत ने हाइड्रोजन को व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बनाया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। और अब हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन में होता है तो यह स्वच्छ ऊर्जा को सीधे हमारी रोजमर्रा की गतिशीलता से जोड़ता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों की खपत को कम करना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी तकनीक का उदाहरण है जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के बीच पुल का काम कर सकती है। हाइड्रोजन को सभी ट्रेनों के लिए एकमात्र ईंधन नहीं माना जा सकता। जहां रेल मार्ग पहले से विद्युतीकृत हैं, वहां विद्युत ट्रेनें अधिक प्रभावी हो सकती हैं। कुछ परिस्थितियों में बैटरी आधारित प्रणालियां भी उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे गैर विद्युतीकृत रेल मार्ग जहां लंबे समय तक डीजल का उपयोग जारी रहने की संभावना है, वहां हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विकल्प बन सकता है। यानी सही सवाल यह नहीं है कि हर ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी, सही सवाल यह है कि किस रेल मार्ग के लिए कौन सी स्वच्छ ऊर्जा तकनीक सबसे उपयुक्त है। और इसी प्रश्न का उत्तर भारत को अपने पायलट प्रोजेक्ट और वास्तविक परिचालन अनुभव से मिलेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह नहीं है कि एक ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है, इससे बड़ी उपलब्धि यह है कि तकनीक भारतीय संस्थागत क्षमता और राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को एक साझा लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यही तो है विकसित भारत की यात्रा। और शायद आने वाले समय में जब हम किसी गैर विद्युतीकृत रेल मार्ग पर बिना डीजल के चलती किसी हाइड्रोजन ट्रेन को देखेंगे तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस ट्रेन में केवल यात्री नहीं होंगे, उसमें सवार होगा भारत का स्वच्छ ऊर्जा का सपना, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का विश्वास और विकसित भारत का संकल्प।
1: मैं महेश भारती आज आपको अंतरिक्ष में हमारी तीसरी आंख के बारे में जानकारी दूंगा। EOS-05 एक जियोसिंक्रोनस यानी भूतुल्यकालिक इमेजिंग उपग्रह है जिसे 4 सितंबर 2026 को प्रातः 2:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसके लिए GSLV-F17 रॉकेट का प्रयोग किया गया। इसे भूतुल्यकालिक कक्षा में 35,860 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। यह मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में उसके साथ साथ उसी गति और दिशा में घूमेगा। ऐसा होने से यह भारतीय उपमहाद्वीप और निकटवर्ती इलाकों के सापेक्ष स्थिरता बनाए रखेगा। दूसरे शब्दों में यह साल के 365 दिन और 24 घंटे हमें निगरानी क्षेत्र की ताजा तस्वीरें लगातार उपलब्ध करवाता रहेगा। अतः यह अंतरिक्ष में हमारी तीसरी आंख की भूमिका निभाएगा। इस जानकारी का सबसे बड़ा

0: फायदा कृषि क्षेत्र के लिए होगा, हमें आने वाले मौसम और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी मिल पाएगी। जब यह जानकारी हम किसानों को दे पाएंगे तो वे फसलों के बुआई को बेहतर प्रबंधन करके अपनी उपज बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। इस उपग्रह के द्वारा दी गई जानकारी का दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपदा प्रबंधन क्षेत्र में होगा। आने वाली बाढ़ सुनामी की पहले से चेतावनी देना संभव होगा, जिससे भविष्य में भारी जन हानि से बचा जा सकेगा। समुद्री चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी दी जा सकेगी और चक्रवात के आगे बढ़ने की दिशा और मार्ग का पूर्वानुमान संभव हो सकेगा, जिससे संभावित तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा सकेगा। तीसरी बड़ी उपयोगिता भू सामरिक क्षेत्र में होगी। हम शत्रुओं की सेना की गतिविधि और आवागमन की पूर्व सूचना पाकर हम अपनी सुरक्षा के सामरिक और रणनीतिक प्रयास कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा देश विश्व के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो यह क्षमता रखते हैं। इस उपग्रह का वजन 2367 किलोग्राम है और इसका जीवन काल 10 वर्ष है। वर्तमान में भारत 20 इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है, जिनमें से अधिकांश निम्न भू कक्षा में है। प्रक्षेपण के इसे GT यानी भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में भेजा गया और 7 सितंबर 2026 को इसके साथ लगे थ्रस्टर्स के जरिए इसे अपनी अभीष्ट कक्षा में 35,860 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। यहाँ यह रेखांकित करना भी जरूरी है, इतनी अधिक दूरी होने के कारण इसके द्वारा लिए गए चित्रों का रेजोल्यूशन बहुत अधिक नहीं होता। इसकी खासियत लगातार नजर बनाए रखने में और 24 घंटों बिना पलक झपकाए। इसकी तस्वीरों को हमारे निम्न भू कक्षा में पहले से 20 इमेजिंग उपग्रहों द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के साथ मिलाकर देखा जाएगा। नोटी बॉय GSLV-F17 की ये 19वीं उड़ान थी। इसकी ऊंचाई 51.5 मीटर और वजन 420.5 टन था। उपग्रह का वजन 2367 किलो था, जो इसके द्वारा ले जाए जाने वाला सर्वाधिक पेलोड था। उपग्रह की सुरक्षा के लिए 4 मीटर व्यास वाला विशेष कक्ष बनाया गया था। इस भीमकाय रॉकेट के 3 चरण होते हैं। इसके पहले चरण केंद्र में S-139 सॉलिड रॉकेट मोटर होती है, जिसमें ठोस ईंधन HDPE का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य बूस्टर के चारों ओर स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती है, इसमें तरल ईंधन भरा जाता है। उड़ान भरने के तुरंत बाद यह चरण रॉकेट को वायुमंडल के बाहर धकेलने का काम करते हैं। जब पहला चरण अपना ईंधन जलाकर अलग हो जाता है तो तुरंत तरल ईंधन वाला दूसरा चरण सक्रिय हो जाता है। इसमें इसरो का प्रसिद्ध विकास इंजन लगा होता है, यह भाग रॉकेट को अंतरिक्ष की निचली सीमा तक ले जाता है। तीसरा चरण इस रॉकेट का सबसे सक्षम और उन्नत भाग है, जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है। अत्यधिक कम तापमान पर रखे गए तरल हाइड्रोजन तथा तरल ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह चरण अंतरिक्ष के निर्वात में काम करता है तथा बेहद सटीक गति से उपग्रह को उसकी अंतरण कक्षा में स्थापित कर देता है। इस रॉकेट को कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ा है, इसलिए इसे नोटी बॉय यानी शरारती लड़के का नाम दिया गया। प्रक्षेपण के 3 प्रमुख चरण, पहला चरण ठोस और तरल। इसके केंद्र में S-139 सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है, जिसमें ठोस ईंधन HDPE का उपयोग होता है। मुख्य बूस्टर के चारों ओर 4 स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती हैं, जो तरल ईंधन से संचालित होती हैं। उड़ान भरते ही यह चरण रॉकेट को तीव्र गति से वायुमंडल से बाहर धकेलता है। पहला चरण अलग होने के बाद दूसरा चरण सक्रिय होता है। इसमें इसरो का सुप्रसिद्ध विकास इंजन लगा होता है, जो रॉकेट को अंतरिक्ष की निचली सीमा तक ले जाता है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक, यह रॉकेट का सबसे उन्नत और सक्षम हिस्सा है। अत्यधिक कम तापमान पर रखे गए हाइड्रोजन ईंधन और तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के मिश्रण से संचालित यह क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष के निर्वात यानी वैक्यूम में काम करता है और उपग्रह को बेहद सटीक गति व कोण से उसकी अंतरण कक्षा में स्थापित करता है।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

काफी रे रूस नुकुद वजीर हिंद नरेंद्र मोदी मिगुयद हिंद दर हाले तब्दील शुदन बे मकसूदी मतलू बराई सनत नीमे रसाना मि बच मतने बख्शे खिदमात खारिजी आकाशवाणी व मोहतरजी मोगुयंदे महमूद आदम अली। नुकुद वजीर हिंद नरेंद्र मोदी रूद पंचम्बे दर देरिये नौ नुमाइशगाह सेमिकॉन इंडिया 2020 शिशरा इफ्तिता कर नुकुद वजीर दर सुखानरानी खुद भाईचारे बे अहमियत पंजोमीन दौरे इन रुईदाद बे तमामी ये शिरकत कुनंदगान खुशामद को बातरसी में शबाहती ये कवि मियाँ ने रा अंदाजी ये सेमी कौन इंडिया व रूज विश्वकर्मा नुकुद वजीर पा ईजाद पैबंदी ये मानादार मियाँ ने इफ्तिता मीरा से चंद तलाइये किश्वर दर जमीन ये साख तो साजो आफरी नंदगी रा मोरिद तजलील करार दाद व पेहम जमानी जीबा ये पैबंद कुदरत खलाक सुन्नती बाफन्ना वरी चश्म अंदाज करने भी तो यकुम इशारे कर व गुफ्त के इन इल्हाम बख्श हर कदेबाबू ये यक हिंद खुद किफा व यक हिंद तोसे याफ्ते यानी फिक्सित भारत में बशत नुकुद वजीर बात आगीद बार पेश रफ्ते सरिये किश्वर तय पांच दर रोजे गुजश्ते बे दस्तावुर धाइये ग्लोबल फिनटेक फीस जश्नवारिये जहानी ये फिनटेक इशारे कर व अल जुमले गुफ्तगु दर बारिये तामीन मालिये फरागी दर अमलियाती शुदन या कॉरिडोर बाजी ये इख्तिसासी बतौर से हजारों या रोज देनी रोमन दे तोरी देना खादी से दाखिली हाथ मुमैद हज दरसद नुगात असली अतफरा फहरिस्त का वे हमचिन बे एतबारी ये हाकिमियती हिंद असू ये यक मौसी ये रुतबे बंदी ये एतबारी ये जापूनी इशारे कर वो अंडा निशानाई अफजाइश एतबार इकतसादी किश्वर दानिश बा यादावरी ये मौफियत डिप्लोमा के इजला से सरान अखीर ब्रिक्स के दर देहलिये नो बरगुजार शुदे बे तस्वीब इजमाई बयानिया देहलिये नौ इशारे कर वो अंडा बासाबी अज इजमाए बैनुमिलली दानिश वे ताकिद कर के इन दस्तावुर दे तारीखी डिप्लोमाती एतमाद पायदार जामाए जहानी बेहिंद्रा ताईद मी कुन अज जमाने आगाज सेमिकॉन इंडिया नुकुद वजीर दर तशरी मसीर तकामुल साल 2022 रवन दे पेशरफ्त इन तर्रा अल गुफ्तगु हाई अवलिय दरबार ये सियासत गुजारियो बरनामे रेजी ये बरोजहा ता खतूत तौली दे आजमाइशी बोदर निहायत आगाज तौली जे तिजारी तशरी कर वे तहकुक इंतलाशारा मोरी दे तमजीदो सिताइश करारदाद व गुफ्त के अकनून तराशे हाई ये तौली शुदे बे मुश्तरियान जहानी मीरसन व तौली दे तिजारी दर दो कारखाना ये जदीद नींद आगाज शुदे दर सूरत मोहाली नुकुद वजीर बा अज आन बे पेचीदगी ये बिस्यार ज्यादे ईजाद यक इको सिस्टम नीम रसाना अज हमकारी गुस्तरदई के वराये दस्तियाबी ये सरी बेतवानमंदी दर तर्राही तराशे तौली दे तजीजात व काबिलियत हाई ये आजमाइश व तेस दे मोरी दे नियाज बूदे अज तकदीर कर वे रहबराने कानूनी ये सनतरा सुतून है ये असासी ये इको सिस्टम दानिश मुताकीद करके मुशारिकत आना ने जमीन साज इन जहीश सरी फन्नावरी नुकुद वजीर दर तशरी ये शिताब मोसमर इन बख्श मफहूम ते पा उतरा तोजीदात व गुफ्त दौलत बिदून वक्फे वराई दस्तियाबी बे नस्ल बादी ये फन्नावरी तलाश मी कुनत वे अद मरहले दोवो में मामूरियत नी में रसानाहा बा सरमाए गुजारी ये जी में सीजा ममैयत $5 मिलियन खबरदाद व हमजिनीन बे इसलाहत जदीद मुकर्रराती इशारे कर के हमकारी मियाँ शिरकत है ये बैनुमिलली इस्तारतफा व शिरकत है ये तर्राही रा तहसील में कुनत नुकुद वजीर दर तशरी ये चश्मंदा दे ईजा दे यक जंजीरा तामीन दाग दिए कुदरतमंद बर अहमियत ईजा दे मालिकियत फिक्री व इदगाम फोतोनिक सिलिकोनी ये तोसे शिरकत था बरा ये जीर सा था ये मोरी दे नियाज हुश मसनोई ताकीद कर वे अल फालान हो गए तजीदात मवाद शीमियाई गाजा व मवाद अवरिय खास अज परोजय ताई शुदे व अफजाइश तकाजा दर फुर्सत आई ये अर्दिशमंदी के

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम शीशा पत्थर टकराने दो आने वाला आएगा जाने वाला

हुनर पीछे गाने फिल्म में मिस्टर नटवरलाल, इबारत अंदाज अमिताभ बच्चन, रेखा, अमजद खान वो कादिर खान।

हिंदू इमारते मुते दे रबी ताऊ दे शांडा बराई ये इदामे दादने हमकारी यो हमांगी दर तलाशा जहते तरवी जेसुल्ले मंतगई अमनियत हो उस्तुवारी ये मुजद ताईद कर दिया। नखुद वजी नरे मोदी तमासे टेलीफोन बार आई से जमूर इमारत मुतद अरबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान दाश्त तो रहबर राजे में तहवुला दरअसल गरबी तबादुले नजर करतन आना हम जिन इकदाम ताजेरा बराये अमीक तर साख्तन मुशारकत इसराजी के दामन दार हिंदो इमारत मुतद अरबी अब जुमले दर जमीन हाइये एनर्जी दिफा टेक्नोलॉजी सरमाए गुजारी और बहदाश्त बर्रफी नमूदा।

हिन बरसरे अफजाइश वजह अपने धर्मत है दरियाइए सुख निगरानी अमी कर दयास दरहने आगाही बे रसा नेहा दर देहली नो दी रूस सुखन गोई विदारा ते उमोरे खारजे रंधीर जैसवाल हमला तीरा बर कलम रॉ ये हाकिमियती अस जुमले हमला बेहदफे गैर निज़ामियान वो दाराई हाई इक्तसादी बेबाद इंतखाद गिरफ्त वे गुफ्त हिन हमचिन बयानियरा दर पाई ये तलाश बराइए हमले बर शहर मुकदस मक्के सादिर कर राजब बरखुर्द माबेन कश्ती नीरू ये दरियाई पाकिस्तान हो या कश्ती जंगी ये हिन जैसवाल गुफ्त के हिन वाकुनिश पाकिस्तान रा दर बराबर आन जिदन गिरफ्त वजीर उमूर खारजा हिंद उक्तूर एस जयशंकर अज हिमायत हिंद बराये आदाफ तोसे व अर्जय था ये भूतान तस्दीक होता नमूदयास दर दौरान बाजदीद रस्मी अज भूतान अज शाहदहम ताहिज दहम सितम्बर दुख्तुर जयसवाल व हमता ये भूतानी अश लियोंगपो दिगैन दुगैल हमें जम्बे हाइये हमकारी दो जानिबे गुजश्ते मसाइल मंदगई व बैन मिलली ये अहमियत मुतकबिल बर्रफी करदन तरफैन पेशरफ्ती रा दर तहकीम मुशारिकत वीजे व चंद जम्बई हिंदो भूतान मोरिद तमदीज दो सीताइश करार दादन दुख्तुर जयशंकर व हमता ये भूतानी अश बतौर मुश्तरक चंदीन परोजे हाइये तो थेरा गुशाइश वो बेरा अंदाखता आजान से रुतबे बंदी बेदाम में मोदी पीशबीनी ये रोज दे तौली दे नाकाली से वाकई महली ये हिंदरा बे हव दर सद बराइये साले मारिये जारी अस्तर रेजी ये कबली ये आने शीश दर सद अफजाईदाद आजान से हाकीत के बाजी बाज निगरी ये रूबे वाला ताब आवारी इकतसाद हिंदरा दरमियान शू के जहानी बादरगिरी दरा गई गरबी मुनअकिद सदर नीरू दर पाकिस्तान पसद यक इन्फिजार निजद यक मस्जिद दर बख्श कोहात उस्तान खीबर पख्तूनख्वा पांचदा नफर बेकरार गुजारिश कुश्ते शुदन वो पंजा तन दीगर जराहत दीदन पुलिस आगीस के इन्फिजार दर दौरान नमाज रोज जुमे रुखदाद व मोजिब एक दहने निजद मुतहद कर दीदन बेकरार मकामात पुलिस अमरियात रिफाह नजात दर महल हादी से अंजाम दादे मीशवा गुशाइश मरासी में बाजियाई आसियाई 2026 दर आई ची नगोया दर जापून इमरूज बरगुजार ख्वाश बरा ये हिंद बरंदे मिदाल ओलंपिक दूबल मानू बाकर वो प्रतापगर वजन तजेंद्र पाल सिंह तूर अज दस्ते रहनुमाई ख्वान कर पिस्तोमिन दौरा बाजियाई आसियाई अज इमरूज ता चाहरोमिन माह आइंदे इदाम ख्वादाश्त वजीर बाजरगानी और सनतें पीयूष गोयल यक जलसेरा बा वजीर कानादाई ये तिजारत बैलमिलरी मानेंदर साहू बराये बर्रसी ये मुजाकरा दरबार पीश बुर्द राजब करारदाद मुशारिकत इकतसादी ये दामान दार हिंद कानादा बा सीपा तश्कीलदार रईस जमहूर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप गुफ्त के अमरीका बाद डेनमार्क बराये तहकी में हजूर निज़ामी अमरीकाई दर ग्रीन लैंड बेयक तवाफुक रसीदेस के माहिए तशनुजरा बरसर तकाजा ये मुकर्रर बराये बेदस्तावुर्दन जजीरा ये आर्थिक खात्मे मिदे भायाने पक्षे अखबार अज रेडियो दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है।

0: प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
2: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: Prime Minister Modi said India is working with the rest of the world and setting new standards for environmental protection through initiatives such as the International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance and Mission Life. Mr. Modi said that over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment. The Prime Minister said India's major focus has been on renewable energy and played a significant role in environmental protection. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts and District Court judges. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More from our correspondent.
3: The 28th rose.

0: घर आंगन। आज की घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त अमित कंवल
1: और मैं हूं रेनू। तो कीजिए स्वीकार हम दोनों का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंफ्रेस चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर।
0: मुस्कुराते हुए चेहरे, बेफिक्र दिन और वो कागज की कश्ती, याद है रेणु वो बचपन जब बारिश होने पर हम स्कूल की छुट्टी की दुआ मांगा करते थे जब बिजली कटने पर पूरा मोहल्ला छतों पर इकट्ठा हो जाता था और 5 रुपए की वो बर्फ की चुस्की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती थी।
1: बिल्कुल सही कहा अमित, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती थी वो। और आज की लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगता है हम कितने बड़े हो गए हैं। कौन सी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ऐसी आ गई हैं जैसे कि हमारा मौसूम सा बचपन कहीं पीछे से छूट सा गया है। लेकिन कार्यक्रम में आज वक्त की सुइयों को हम थोड़ा पीछे घुमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के सवाल के सेगमेंट में हम आपसे बचपन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे, और वो सवाल क्या है अमित?
0: बिल्कुल रेणु, आज हम श्रोताओं के लिए सवाल लेकर आए हैं। दोस्तों आज का सवाल है,

0: आपके बचपन का वो कौन सा खेल है जिसे आप आज भी मिस करते हैं? इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com।
1: बिल्कुल अमित, तो श्रोताओं को हमें इस ईमेल आईडी पे लिखना होगा और हमें रहेगा उनके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। लेकिन कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना दोस्तों, जीने की राह फिल्म से।
1: और अमिता, देखो कविता केवल शब्दों की सुंदर सजावट नहीं, बल्कि अपने समय, समाज और मनुष्य के अंतर मन को स्वर देने का माध्यम है। आज ऐसे ही एक संवेदनशील रचनाकार कवि कुंवर नारायण को उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिनके शब्द केवल कविता नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम थे।
0: कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, संघर्ष, जी जीविषा और रिश्तों की जटिलताएं बहुत गहराई के साथ अभिव्यक्त होती हैं। उनकी भाषा सहज है, लेकिन उसके भीतर विचारों की गहरी परतें हैं।
1: बिल्कुल, वे जीवन को केवल देखते नहीं बल्कि समझते हैं, उसके विविध संदर्भों और अंतर्विरोधों के साथ।

0: उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और हाशिए का गवाह शामिल है, और है आत्मजयी, जिसमें वे कठोपनिषद के कथानक को आधार बनाकर जीवन, मृत्यु, जिज्ञासा और आत्मिक स्वतंत्रता जैसे गहन प्रश्नों से संवाद करते हैं।
1: बाद में वाजश्रवा के बहाने में उन्होंने इसी संदर्भ को नए दृष्टिकोण से देखा है। इसमें वह मिथकीय प्रसंग के माध्यम से आज के मनुष्य, उसके रिश्तों और जीवन मूल्यों से जुड़े सवाल उठाते हैं।
0: वे अपनी कविताओं में भारतीय चिंतन परंपरा के उन सवालों को संबोधित करते हैं जो जीवन को सहजता, सफलता की ओर उन्मुख करती है, और इस प्रक्रिया में वे कविता को दर्शन के बराबर स्थापित करते हैं।
1: आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक बड़े कवि को नमन करना नहीं है, बल्कि उस विचारशील और मानवीय दृष्टि को नमन करना है जिसमें हिंदी कविता को नई संवेदना, नई भाषा और नए अर्थ दिए।
0: आइए इस अवसर पर कुंवर नारायण की रचनाओं को फिर से पढ़ें, सुनें और महसूस करें। अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर देखूंगा उन्हें भूखी शेर की आंखों से, अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रेणु देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने छात्र छात्राओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। अक्सर आईआईटी का नाम सुनते ही हमारे मन में केवल कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे विषयों का ख्याल आता है, लेकिन अब आईआईटी बॉम्बे अपने अलग अलग और आधुनिक कोर्स के लिए चर्चा में है। संस्थान ने एविएशन के शौकीनों के लिए फ्लाइट टेस्टिंग में एमए का स्पेशल कोर्स की शुरुआत की है
1: और आईआईटी बॉम्बे अब छात्रों को फ्लाइट टेस्टिंग में मास्टर्स डिग्री देगा। संस्थान ने भारतीय वायुसेना और आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। दोनों संस्थानों की ओर से एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत फ्लाइट टेस्ट क्रू के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम तैयार किया जाएगा और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से टेस्ट पायलट्स और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स शामिल होंगे।
0: आसमान छूने की चाहत रखने वालों के लिए आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग अब छात्र छात्राओं को विमानों और एरोस्पेस प्रणालियों की टेस्टिंग की बारीकियां सिखा रहा है। फ्लाइट टेस्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी नए विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को हवा में उड़ाने से पहले उसकी सुरक्षा मानकों, प्रदर्शन और तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।
1: और अमित, इसके लिए उम्मीदवार के पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग या संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में वैध बीटेक, बीई या समकक्ष डिग्री होनी जरूरी है
0: और इस कोर्स के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमुलेशन तकनीक और एरोडायनेमिक्स का गहरा अनुभव दिया जाएगा। जो छात्र छात्राएं एविएशन इंडस्ट्री, रक्षा अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ, इसरो या प्राइवेट विमानन कंपनियों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप संस्था की वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

0: छोटी सी बात फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और यशुदास के आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और अब क्या बताने वाली हो रेणु?
1: हाँ अमित, बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। ये शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी और सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है, जो छोटे कारोबारियों और उनके कारोबार को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने में मदद करती है।
0: इसमें पहला ऋण दोस्तों 10,000 एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और समय पर पहला ऋण चुकाने के बाद दूसरा ऋण 20,000 से 25,000 तक और फिर तीसरा ऋण भी मिलता है अगर आपने दूसरा ऋण समय पर चुका दिया हो तो।
1: और ये ऋण मिलता है 50,000 रुपए तक का और इस ऋण का समय पर भुगतान करने पर आपको 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है।
0: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1200 तक का कैशबैक इंसेंटिव भी मिलता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं होती है।
1: आवेदक शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर सामान बेचने का काम करता हो, ये योजना मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जिनके पास लोकल निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त वेंडिंग सर्टिफिकेट या आईडी है।
0: तो जिनके पास वेंडिंग से जुड़ा हुआ वैध प्रमाण पत्र है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अपने नगर निकाय, बैंक या आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल अमित, और इसी के साथ हम एक बार क्यों ना अपने श्रोताओं को जो सवाल हमने उनसे पूछा था उसके बारे में भी एक बार उनसे फिर से उन्हें बता देते हैं कि हमारा सवाल क्या है।
0: आज का हमारा सवाल है दोस्तों, आपके बचपन का वो कौन सा खेल है जिसे आप आज भी मिस करते हैं? इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी और ईमेल आईडी बताएंगी रेणु।
1: ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों और जवाबों का इंतजार है।

0: ना खुदा फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और आज की सभा में मैं हूँ आपके साथ अमित कमल और मेरे
1: और
0: साथ
1: मैं हूँ रेनू। तो अमित, अब बात करते हैं मिशन शक्ति सेट के लिए चुनी गई आंध्र प्रदेश की 14 वर्षीय छात्रा केंद्रुला जेसी की, जिन्हें ऑल गर्ल्स ग्लोबल लूनर क्यूबसेट मिशन मिशन शक्ति सेट के लिए चुना गया है। ये मिशन दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसे पूरी तरह से छात्राओं द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसका नेतृत्व चेन्नई की संस्था स्पेस किड्स इंडिया कर रही है, जिसमें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहयोगी है।
0: इस मिशन का उद्देश्य है विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और युवा लड़कियों की भागीदारी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। इसी मिशन के लिए दुनिया भर के 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं में से चुनी गई कंदुला जेसी अपने राज्य आंध्र प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि हैं।
1: जो धवलेश्वरम के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा हैं और इनके पिता एक बढ़ई का काम करते थे अमिता, लेकिन इन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को इन्होंने कभी भी अपनी सफलता की राह में नहीं आने दिया।
0: इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए जेसी ने अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और थर्मोडायनेमिक्स जैसे विषयों पर 550 से अधिक ऑनलाइन सत्र और 21 मॉड्यूल्स पूरे किए हैं।
1: और पता है अमिता, जब जेसी को इस मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने न केवल खुद आवेदन किया बल्कि अपने स्कूल की 8 अन्य छात्राओं को भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया। तो आप भी इस मिशन से जुड़िए। ये ऑल इंडिया गर्ल्स मिशन है और जिसमें केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, यानी लड़कियों के लिए ये है एक सुनहरा अवसर।

0: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना जीवा फिल्म से, और घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: और अमित, देखो ना, हम लोग ने जो सवाल पूछा था अपने श्रोताओं से, तो जवाब आने, मेल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें से एक मेल जो मेरे पास है, ये सामने खुला हुआ है, इसको पढ़ते हैं। पहले चरणदास लिख रहे हैं, ये तो चौधरी वास हरियाणा से, इनके साथ राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी भी हैं। और ये लिख रहे हैं कि हमारे ज़माने में बहुत अच्छे खेल होते थे, लुका छिपी, तालाब में हथेली से पानी उछालकर, मिट्टी रैंप और दूल्हा बनाते थे। तो इस तरह से ये काफ़ी बचपन में खेल खेलते थे, गली मोहल्लों में नाचते थे शादी में।
0: तो इन्होंने पूरा बचपन याद कर लिया है
1: और इन्होंने बहुत अपने बचपन की याद तो दिलाई ही, और हम लोगों को भी अपने बचपन की याद आ गई।
0: एक और मैसेज आया है हमारे पास, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनी पद से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, आदरणीय रेणु और अमिता जी, आपको सादर प्रणाम। कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। इंडोर गेम्स में इन्हें कैरम, लूडो, चिड़िया उड़, तोता उड़ अच्छा लगता था। और आउटडोर गेम्स की बात करें तो इन्हें पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे खेलना, ये मिस करते हैं। तो बहुत ही सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं।
1: नहीं, सवाल तो हम दोहरा ही देंगे, लेकिन इसको देखो ना, ये कुछ मैसेज और भी हमारे अच्छा। सामने ये मैसेज है इनका, उत्तम सिंह का, ये गुरुजी के नाम से इन्होंने लिखा है। जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा और अनमोल जुनेजा, तो और सबा गुप्ता भी, तो ये लोग भी लिख रहे हैं और कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल से संबंधित तो कोई जानकारी नहीं, जवाब नहीं दिया है। तो भाई सवाल एक बार हम फिर से अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि आज आपको बताना है कि बचपन में आप कौन से खेल खेलते थे और कौन सा खेल आपको आज तक याद है या मिस करते हैं। आप भले उन खेल को खेल ना पाए, लेकिन जब किसी को खेलते हुए देखते हैं और कहीं आपके बच्चे या घर में कोई खेलता है, तो याद आ जाती है आपको भी कि आप भी ये गेम बहुत अच्छे से खेलते थे।
0: इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार।

0: अभी आपने सुना फिल्म घर से लता मंगेशकर को, ये गीत उनकी आवाज में।
1: रेणुकल से स्वच्छता ही सेवा माह मनाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना और इसे एक जन आंदोलन बनाना है।
0: बिल्कुल अमित, और इस माह को मनाने का उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वच्छता से जोड़ना और ये एहसास कराना कि साफ सफाई केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखो ना, जब तक लोग खुद नहीं जुड़ते यानी जन आंदोलन, जब तक कोई नियम या कानून नहीं बनता तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं।
1: दोस्तों, इसके द्वारा लोगों को कचरे का पृथक्करण, रिसाइकलिंग और कचरा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, स्कूलों और पर्यटक स्थलों को साफ सुथरा और हरा भरा रखना सिखाना है।
0: बिल्कुल अमित, और इसके साथ ही इसके अंतर्गत शहरों को कचरा मुक्त बनाना, वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन करना और स्वच्छता सर्वेक्षण के जरिए नगर निकायों में सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये देशव्यापी विशेष अभियान जन भागीदारी, श्रमदान और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर केंद्रित है।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना हीरा फिल्म से, और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से पूरा शहर सराबोर है। रेणु बप्पा हमारे घर आ चुके हैं तो उनके स्वागत में कुछ मीठा और खास तो बनना ही चाहिए, और जब बात भोग की हो तो सबसे पहले नाम आता
1: ए,
0: है।
1: मोदक का
0: तो कैसे बनाएंगे रेणु?
1: बिल्कुल। तो मोदक बनाने के लिए देखो ना, एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करें, उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ डालें। इसमें धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो ध्यान रहे कि इसमें सूखा नहीं, बल्कि सूखा नहीं करना है इसको, मतलब थोड़ा सा लटपटा ही रहे। तभी इसमें इलायची पाउडर और मेवे मिलाकर गैस बंद कर दें।
0: और आपकी खुशबूदार स्टफिंग तैयार है। और एक बर्तन में 1 कप पानी, 1 चम्मच घी और नमक डालकर उबालें। जैसे ही पानी उबलने लगे गैस धीमी करें और चावल का आटा डालकर लगातार चलाते हुए आटा गूंदें। और 5 मिनट बाद इस आटे को एक परात में निकालें और गर्म रहते हुए ही हाथ में थोड़ा सा पानी या घी लगाकर अच्छे से गूंद लें। आपका आटा तैयार है।
1: बिल्कुल। अब आटा तैयार होने के बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। एक लोई की उंगलियों की मदद से कटोरी जैसा आकार दें। इसके लिए किनारा थोड़ा थोड़ा जो है उसमें उंगलियों में कलियां जैसी बना लें, और फिर बीच में 1 चम्मच नारियल गुड़ की जो स्टफिंग आपने तैयार की थी वो उसमें डालें, और फिर मोदक का एक खूबसूरत आकार देकर और इसको आप तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप सांचे का भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: अब आखिरी और सबसे जरूरी काम, एक स्टीमर या इडली पात्र में पानी गर्म करें और स्टीमर की प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाएं और केले का पत्ता भी आप रख सकते हैं। इस पर मोदक रखें और ढककर 10 से 12 मिनट तक भाप दीजिए। लीजिए, तैयार है आपके स्टीम मोदक।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है रेणु, विदा लेने का वक्त हो चला है।
1: तो मुझे यानी रेणु को
0: और मुझे यानी अमित कमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि

0: एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of country's youth have won the trust of the entire world.
2: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
1: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with a greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today, Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the conference of the parties 21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags, and other essential supplies. This is the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar

0: said, India continues to support Nepal's recovery. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah today said that disaster early warning systems will be implemented on the highest priority following devastating floods in the Bhote-Koshi and Trishuli river basins that caused extensive loss of lives and infrastructure damage. The United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. The experts called for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture, or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. Assam is remembering iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary today. The state has also been observing a 3-day Zubeen Divas since September 17th. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आपके साथ सुनिधि गुप्ता. और आप सुन रहे हैं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम जो कि आप सभी को बहुत पसंद आता है, एक ही फिल्म से. दोस्तों हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जादू सिर्फ उनके गीत संगीत या सितारों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहता. कुछ फिल्में अपने कथानक, रहस्य और रोमांच के कारण दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखती हैं. आज की हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही है. आज हम बात करेंगे साल 1965 में आई एक रोमांचक और रहस्य से भरपूर फिल्म 12 O'Clock. जी हाँ, नाम सुनते ही आपके मन में शायद घड़ी की सुइयां घूमने लगी होंगी. रात के 12 बजने वाले हों, सन्नाटा हो और तभी कोई ऐसा रहस्य सामने आ जाए जिसका जवाब पूरी दुनिया को बदल दे. तो आइए आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जाने इस दिलचस्प फिल्म की कहानी, इसके कलाकार, संगीत और उन तमाम बातों के बारे में जो इस फिल्म को यादगार बनाती है. मैं हूं आपके साथ सुनिधि और आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से. दोस्तों 12 O'Clock सिर्फ एक रहस्य और अपराध की कहानी नहीं है, इस फिल्म में रोमांस और संगीत के लिए भरपूर जगह है. फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर, जिनका संगीत अपने खास अंदाज, लय और ठेठ भारतीय रंग के लिए जाना जाता था. और जब ओपी नैयर संगीत का हो और जब ओपी नैयर का संगीत हो तो गीतों में एक अलग ही चंचलता और ऊर्जा महसूस होती है. तो आइए फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत है, सुन लेते हैं, कैसा जादू बालम तूने डारा.

दोस्तों, ओपी नैयर की खासियत ये थी कि उनके संगीत में भारतीय धुनों के साथ साथ पश्चिमी वाद्य संगीत और लय का भी खूबसूरत इस्तेमाल दिखाई देता था। उनके संगीत की यही पहचान इस फिल्म में भी सुनाई देती है। तो और अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अपराध से जो पूरी फिल्म के रहस्य की नींव रखता है। फिल्म में एक हत्या होती है और परिस्थितियां इस तरह सामने आती हैं कि शक की सुई एक महिला की ओर घूम जाती है। मामला अदालत तक पहुंचता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया वही वास्तव में हत्यारा है, या फिर इस अपराध के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। यही सवाल दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखता है। फिल्म के प्रमुख कलाकारों में एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, गुरुदत्त। गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्मकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। उनकी फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज, कैमरा, प्रकाश और भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने आप में विशिष्ट थी। 12 o'clock में भी उनका अभिनय कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीदा रहमान की बात करें तो वहीदा रहमान का परिचय अब बात उस अभिनेत्री की करेंगे जिनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी अभिनय क्षमता ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। वहीदा रहमान। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी हिंदी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में रही है। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ साथ काम किया और उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई दर्शकों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती रही। 12 o'clock में भी दोनों की मौजूदगी फिल्म के आकर्षण को बढ़ाती है। और फिल्म में संगीत दिया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपी नैयर ने। ओपी नैयर का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा संगीतकार उभरता है जिनकी धुनों में एक अलग तरह की रवानगी रहती है। उनके गीतों में ताल, गति और ऑर्केस्ट्रन की विशेष भूमिका होती है। फिल्म 12 o'clock में गीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को भी सामने लाते हैं। इसके गीत इस तरह से लिखे हुए और ढले हुए हैं कि खुद ब खुद फिल्म की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो आइए इसी बात पर सुन लेते हैं इस फिल्म का दूसरा गीत।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और अपना और अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों, 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में शंकर जयकिशन, SD बर्मन, मदन मोहन, रोशन, OP नैयर और कई अन्य संगीतकार अपनी अलग अलग संगीत शैलियों से हिंदी सिनेमा को मजबूत कर रहे थे। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि इस फिल्म का नाम 12 O'Clock ही क्यों चुना गया। दोस्तों, फिल्म का नाम ही अपने आप में एक उत्सुकता पैदा कर देता है। 12 बजे का समय, लेकिन घड़ी में 12 बजना अपने आप में कोई असाधारण घटना नहीं है। फिर इस फिल्म का नाम इस फिल्म की कहानी से क्या संबंध है? यही वह सवाल है जो फिल्म के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की, 12 O'Clock की, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रात का समय, सन्नाटा, अपराध और एक ऐसा मामला जिसमें सच और भ्रम के बीच अंतर करना आसान नहीं, यही वातावरण फिल्म को एक खास रहस्यपूर्ण रंग देता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घटनाएं जटिल होती जाती हैं। एक तरफ है अपराध का मामला और दूसरी तरफ है उसे सुलझाने की कोशिश। हर सुराग एक नया सवाल खड़ा करता है। जिस बात को सच समझा जाता है उसके पीछे

एक और कहानी निकल आती है और दर्शक लगातार सोचते रहते हैं कि आखिर असली सच है क्या। यही रहस्य 12 o'clock की कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए हम इस फिल्म की बात करते रहेंगे, लेकिन माहौल को थोड़ा रोमांटिक भी बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अभी आपने गीता दत्त की आवाज़ में सुना अरे तौबा, फिल्म 12 o'clock से। दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं iprradiodelhi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप और कौन सी फिल्में इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock का ये गीत, और दोस्तों यही तो हिंदी फिल्मों की खूबसूरती है। एक ही फिल्म में जहाँ रहस्य और अपराध का तनाव हो सकता है, वहीं उसी कहानी में प्रेम, भावनाएं और संगीत भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही एक सुंदर सा गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में।

दोस्तों, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से ही अभिनय करते हैं और दर्शक उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि बस उन्हें वही जोड़ी हर पर्दे पर चाहिए, हर फिल्म में चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी को हिंदी सिनेमा में विशेष स्थान मिला। इन दोनों की फिल्मों में भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। गुरुदत्त की फिल्मों की दृश्य भाषा और वहीदा रहमान की सहज अभिनय शैली का मेल दर्शकों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। 12 o'clock में भी इस जोड़ी के साथ जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में और भी अन्य कलाकार हैं, लेकिन आइए अब हम सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और गीत।

0: रतियां बिताना मुश्किल हो गया, रतियां बिताना मुश्किल।
1: दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ती है। जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके नए तथ्य सामने आते हैं, लेकिन हर नए तथ्य के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा है उसके पक्ष में भी कुछ बातें सामने आने लगती हैं और अपराध की वास्तविकता को समझना और भी कठिन हो जाता है। यहीं से फिल्म दर्शकों को अपने अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फिल्म 12 o'clock की। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाने के लिए, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ चलते हैं इस फिल्म के एक और बेहद खूबसूरत गीत के साथ, जो कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। आइए सुन लेते हैं।

0: ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों दौरान वातावरण नाल संबंधित सारे खेत्रां विच बेमिसाल तरक्की कीती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत होर देशां दे सहयोग नाल काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नवीन युग ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है, वातावरण संभाल विच अहम भूमिका निभाई है।
0: हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्य कांत ने इस मौके बोलदिया कहा कि धरती संभाल का विचार देश विच वातावरण ट्रिब्यूनल नेमबद्ध विधियां अते पालना ढांचे के होंद विच आउण तों पहला मौजूद सी। उन्होंने जंगलों झीलों नदियां अते जंगली जीवों समेत कुदरती वातावरण की रक्षा अते सुधार करन अते जीवों प्रति हमदर्दी रखण दे हरेक नागरिक के बुनियादी फर्ज की महत्ता नूं रेखांकित किया। वातावरण जंगलात ते जलवायु तब्दीली मंत्री भुपिंदर यादव ने कहा कि भारत का वातावरण प्रति दृष्टिकोण इस दी प्राचीन विचारधारा विच डूंघाई नाल जुड़िया होया है, जो धरती नूं संपत्ति वजो नहीं सगों एक सांझी विरासत ते पवित्र खजाना मानदी है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सेंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर NSO वालों कल जारी किए गए जिला वार अंकड़े अनुसार भारत में कामकाजी औरतों की हिस्सेदारी में तेजी नाल वाधा होया है। देश के 57.8% जिले में महिला किरत शक्ति हिस्सेदारी दर 40% या इस तो वध दर्ज की गई। सर्वेक्षण में शामिल 100 जिले में गुजरात का सूरत जिला किरत शक्ति में हिस्सेदारी की सब तो वध दर और कामियां ते आबादी के अनुपात के मामले में देश भर में मोहरी है। सर्वेखण च बिहार के दरभंगा जिले च किरत शक्ति विच भागीदारी के अंकड़े सब तो घट दर्ज किए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूजे पड़ाव विच देहाती विकास मंत्रालय अगले महीने तो बहुते राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों विच लगभग 34,000 देहाती नौजवानों नूं सिखलाई देनी शुरू करेगा। पहले पड़ाव विच हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार ते तमिलनाडु समेत 14 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों विच सिखलाई बैच शुरू करन दीआं तैयारियां दी समीक्षा कीती गई। मंत्रालय ने दस्सिया कि अगले साल 31 दिसंबर तक 3,57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 11 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੰਬੂ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ ਨਾਗੋਆ ਵਿਚ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਪਾਲੋਮਾ ਮਿਜ਼ੂਹੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਤਮਗਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वीं रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दोयम के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फोरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाह गुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबिन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है। और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नए मुकर्रर किए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आजादाना तिजारती मुआहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुआहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कानात तश्कील देते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के टैलेंट और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
0: इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मम्लिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकरूरी के जायजे से जाहिर है कि सरकारी तकरूरियों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, साथ ही इस अमल में ज्यादा शफाफियत आई है। उन्होंने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जरिए एनडीए हुकूमत के 10 साल के दौरान तकरीबन 10,96,000 तकर्रुर किए गए हैं, जबकि यूपीए हुकूमत के दौरान 7,22,000 तकर्रुर हुए थे। 20वां रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया गया है। नौ मुकर्रर उम्मीदवार खजाना, रेलवेज, उमूर दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद की वजारतों समेत हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में ओहदे संभालेंगे। 20वें रोजगार मेले में तकरीबन 12,75,000 नौजवानों ने तकर्रुरनामे हासिल किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि कार्बन इखराज के लिए अक्सर तरक्की पजीर ममालिक को गैर मुनसफाना तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। जनाब मोदी ने वाजह किया है कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनाकिदा COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने माहौलियात से मुतालिक हर शोबे में गैर मामूली पेशरफ्त की है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में छह गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैनुल अक्वामी शमशी इत्तेहाद, हयातियाती ईंधन के आलमी इत्तेहाद, शेरों की नस्ल से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद और मिशन लाइफ जैसी पहल के जरिए माहौलियाती तहफ्फुज के नए पैमाने कायम कर रहा है और बाकी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत की असल तवज्जो काबिले तजदीद तवानाई पर है जो माहौलियाती तहफ्फुज में अहम रोल अदा करती है। तकरीब से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुर्रे अर्ज को बचाने का नजरिया मुल्क में माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स, इंजबाती मैकेनिज्म और तामीली फ्रेमवर्क के उभरने से पहले मौजूद है। माहौलियाती तहफ्फुज से मुतालिक ये दो रोजा कॉन्फ्रेंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए मुनाकिद हो रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौलियाती माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजेस इकट्ठा हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। देही तरक्की की वजारत अगले महीने ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दोएम के तहत तकरीबन 34,000 देही नौजवानों को तरबियत फराहम करेगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु समेत 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तरबियती बैचेस के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजारत ने कहा है कि आइंदा साल 31 दिसंबर तक 3,57,000 से ज्यादा देही नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अज्म से इबारत है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए यह अज्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान के खसूसी सीरीज के तहत अग्निपथ स्कीम का जायजा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने नौजवानों को मुल्क की खिदमत का मौका फराहम करने के लिए साल 2022 में अग्निपथ स्कीम का आगाज किया। स्कीम के तहत नौजवानों को, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, मुसल्ला अफवाज में शामिल किया जाता है। अग्निवीर 4 साल तक खिदमत अंजाम देते हैं। इस दौरान उन्हें फौजी तरबियत से लैस किया जाता है और नज्म व जब्त और मुख्तलिफ महारतों से रूशनास कराया जाता है। उत्तराखंड की मजबूत फौजी रिवायत रही है जहां नौजवान मुसल्ला अफवाज में अहम रोल अदा कर रहे हैं। रियासत के नौजवान बड़ी तादाद में अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती हो रहे हैं। इस साल फरवरी और मार्च के महीने में चंपावत के बनबासा में अग्निवीर भर्तियों में उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। फौज में 4 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद हर बैच के 25% अग्निवीरों को तयशुदा तरीक़ेकार के जरिए मुसल्ला अफवाज में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया जाता है। देहरादून से संतोष थापलियाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है, जिनमें अद्वियात, फोरेंसिक सप्लाईज, खेमे, सफाई सुथराई के किट्स, सोने के लिए बिस्तर और दीगर जरूरी साजो सामान शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुज़ीनों को जबरी तौर पर

0: पालोमा मिज़ोहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुनाकिद होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीसद हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाज़ह किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deendayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary, and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: He said the government's endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with the greater transparency. He said that nearly 10,96,000 appointments were made during the 10 years of the NDA government as compared to 7,22,000 appointments.

0: at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त रेल गृह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और

0: भागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी कार्बन एमिशन पर रोकथाम हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों झीलों नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

0: इसके अलावा तीन न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला यह वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
3: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई

0: कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मनपसंदीदा सेगमेंट एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो कलाकार हैं वो एक जाने माने भारतीय हिंदी फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, अभिनेता और निर्देशक थे। हालांकि वे किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी एक और पहचान थी कि वे आमिर खान के पिता थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन के बारे में। तो श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं की फिल्मों को जो उन्होंने एक निर्माता के रूप में फिल्म को प्रोड्यूस किया, आइए उस फिल्म के गीतों को हम सुनते हैं और करेंगे उनसे उनके जीवन से कुछ रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म कारवां से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल सुरों में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार में ताहिर हुसैन के बारे में। उनका जन्म 19 सितंबर 1938 को शाहबाद में मोहम्मद जाफर हुसैन खान, एक स्कूल शिक्षक जो पश्तून मूल के एक ज़मींदार परिवार से संबंधित रखते थे और आमना के घर हुआ था, जिन्होंने अपनी अरब जड़ों को भारत के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद की, जो कि भतीजी थी और वे 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। ताहिर हुसैन निकहत खान, फरहत खान, आमिर खान और फैजल खान के पिता थे। नासिर हुसैन एक हिट फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, ताहिर हुसैन के बड़े भाई और संरक्षक थे।

आमिर ने अपनी चाचा नासिर हुसैन द्वारा निर्मित और अपने चचेरे भाई मंसूर खान द्वारा निर्देशित कयामत से कयामत तक में अभिनय किया। ताजिर हुसैन ने 1990 में अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म तुम मेरे हो में अपने बेटे आमिर को पहली बार निर्देशित किया।

श्रोताओं, ताहिर हुसैन ने अपनी करियर की शुरुआत अभिनय से की और बाद में वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे। उन्होंने हम है राही प्यार के, कारवा और पैदल यात्रा जैसी कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने वर्ष 1990 में आई फिल्म तुम मेरे हो का निर्देशन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें उनके बेटे आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं। जो हमारे पास पहला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन, जो हमें लेकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है स्वर्ण सिंह का, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गाँव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अमर रामेश कुमार खत्री हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद आमिन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा। और अगला जो संदेश है वो हरजिंदर शिंदा के है, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से। इनके साथ है जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। धर्मेंद्र छिपा हमें लिखकर भेज रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ है कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। जो अगला संदेश है वो है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ताज मोहम्मद हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। जो अगला संदेश है छत्तीसगढ़ पलारी से है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और वो हमें लिखकर भेज रहे हैं कि वे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्दर्शन कौर जी का अगला संदेश आया है मेरठ से, इनके साथ है कविता गौर, और जो अगला संदेश है तुलसी मस्कीन, और इनके साथ है वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। और अगला संदेश जो है वो है राधेश्याम देवांगन का, छत्तीसगढ़ भंवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है नमन ढींगिया, पा ढींगिया, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से।

श्रोताओं, हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो आया है स्वर्ण सिंह का, और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये हमें लिख कर भेज रहे गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अगला संदेश जो है वो है रोजी डिकैस्ट्रो का, इनके साथ है जोन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। ये हमें लिख कर भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से। जो अगला संदेश है धर्मेंद्र छीपा का है, भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ हैं कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। अगला संदेश है बाबू शिवा का, और इनके साथ हैं प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। और ये हमें लेकर भेजें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। सुदर्शन मुखी हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और जो अगला संदेश है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये

श्रोताओं, जो अगला संदेश है वो गुरमीत सिंह का है और इनके साथ हैं मीता, जो हमें लेकर भेज रही हैं साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें संदेश भेज रहे हैं, उदय भानपाल हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ हैं जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। दिन के 3 बजे हैं और अब कार्यक्रम है ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
2: वंदना सखी, देखो राधा अष्टमी महोत्सव आज पूरे ब्रज में मनाया जा रहा है।
0: हाँ।
2: रावल और बरसाना में तो भक्ति की धारा ही बह रही है।
0: हाँ।
2: श्री जी मंदिर बरसाना को तो दुल्हन जैसा सजाया गया है और पूरे बरसाना में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है।
0: और बहना समाज गायन की ध्वनि ते तो पूरा मंदिर झूम रहे है। बहना जी महोत्सव ब्रज की पावन धरा पे भक्ति साधना और प्रेम ते परिपूर्ण होए। प्रेमी रसकन के काजे तो युगल वर की रूप सुधा को पान करना ही बिनको आहार है।
2: और सखी ब्रजवासी कितेक तरह ते युगल वर ते अपनो नातो माने है। कोई बिने आराध्य माने तो कोई लाली लाला कह के लाड़ लड़ा में और मनोरथ सिद्ध करे।
0: हाँ बहना, रसकन के काजे ब्रजवासिन के काजे युगल सरकार को प्रेम और बिन की जन्मभूमि को सुख बैकुंठ के ऐश्वर्य ते बढ़ गए है, तभी तो ब्रज को सुख धाम कहमे है वे।
2: हाँ सखी, सच में जिन गोपी ग्वालन ने युगल स्वरूप की लीला को देखो होएगा वे कितेक पुण्य आत्मा होंगे ना।
0: हाँ, और वे पिता और माता कितेक पुण्य आत्मा होंगे जिनके आंगन में स्वयं प्रेम श्री राधा के रूप में खेल तो होएगा।
2: हाँ सखी, आज राधा अष्टमी पर बरसाना गांव में घर घर बधाई बाज रही है
0: और शिवजी मंदिर में रानी कीर्ति के यहाँ आनंद रस बरस रहे है। कहूँ लाल ध्वजा फहराई जा रही है तो कहूँ राधा सुखरासी की महिमा गाई जा रही है।

कहत नंद प्रस्थान राय सों बहुत बात को जाने भैया, आज भैया हम सब ब्रजवासी तेरे हाथ बिकाने, या कन्या के आगे कोटिक बेटन कौ को माने भैया, तेरे भले भलो सब हिन को आनंद कौन बखाने, आनंद कौन बखाने। बधाई है, बधाई है, बधाई है।

बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है।

सज्जन मागल याचक गुनी गावत गीत सुहाई, जय जय कार भयो त्रिभुवन में प्रेम बेल प्रभटाई। पहरे बसन विविध अंग भूषण गिनतन राजा राने, नाचत गावत प्रेम मुदित नर नारिन को पहचाने। बधाई है, बधाई है, बधाई है।

0: आज बाजत बधाई बरसाने, बरसाने प्रशभान गोप के आनंद की निधि आई, धन्य धन्य कुख रानी की रथ की जिन यह कन्या जाई। वैसे तो बहना श्री राधा जी की रथ की पुत्री हती, परंतु राधा जन्म के बारे में राधा चरित महाकाव्य और पद्म पुराण में दिव्य सरोवर ते उत्पन्न स्वीकार कियो गयो है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वे श्री दामा के श्राप के कारण भूतल पे अवतीर्ण भई जे कारण बतायो है।
1: और ऐसा हो कहे हैं कि वे श्री कृष्ण के ही वा मांगते उत्पन्न भई। जो भी हुई ऐसी अद्भुत बालिका ही जिनके दर्शन के अभिलाषी त्रिभुवन नाथ हते। श्री राधा को कहूँ कृष्ण की प्रेसी तो कहूँ शक्ति कहा गया है।
0: हाँ बहना, अलग अलग संप्रदाय ने राधा तत्व की अलग अलग व्याख्या करी है।
1: हाँ सखी, जैसे पुराणन में श्री कृष्ण की साधना को बिना राधा के उचित न मानो।
0: हाँ सही बात है, सर्वप्रथम निम्बार्क संप्रदाय में ब्रह्म की उपासना श्री राधा और कृष्ण के रूप में करी गई, और राधा जी को श्री रूप गोस्वामी जी ने महाभाव स्वरूपा मानो।
1: और सखी वल्लभ संप्रदाय में तो श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री राधा को ही विशेष स्थान प्राप्त है।
0: बिल्कुल, श्री राधा या संप्रदाय की इष्ट हैं, और बिनय उज्जवल और पवित्र प्रेम की संज्ञा दी गई है। वे तो श्री कृष्ण की ही आराध्य मानी गई हैं।
1: और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी ने तो भगवत प्राप्ति के काजे गोपी भाव को ही साधन माना।
0: हाँ बहना, वैसे सभी संप्रदाय ने राधा कृष्ण की लीलान के भाव को स्वीकार कर वाई तरिया साधन को मार्ग बनायो, और राधा कृष्ण तो जल तरंग के सदृश हैं। जैसे जल और तरंग को अलग करना संभव ना है, वाई तरिया वे दो एक दूजे के आराध्य हैं।
1: और सखी व्यास स्वामी ने हूँ बड़े सुंदर भाव प्रकट करे हैं, तो उनको एक पद सुनवाए दे।
0: बिल्कुल।

0: किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री व्यास स्वामी जी ने यह पद में अद्भुत भाव प्रकट किया है। बहना राधा और कृष्ण सदा ही एक स्वरूप हैं, हाँ। और राधा ब्रजरानी तो चिर प्रेम की कहानी है,
1: हाँ।
0: राधा अष्टमी के अवसर पर युगल स्वरूप की पूजा अर्चना बड़े भक्ति भाव से करी जाए और भक्त जन या अमर प्रेम की मूरत पे बलि बलि जामे हैं।
1: सखी भक्त जन के हृदय में श्री राधा कृष्ण की युगल छवि के भाव जब प्रकट हो में तो वे इनको गाय गाय के झूम झूम के नाच नाच के जयकारे दे के प्रकट करे हैं।
0: और प्रेम की अश्रुधारा आखिन ते बह निकसे है और इन भावन में इन रस में अलौकिक शांति और दिव्यता की अनुभूति होई। तो आज के या पावन अवसर पे आओ युगल छवि के या भजन के माध्यम से दर्शन कर लें।

0: लो राधे गोविंद। सखी बहुत ही सुंदर भजन हमारे श्रोता ने सुनो। अब यही के संग ही हमारा आज का ब्रजमाधुरी कार्यक्रम यही सम्पन्न हो गए है। मोकू यानी के वंदना को
1: और मोकू यानी वंदना जोड़ी को जाइबे की अनुमति दे हो।
0: राधे राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: कहानी क्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक बेटों वाली विधवा। रूपांतरकार निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
3: पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। चार जवान बेटे थे एक लड़की। चारों लड़कों की विवाह हो चुके थे, केवल लड़की ही कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब के साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। फूलमती घर की मालकिन थी। घर की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। संध्या हो चुकी थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, आज उसी की तैयारियां चल रही हैं।
4: अरे बोले क्या, बोरा ना बोरा, यहाँ तो गिरा रखे हैं, यहाँ से उठा।
5: अरे यार सब्जियां इधर रखो, टोकरे इधर रखो।
6: ये बोरे में आटा, कितने बोरे हैं, घी, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके तो सब आ रहे हैं और महापात्र के लिए दान की चीजें भी लाई गई हैं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन, पर मुझे कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियम के अनुसार ये सब चीजें तो मेरे पास आनी चाहिए थी ना। मैं ही तो हर वस्तु को देखती हूँ, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला भी करती हूँ और फिर इन चीजों को भंडार में रखा जाता है। क्या मुझे दिखाने और मेरी राय लेने की जरूरत भी नहीं समझी गई? ये आटा 3 ही बोरा क्यों आया? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही कनस्तर है, मैंने तो 10 मंगवाए थे। हर चीज में कमी की गई है, हर चीज में।
7: 40 वर्षों में घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। इसे वो क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक वो जब्त किए बैठी रही, पर अंत में रहा ना गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वो क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली,
6: कामतानाथ
3: जी अम्मा,
6: आटा 3 ही बोरे आए हैं, मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था ना, और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद होगा मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन बेटा जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, कितनी लज्जा की बात है।
3: हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफी था। इस हिसाब से और भी चीजें कम कर दी गई हैं।
6: अरे भाई, पर किसकी राय से आटा कम किया गया? हा?
3: हम लोगों की राय से।
6: अच्छा, तो मेरी राय कोई चीज नहीं है?
3: है ना, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझ सकते हैं ना।
6: मेरे लाभ हानि के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वो करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। मैंने शायद बहुत तेज बोल दिया, मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं

0: किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता।
1: जो जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में उसकी वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते थे वो कामतानाथ से या बड़ी बहू से।
0: अरे वाह रे, ये कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। हाँ, किसी तरह रोध होकर दफ्तर जाता है, उसमें भी महीने के 15 नागों से कम नहीं होते। वो तो कहो कि साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं, नहीं तो अब तक कभी का निकाल दिया होता। ये बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है, और वो भी मेरी आज्ञा के बिना। हाँ, वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। चाबी उसके पास है, ठीक है, लेकिन जब तक मैं रुपया ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहू, ए बहू।
2: जी माँ जी।
0: तिजोरी क्यों खोली है? हाँ, मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा।
2: बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा क्या?
0: कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे?
2: हिसाब किताब सब हो गया है।
0: वाह, किसने किया?
2: मैं क्या जानू किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ।
1: फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब ये एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है, इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वो निश्चिंत ना बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहां सत्कार में कौन सा नियम भंग होता है, कहां मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे।
0: अरे इस आंगन में तो मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे भाई? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? हाँ, यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता, मगर यहाँ सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह ये बला सर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सट कर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखी हुई है। ये पूड़ियां तो ठंडी हैं। अरे कम से कम गर्म पूड़ियां तो लोगों को परोसते। मैदे की पूड़ियां ठंडी होकर कितनी बुरी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोई को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही तो बातें नाक कटाने की हैं।
3: अरे भाई, सब कुछ तो तैयार है, फिर देरी किस बात की?
1: आंगन में 200 लोगों से ज्यादा बैठने की गुंजाइश नहीं है भैया। खाने वाले होंगे 500 के लगभग। जीमने वालों को 2 पंगतों में ही बैठाना ठीक रहेगा।
3: कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो उमानाथ। अरे भाई, 2 पंगतों में लोगों को खाने बिठाओगे तो निपटते निपटते रात के 2 बज जाएंगे। अरे सीतानाथ।
4: जी भैया।
3: जरूरत भर का सब सामान तैयार है?
4: सब तैयार है कामता भैया।
3: तो उमानाथ।
1: जी भैया।
3: बिठाओ सबको पंगत में और कह दो थोड़ा सिकुड़ सिकुड़ कर बैठे। दयानाथ।
5: जी भैया।
3: परोसने वालों से कहना हाथ जरा फुर्ती से चलाएं।
1: अरे चाचा चाचा बैठिए। अरे बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। अरे आप बैठिए तो सही, बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, सब बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। थोड़ा सटके बैठिए बैठिए।
0: अरे बाप रे, कैसे आदमी के ऊपर आदमी बैठा दिए। हाँ, ठंडी ठंडी पूड़ियां परोस रहे हैं और रसोई को भी उठा दिया, नाक कटवाएंगे सब।
6: अरे पानी।

0: हाँ
1: उमरनाथ भैया,
0: अरे सांस ले लो, थाम लो, फिर बोलो क्या हो गया।
1: कुम्हड़े की तरकारी में नमक नहीं डाला, लोग ऊपर से नमक मांग रहे
0: हैं।
1: पानी भी गर्म है, ठंडा पानी चाहिए सबको।
0: अरे तो हमसे क्यों बोल रहे हो दया हैं? तरकारी में हमने नमक डाला क्या? हमने छोकी तरकारी। रही बात ठंडे पानी की, तो जाकर राम सेवक को बोलो बाजार दौड़ाओ, वो लाएगा ना बर्फ। जाओ
1: ठीक है, जा रहा हूँ।
2: हे भगवान, क्या है ये? तरकारी में नमक नहीं, ठंडे पानी का प्रबंध नहीं, इतनी रात गए कहां से लाएगा बर्फ? खाली हाथ ही लौटेगा? मेहमानों को गर्म पानी पीना पड़ा। हे परमेश्वर, मेरा बत्सलता ना इन लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी चीचा लेदर मेरे घर में कभी नहीं हुई। ये सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी सुध नहीं रही। अरे सुध रहे कहां से है? बस गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब की बात है ना। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं।
3: मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डाल रही थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली,
2: मुंह में कालिक लगी कि नहीं? ये अभी भी कुछ कसर बाकी है। हुँ? अरे डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे हम। कोई जवाब नहीं ना तुम लोगों के पास? तुम लोगों को क्या, आत्मा तो उनकी रो रही होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्यादा बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित किया है। शहर में थूत हो रही है, कोई तुम्हारे दरवाजे थूकने भी नहीं आएगा।
3: 2 महीने गुजर गए थे। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है।
4: कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा।
5: देखो भाई, तुम तीनों जो चाहो सो कहो, पर मेरा मानना है बाबूजी की बात बाबूजी के साथ गई। माना मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपए में बेचे वो आदमी ठीक नहीं। ऐसे आदमी के लड़के से हम अपनी गुड़िया सी बहन कुमुद का विवाह कैसे कर देंगे, बताइए। अच्छा सुनो,
3: हाँ जी भैया,
5: उसे मना कर दो और दूसरे वर की तलाश करो।
3: ठीक है।
5: अब देखो, हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। 5 मुरारी पंडित के दहेज में दे देंगे और 5,000 बाजे गाजे मेघ न्योछावर में उड़ा देंगे, तो हम तो हो जाएंगे ना ठन ठन। क्यों मां, गलत कह रहा हूं क्या?
3: नहीं नहीं भैया, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। कामता भैया, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत है।
5: बिल्कुल,
3: मैं अपने हिस्से में से तो एक पाई नहीं दे सकता। दयानाथ भी कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है जिंदगी में।
1: जी भैया, कामता भैया, मेरा विचार एक समाचार पत्र निकालने का है।
5: अच्छा।
1: प्रेस और पत्र के लिए कम से कम 10,000 की रकम चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा।
3: सही कहते हो,
1: बिल्कुल। समाचार पत्रों में केवल लेख लिख कर मेरा निर्वाह संभव नहीं।
3: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता।
6: देखिए जी, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है।
3: बिल्कुल सही बात है,
6: है ना। अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। नसीबों के खेल है सब, क्यों नहीं? ठीक बोला ना मैंने?
3: बिल्कुल ठीक कह रही है।
5: भाई वाह, बात में तुम्हारी दम है श्रीमती जी। और इसी साल हमें सीतानाथ का विवाह भी तो करना है।
3: सीतानाथ भी बड़ा हो गया।
5: क्यों सीतानाथ?
7: भैया, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें।
3: क्यों, क्यों ना करें?
7: जब तक मैं किसी काम काज में ना लग जाऊंगा विवाह ना करूंगा।
3: अरे
7: आप मेरे हिस्से के रुपए कुमुद के विवाह में खर्च कर दीजिए।
5: क्या
3: अपना हिस्सा?
5: ऐसे कैसे?
7: देखिए भैया, सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाए।
3: बड़ा समझदार हो गया तू तो है। सीता, तुम अपने हिस्से के 5 दे दोगे तो बाकी के 5 कहाँ से आएंगे? बताओ बताओ, खर्च तो 10,000 का है ना।
5: बिल्कुल, कहाँ से आएंगे?
7: भैया, मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वो इतने लालची भी नहीं कि बाबूजी के निधन का ख्याल करके कुछ नरम ना हो।
3: हमारी क्यों सुनने लगे हो?

0: भैया 3,000 नकद में अगर वो संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में कुमुद का विवाह संपन्न हो सकता है।
1: तुमने कह दिया और वो मान जाएंगे हैं? सुन रहे हैं कामता भैया?
2: तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? सीता अपने रुपए दे रहा है, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर थोड़ी ही है। फिर सीता को तत्काल रुपए की जरूरत भी नहीं है, पढ़ने के लिए सरकार से वजीफा पाते ही है।
3: तुम बहुत दूर की नहीं सोच पाते थे ना? कौन जानता है, कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या ये सिविल सर्विस में आ जाएं, उस वक्त सफर की तैयारी में ही 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे। नहीं?
1: सही बात, बिल्कुल।
3: तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे?
1: बताओ
3: बताओ जी, हमारे पास भी होगा या नहीं कौन जानता है। और बड़े भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि कुमुद के विवाह के पीछे सीतानाथ का भविष्य नष्ट हो। समझ आई कुछ?
0: जी भैया, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपयों की जरूरत होगी।
1: हाँ, जरूरत होगी। अब आई बात समझ में?
3: क्या ऐसा होना असंभव है?
0: असंभव तो नहीं है भैया, लेकिन वजीफा मिलना कठिन अवश्य है। तो फिर जैसा आप उचित समझे। मुझे तो यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत जाऊँ या ना जाऊँ, कुमुद जरूर अच्छे घर में जाए।
3: अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता सीतानाथ। मैं तो चाहता हूँ मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर कुमुद के लिए खोजा जाए जो थोड़े में ही राजी हो जाए। पंडित दीनदयाल कैसे? तुम तो उन्हें जानते हो ना?
1: अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। MA BA ना सही, लेकिन जजमानी से अच्छी आमदनी है दीनदयाल जी की।
2: अम्मा से भी तो पूछ लो भैया।
3: दयानाथ, मुश्किल यही है कि तुम रत्ती भर व्यवहारिक नहीं हो। अम्मा की बात कर रहे हो? हैं? अम्मा की? अरे उन्हें तो बस एक ही धुन चढ़ी हुई है कि कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए और चाहे हम लोग तबाह हो जाएं।
1: हाँ, और ये भी देख लीजिएगा, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देंगी।
3: बिल्कुल।
4: हाँ, सारे गहने कुमुद को कैसे दे देंगी जी? उनके गहनों पर क्या हम बहुओं का कोई अधिकार नहीं?
3: अरे भाई सुनो, इस मामले में तुम चुप रहो तो ही अच्छा है। गहने अम्मा के हैं, जिसको चाहे उसको दे है? ये उनका स्त्री धन है।
1: भैया, स्त्री धन है तो क्या वो उसे लुटा दे? आखिर वो भी तो बाबूजी की कमाई से ही आया है।
3: अरे भाई उमानाथ, किसी की भी कमाई हो लेकिन गहने अम्मा के हैं।
1: अरे वाह, अजीब बात है, 20,000 के तो 4 हिस्सेदार हैं।
3: हाँ तो?
1: और 10,000 के गहनों पर केवल अम्मा का अधिकार है?
3: हाँ।
1: क्यों? ऐसा क्यों? उसमें भी तो हम भाइयों का हिस्सा है। भले 2,500 हिस्से में आए, मैं इस रकम को आसानी से छोड़ नहीं सकता कामता भैया।
3: अच्छा,
1: देख लेना, इन्हीं गहनों के बल पर अम्मा कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के साथ कर देंगी। कोई ना कोई चाल चलनी पड़ेगी हमें अम्मा से गहने ऐंठने के लिए।
3: देखो भाई, मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता, मतलब नहीं डालना चाहता।
1: अच्छा, नहीं डालना चाहते?
3: हाँ।
1: तो आप अलग बैठिए, ठीक है? बैठिए अलग। दया
2: जी। भैया
1: बोलो।
2: मैं साथ हूँ भैया।
1: सीता
0: जी भैया।
1: तुम?
0: भैया मैं अलग रहूंगा।
1: तो रहो, चलो दया।
5: हे राम।
1: अम्मा।
5: हाँ बेटा।
1: अम्मा सो गई क्या?
5: कौन?
1: मैं।
5: अच्छा, उमानाथ। और अच्छा दया भी है? दया, अरे तुम दोनों इतने घबराए से क्यों हो बेटा?
1: अम्मा
5: क्या हुआ, बोलो बोलो ना बेटा।
1: अम्मा तुम तो जानती हो, समाचार पत्रों में लेख लिखना कितना जोखिम का काम है।
5: हाँ।
1: दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है।
5: मुझे एक बात बताओ, तुमने रुपयों का प्रबंध करने को कामता को नहीं कहा?
1: कहा अम्मा कहा, मगर उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो, रुपए उन्हें प्राणों से प्यारे हैं।
5: चलो मैं चलती हूँ, देगा कैसे नहीं, दफ्तर में नौकरी करता है, रुपए होते किस दिन के लिए है?
1: नहीं नहीं अम्मा नहीं, कामता भैया से कुछ मत कहो।
5: मेरे पास और कुछ तो है नहीं, गहने हैं, उन्हें ले जाकर गिरवी रख दो और जमानत देकर मुसीबत से छुटकारा पाओ।
1: सच सच अम्मा?
5: गहने हैं किस दिन के लिए बेटा? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने क्या आग में झोंकूंगी? रुको मैं देती हूँ।

0: ये लो पकड़ो दया, लो।
1: कुछ भी हो अम्मा, मैं तुम्हारे गहने तो नहीं लूंगा। किस मुंह से तुम्हारे गहने ले जाऊं?
0: तुम अगर ये गहने नहीं लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी। जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता बेटा।
2: अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा दया, लेकिन याद रखो जैसे ही हाथ में रुपए आए तो अम्मा के गहने सबसे पहले छुड़वा लेना, समझे?
1: जी जी जी भैया।
2: सच ही है, माँ के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है।
3: तीन महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाए। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में एकमत ना हो सकी। माँ पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। और फिर एक दिन आपस में कलह हो गई।
0: कामता
4: जी। अम्मा,
0: मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
4: हाँ बोलो अम्मा।
0: देखो बेटा, तुम लोगों को 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद
4: जी।
0: उसमें से क्या कुमुद 5,000 की भी हिस्सेदार नहीं है? माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का कोई हक नहीं होता?
4: अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है। 2-4 साल में आप प्रस्थान कर जाएंगी, हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। माँ, बाबूजी जीवित थे तब और बात थी, उसके विवाह में वे जैसा चाहते और जितना चाहते खर्च करते, कौन उनका हाथ पकड़ सकता था बताइए। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की बचत करनी पड़ेगी ना माँ, और जो काम 1,000 रुपए में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है बताओ।
2: 5,000 क्यों, 10,000 कहिए कामता भैया।
4: मुझे जो कहना था कह दिया।
0: विवाह तो पंडित मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा कुमुद का। 5,000 खर्च हो या 10, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर उसे जोड़ा है,
4: तो
0: अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तो क्या?
2: हम लोगों की कोई
0: तुम लोगों ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया? कुमुद ने भी उसी कोख से जन्म लिया है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, तुम बैठो और तमाशा देखो। 20,000 में 5,000 कुमुद का है।
4: अम्मा, तुम अब बस बात बढ़ा रही हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो ना, वो तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं, हमारे।
0: अच्छा?
4: हाँ, तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती।
2: अरे कामता भैया, अम्मा का दोष नहीं है इसमें, अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, ना हक उलझ रही है।
0: अरे भाड़ में जाए तुम्हारा कानून।
2: अच्छा,
0: मेरे जीते जी मेरे रुपए नहीं छू सकते तुम।
4: अच्छा,
0: मैंने तीनों बेटों के विवाह में 10-10,000 खर्च किए हैं और कुमुद के विवाह में भी वही खर्च करूंगी। और क्या है ये कानून, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या इस घर में तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ी हूँ?
2: अब हमने तो ये नहीं कहा अपने मुँह से, जैसा तुम समझो अम्मा।
0: वाह, मैंने घर बनवाया, संपत्ति जोड़ी, तुम लोगों को जन्म दिया पाला, और आज मैं इसी घर में गैर हूँ। अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता होकर रहना स्वीकार नहीं, इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अधेर, पेड़ मैंने लगाया और उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती।
2: दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी, बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए।
0: कुमुद, अरे वहाँ क्यों खड़ी है बेटा? रो मत।
5: अम्मा।
0: मत रो बेटा, तेरी विदाई का शुभ मुहूर्त है ये, थोड़ी देर बैठ मेरे पास।
5: क्या बात है अम्मा?
0: अरे आ ना बेटा, बताती हूँ, इधर आ। आ ये

0: ये रुमाल में कुछ सेवर और रुपए हैं, इन्हें रख ले चुपचाप से। मेरे तो मन की मन में ही रह गई, तेरे बाबूजी जीवित होते तो आज तेरा विवाह इस तरह होता, लोग देखते तू ऐसे ही रूखे रूखे विदा हो रही है।
1: अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन गहनों को अपने पास रखो, ना जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े।
0: ना ना कुमुद, ये मैंने तेरे लिए बचा कर रखे हैं।
1: अम्मा,
2: अरे कुमुद, यहाँ कोठरी में क्या कर रही है? चल जल्दी कर, जल्दी चल। अरे मुहूर्त टला जा रहा है, बाहर लोग हाय हाय कर रहे हैं। फिर तू दो चार महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना हो तब ले लेना।
0: मेरे पास अब क्या बचा है उमानाथ, जो इसे दूंगी? भगवान तेरा सुहाग अमर रखे। ईश्वर, मेरी अंतिम लालसा भी अधूरी रह गई।
2: अरे माँ, ऐसा क्यों सोचती है?
0: तू जा,
2: शांत हो जा, मैं तो जा ही रहा।
0: निकल बाहर।
3: अम्मा, अम्मा।
0: हाँ।
3: इस बरसात में कहाँ जा रही हो अम्मा?
0: तुम तो नल का पानी पीते नहीं हो कामता, इसलिए गंगा जल लेने जा रही हूँ।
3: रहने दो अम्मा, सुबह से तो चौका बासन में लगी हो, छोड़ दो, पानी में भर लाऊंगा।
0: तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी लग जाएगी।
3: तुम भी तो भीग रही हो ना अम्मा, और कहीं बीमार पड़ गई तो?
0: मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, भगवान ने मुझे अमर कर दिया है।
2: सही कहती हो अम्मा। अरे कामता भैया, जाने दो जाने दो, अम्मा को जाने दो, बहुत दिनों तक बहुओं पर राज कर चुकी है अम्मा, इनका कुछ तो प्रायश्चित हो, कुछ तो प्रायश्चित करने दो।
0: अरे भगवान,
2: जाओ जाओ,
0: क्या संतानें हैं।
2: गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो, घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था।
4: बोलती कहानी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक बेटों वाली विधवा। रूपांतरकार, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे मालविका जोशी, नितिन भसीन, उमेश दीक्षित, संयम खन्ना, यशिका नैयर, सुहानी और कृष बब्बर।
5: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

这里广播电台现在播送一篇短评，题目是印度总理纳伦德拉莫迪表示印度成为半导体产业的首选目的地。

0: 印度代理广播电台，这次播普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: जी हाँ नमस्कार, आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में मैं हूं हेमंत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवीण यादव। हम दोनों लेकर चलेंगे आपको खेलों के उस खूबसूरत सफर पर जहां हर मोमेंट होता है बेहद खास। और आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2026 की और साथ ही बात होगी हॉकी मेंस एंड विमेंस, साथ में बात करेंगे एशियन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन की, साथ में बात होगी फिडे चेस ओलंपियाड की, डेविस कप की भी बातें करेंगे, बात होगी WTT स्टार कंटेंडर अस्टाना की, साथ में बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया U19 क्रिकेट की और साथ में बात होगी सुब्रतो कप की और अन्य खेल

0: खबरों पर भी नजर रखेंगे और आपको सुनवाएंगे एशियन गेम्स में इंडियन फ्लैग सेरेमनी मूवमेंट्स का म्यूजिकल आगाज। और क्यों ना प्रवीण, उसी से किया जाए आगाज।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: जी हां, जापान के आईची नगोया में 20वें एशियन गेम्स 2026 का बहुत ही शानदार तरीके से आगाज हो चुका है। इस बार भारत ने अपने खेल इतिहास का एक बहुत बड़ा दल वहां भेजा है, जिसमें 37 अलग अलग खेलों के लिए 500 से भी ज्यादा एथलीट शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल महाकुंभ है जो 19 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 45 देशों के एथलीट 43 खेलों में अपनी किस्मत और मेहनत आजमा रहे हैं। भारत की नजरें इस बार अपने पिछले प्रदर्शन को और भी बेहतर करने पर टिकी है। आपको याद होगा कि हांगजू में हुए पिछले एशियन गेम्स में भारत ने कमाल कर दिया था और 107 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। उस समय हमने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस बार जब उद्घाटन समारोह हुआ तो भारत का झंडा थामने का गर्व इस बार जब उद्घाटन समारोह हुआ तो भारत का झंडा थामने का गर्व दोहरे ओलंपिक मेडल विजेता निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के सुपरस्टार पवन सहरावत को मिला, जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खास पल था। इस पूरे खेल के माहौल के बीच सबसे ज्यादा निखाएं अगर किसी खेल पर हैं तो वो है हमारी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें। दोनों ही टीमें अपने पुराने सुनहरे इतिहास को दोहराने और आने वाले समय के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के इरादे से मैदान पर उतर चुकी हैं। ये टूर्नामेंट भारतीय हॉकी के लिए सिर्फ एशिया में अपना दबदबा साबित करने का मौका नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अहम सीढ़ी है लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए। नियमों के हिसाब से बात करें तो समीकरण बहुत सीधा है कि जो भी टीम इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतेगी उसे सीधा ओलंपिक का टिकट मिल जाएगा। वहीं जो टीमें दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेंगी उन्हें ओलंपिक में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर्स के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। कोई भी टीमें उस दबाव में नहीं पड़ना चाहती और कोई भी टीम उस दबाव में नहीं पड़ना चाहती। यही वजह है कि भारत की दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं ताकि सोने का तमगा जीत कर अभी से ओलंपिक की टेंशन खत्म कर दी जाए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। हमारी टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी है, यानी पिछले एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी हमारे ही पास है। हांगजू में टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन खेल में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हाल ही में हुए विश्व कप में भारतीय टीम को कुछ निराशाजनक पलों का सामना करना पड़ा था, जहां टीम के डिफेंस यानी बचाव पक्ष में कुछ खामियां नजर आई थी और रणनीति के मामले में भी टीम थोड़ी पीछे रह गई थी। उन गलतियों को सुधारने के लिए टीम ने बहुत मेहनत की और मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि खिलाड़ी मैदान पर अपना संतुलन ना खोए। टीम की कमान एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक फील्डर और शानदार कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में है। इस बार भारत को पूल ए में रखा गया है। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां भारत के सामने मेजबान जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया की टीमें हैं। अगर हम आज की रैंकिंग और हाल की फॉर्म की बात करें तो भारत इस पूल में सबसे मजबूत टीम नजर आती है, लेकिन मैदान पर कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है, इसलिए किसी भी टीम को और किसी भी मैच को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर हम भारतीय पुरुष टीम के मैच के शेड्यूल पर नजर डालें तो पता चलता है कि हर मैच की अपनी अहमियत है। सभी मैच राउंड रॉबिन तरीके से खेले जाने हैं। भारतीय टीम अपने सफर की शुरुआत 20 सितंबर रविवार को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद टीम को सिर्फ एक दिन का आराम मिलेगा और 22 सितंबर को उनका सामना श्रीलंका से होगा। असली चुनौती की शुरुआत 24 सितंबर को होगी, जब भारत के सामने दक्षिण कोरिया की टीम होगी। कोरिया की टीम अपनी तेज रफ्तार वाले खेल के लिए जानी जाती है, इसलिए ये मुकाबला देखने लायक होगा। इसके बाद 26 सितंबर को भारत को मेजबान जापान से भिड़ना है। जापान को उनके घरेलू दर्शकों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे यह मैच काफी रोमांचक हो जाएगा। पूल स्टेज में आखिरी मैच 28 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा। इसके बाद दोनों पुलों से टॉप की दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, और फिर 3 अक्टूबर को वो खास दिन होगा जब गोल्ड और ब्रॉन्ज के लिए टीमें आमने सामने होंगी। इस बार पुरुष टीम को जो सिलेक्शन हुआ है इस बार पुरुष टीम का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें अनुभव और युवाओं के जोश का बहुत ही अच्छा तालमेल रखा गया है। पीआर सृजेश के रिटायरमेंट के बाद अब गोलकीपिंग की पूरी जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा के कंधों पर आ गई है। दोनों ही बहुत शानदार गोलकीपर हैं और ये उनके लिए खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अगर डिफेंस की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ अनुभवी अमित रोहिदास हैं, साथ ही जुगराज सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, संजय राणा, सुमित और यशदीप सिवाज जैसे मजबूत खिलाड़ी हैं, जो विपक्षी टीम के स्ट्राइकर्स को आसानी से गोल की तरफ नहीं जाने देंगे। मिडफील्ड, जिसे टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहां मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक कुमार प्रसाद, राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल और नीलकांत शर्मा जैसे फुर्तीले खिलाड़ी मौजूद हैं। हार्दिक सिंह की तेज पासिंग और मनप्रीत का अनुभव टीम के बहुत काम आएगा। वहीं आगे

0: कर गोल करने का जिम्मा अभिषेक नैन, मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह पर होगा। अगर हम भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो उनका जोश और आत्मविश्वास इस वक्त सातवें आसमान पर है। महिला टीम ने हाल ही में जो FIH हॉकी महिला विश्व कप 2026 खेला था उसमें उन्होंने पांचवां स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया था। पिछले 50 सालों में विश्व कप में ये उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस शानदार सफलता के बाद हॉकी इंडिया ने टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। खुशी की बात ये भी है कि सिर्फ सीनियर ही नहीं बल्कि जूनियर महिला टीम ने भी हाल ही में चीन को हराकर लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप जीता है। इससे यह साफ हो गया है कि भारतीय महिला हॉकी का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। टीम के मुख्य कोच सोजर्ड मारिन, जो इसी साल जनवरी में वापस आए, उनके आने से टीम के खेल में बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। एशियन गेम्स 2026 में महिला टीम को पूल बी में रखा गया है। उनके साथ इस ग्रुप में जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान की टीमें हैं। टीम की कप्तानी मिडफील्डर सलीमा टेटे कर रही हैं। महिला टीम भी अपना पहला मैच पुरुष टीम की तरह 20 सितंबर को खेलेगी, जहां उनका सामना उज्बेकिस्तान की टीम से होगा। महिला वर्ग के ये पूल मैच 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 27 सितंबर तक चलेंगे। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले 30 सितंबर को खेले जाएंगे। महिला हॉकी का फाइनल यानी गोल्ड मेडल का मैच 2 अक्टूबर को होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय महिला टीम ने पिछले 44 सालों से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। पिछली बार 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स में ये कमाल हुआ था। इस बार हमारी खिलाड़ी इसी 44 साल के सूखे को खत्म करने के मजबूत इरादे से मैदान में उतरी हैं। महिला टीम के खिलाड़ियों पर नजर डालें तो यहाँ भी अनुभव और युवा टैलेंट का शानदार संगम है। गोल पोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए टीम की दीवार कही जाने वाली अनुभवी सविता पूनिया है और उनके साथ देने के लिए बिचू देवी मौजूद है। डिफेंस में सुशीला चानू के अनुभव के साथ साथ इशिका चौधरी, ज्योति और शिल्पी डावास जैसे नाम शामिल है। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा टेटे अपनी तेजी से मैदान पर छा जाने के लिए तैयार हैं। उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, सुनीलिता टोपो, नेहा और दीपिका सोरेंग मिडफील्ड को मजबूती देंगी। विरोधी टीम के गोल पोस्ट पर हमला करने के लिए लाल रेम सियामी, नवनीत कौर, ऋतुजा दीपिका, ईशिका बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग जैसी बहुत ही खतरनाक फॉरवर्ड खिलाड़ी मौजूद हैं। इस टीम में 11 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हाल ही में अपना बड़ा डेब्यू किया है और अपने शानदार खेल से सबको हैरान कर दिया है। इस बार एशियन गेम्स के ये सभी हॉकी मैच जापान के काका मेघारा में स्थित गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के नियम काफी बदल गए हैं। अब मुकाबले 35-35 मिनट के हाफ की बजाय 15-15 मिनट के चार क्वार्टर में खेले जाते हैं। ये कुल 60 मिनट का खेल होता है। इस नियम से खेल की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मैदान पर दर्शकों को बहुत रोमांच देखने को मिलता है। इस तेज रफ्तार वाले खेल में खिलाड़ियों की फिटनेस और उनके समय समय पर मैदान से बाहर बुलाकर आराम देने की रणनीति बहुत अहम होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एशियन गेम्स भारतीय हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। भारतीय पुरुष टीम जहां अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगातार दूसरा गोल्ड जीतना चाहती है, वहीं महिला टीम अपने विश्व कप के शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 44 साल का इंतजार खत्म करना चाहती है। दोनों ही टीमों का असली मकसद सिर्फ एक मेडल जीतना नहीं है बल्कि सीधा ओलंपिक का टिकट पक्का करके आने वाले समय की टेंशन को खत्म करना है। पूरे देश की धड़कनें इस खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है और हर किसी को यही उम्मीद है कि जापान के इस मैदान पर भारतीय हॉकी की टीमें तिरंगा सबसे ऊंचा लहराएंगी। एशियन गेम्स में दोनों भारतीय टीमों के आगाज से पहले हमने बात की भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: जफर साहब, भारत चार बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
2: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री ऑल्सो, तो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहेंगे भी, बिकॉज with the same mentality.

0: अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट, मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टेमिना, स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें, ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट ऑल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो
1: जी
0: डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर
1: जी
0: खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो
1: जी
0: इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली भी, और हम
1: जी
0: लोग को एक्सपीरियंस भी है, वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, कि बिकॉज यू हैव टू
1: जी
0: मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड एंड ऑल दी, यू हैव टू फाइट विद हायर रैंक टीम, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स।
1: सफर साहब, टीम से संबंधित एक सवाल, पी शिजेश की कमी काफी ज्यादा महसूस की जा रही है।
0: बहुत ज्यादा इन द सेंस के देखिए, वो जो टीम थी जो हमने 2020 ओलंपिक खेला, 2024 खेला, उसमें ब्रॉन्ज मेडल दोनों में हमने जीता है, इज अ बिग थिंग। श्रीजेश का भी हाथ है, और जो लड़के थे वो विनिंग कॉम्बिनेशन डेवलप होता है बड़े दिनों के बाद, वो सेट होती है टीम। एज फार एज एशियन गेम्स इज कंसर्न, मेरे ख्याल में उसकी इतनी फीलिंग नहीं होनी चाहिए।
1: जापान, कोरिया, मलेशिया, इनमें से कौन खतरनाक आपको लग रही, किसके खिलाफ भारत को ज्यादा संभल कर खेलना होगा?
0: मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है, मलेशिया है, और हमारे पूल में ये जो टीमें हैं जापान, साउथ कोरिया, तो ये अच्छा हमारे पूल में क्रॉस होगा हमारा, या तो पाकिस्तान से होगा या दूसरी टीम जो सेकंड
1: जी
0: आएगी मलेशिया से होगा, उनको हमें जीतना, पे फाइनल खेलना है।
1: महिलाओं के बारे में पूछ लेता हूँ आखिर में, चलते चलते, महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में। सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
0: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम, और इसीलिए हम लोग तो 5वें स्थान पे आए। इज नॉट सो इजी टू गेट फिफ्थ प्लेस इन द वर्ल्ड कप थी, मगर ये जरूर कहूंगा कि महिलाओं का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग को मुबारकबाद देना चाहिए कि और इसी तरीके से बढ़ती रहे, क्योंकि सामने कॉमनवेल्थ गेम्स भी 2030 में बींग होस्टेड बाई इंडिया, तो वहां की तैयारी तो अभी से शुरू नहीं करेंगे तो फिर कहां जाएंगे।
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने आकाशवाणी दिल्ली को समझ लिया, बहुत शुक्रिया।
2: अब बात करते हैं एशियन गेम्स में अन्य खेलों। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार रहा है। 18 सितंबर 2026 को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। इस मैच में जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रनों पर सिमट गई, जिसमें भारत की श्री चंडी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। जवाब में भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 15 गेंदों में नाबाद 40 रनों के तेज पारी की बदौलत केवल 5 ओवरों में आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लिया। क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद अब भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ कल 20 सितंबर को होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा। इस स्पर्धा के स्वर्ण और कांस्य पदक के मुकाबले 20 सितंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। दूसरी ओर एशियन गेम्स में पहली बार शामिल किए गए टेक बॉल्स खेल से भारतीय खेमे के लिए मिश्रित परिणाम आए हैं। नगोया के हिकाशी स्पोर्ट्स सेंटर में चल रही इस प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग में भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल तक का सफर तय। आज 19 सितंबर 2026 की सुबह 10 बजे टेबल नंबर
3: हिनी ईदैक स्वहिली या आकाशवाणी हम जम्बो वस्कली वेटू अफ्रीका मशवी की नमाहाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाई न सिकी का टू नटंगा जीनी क्वेनिक्लो हार्ट्स एल्फू को मीना टीसा मिया टीसा नाम सीनी यानी मीटा बैनी को मीना सीटा व पिनवा वस्कली जाजी सासा टू नावाली टेनी की पिंडी मालूम नैनिलिया को सिकलीजा ईदाहिया की सहेलिया आकाशवाणी
4: वर्ल्ड सर्विस हम जम्बू असली विटू व पेंडवा व एशिया माशवाई की एशिया मगवाई भी ना बारल अफ्रीका न महाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाही न सिकी का टूनटंगाजीनी क्विन्ने मासाफा या एल्फो टानो ना थेलाथीनी पंगवेतुवा की स्वाहली कुटो का इदे की स्वाहली या
3: आकाशवाणी
4: उना वेजा को सिक्रीजा कुटो

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98 6 7 0. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema
1: नमस्कार. नमस्कार जी.
2: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव चोलदा बागपत से संजय ढींगा.
2: संजय भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: रोहित जी और वेदपाल जी की आवाज में कोई बढ़िया शेरानी सुनवाइएगा.
2: जरूर सुनवाएंगे. हेलो ग्राम संसार.
3: हेलो ग्राम संसार.
2: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ.
2: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है. आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: वेदपाल और रोहित सिंह की गाई हुई रागनी सुनवा देना. कुछ नाम लेने चाहूंगा
2: जी.
3: सुमित तेवतिया, प्रत्यक्ष, प्रिंस, छोटू, निष्कर्ष, हमारी बुआ जी राजवीरी, और खुशियालपुर से हैं पंडित रतनलाल और मास्टर शेर सिंह मोदी जी, और डालमपुर से हैं वीरपाल प्रधान जी, आजमगढ़ से राजकुमार जी.
2: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो ग्राम संसार.
4: हेलो, नमस्कार भाई.
2: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं से बोल रहा था जी, यादराम वारी.
2: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज सुनाओ जी, रोहित सिंह, वेदपाल.
2: जरूर सुनवाएंगे.
4: नाम है अवे शर्मा या सुभाष.
2: हेलो ग्राम संसार.
5: राम राम साहब.
2: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: खुर्जा, उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा.
2: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: रोहित सिंह एवं वेदपाल को सुनवा दो.
2: जरूर सुनवाएंगे. तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर रोहित सिंह और वेदपाल से ये रागनी. किस्सा रहेगा नवल दे परीक्षित का.

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं इंदर सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बराना जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: गजेंद्र सिंह को सुनवा देना
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: और मेरे साथी आरती भारती साथी मिसेज कविता देवी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव पनियार से जिला हिसार से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: गजेंद्र सिंह की सुना दिए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम जी साहिर रोहित कविता ममता राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: सती भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं हरिंदर बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से।
0: हरिंदर भाई, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: गजेंद्र को सुनवा दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: तो नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: मेरे बड़े भाई साहब हैं बजेंद्र। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ये गजेंद्र सिंह को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, मास्टर फुंदन सिंह और जगदीश मोटा बादलपुर।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर गजेंद्र सिंह से ये रागनी, किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।

0: सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी बहन भाइयों का नमस्कार।
4: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं और वहीं कोई ना कोई ऐसा विषय होता है जिससे हमारे कृषि जीवन में, हमारे युवा जीवन में ऐसी राहें खुलती रहें जो हमें रोजगार के संसाधन अपने आसपास उपलब्ध कराती रहें।
3: आपने रोजगार की

0: बात तो बहुत सही कही है अमित, क्योंकि हर कोई युवा यही चाहता है कि उसके हाथ में रोजगार हो। यदि उसके हाथ में रोजगार होगा तो स्वाभिमान भी उसके अंदर होगा, और जब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास होगा तो हमारे भारत का नव निर्माण होगा। और जब योजना की बात करते हैं तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये भारत सरकार की एक योजना है और मत्स्य क्षेत्र के विकास की प्रमुख योजना इसे हम कह सकते हैं। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कमलेश, क्योंकि भाई रोजगार की जब बात आती है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्तंभ सिद्ध होती है हमारे युवाओं के लिए। और जो हमारे लाभार्थी हैं, यदि हम महिलाओं की बात करें, आरक्षित वर्ग की बात करें, तो इसमें अनुदान भी दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और मछली परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास भी हमारे युवा साथी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ मछली उत्पादन से आप जुड़े हुए हैं तो उत्पादन को बढ़ाना और जो आपका नुकसान हुआ है उसको कम करना, मूल्यवर्धन को करना और जो आपकी बाजार व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है।
1: इस योजना से जो भी हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, और बैंकों में इसके अनुदान की व्यवस्था की गई है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक बन के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
0: और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों का सामाजिक विकास चाहती है और उनका आर्थिक कल्याण चाहती है।
1: बिल्कुल, यही उद्देश्य है इस योजना का मित्रों। और कार्यक्रम किसान वाणी में जब हम कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की सलाह आप तक पहुंचे, आप उसके अनुसार अपने कृषि कार्य को करें, तो निश्चित ही नव भारत का निर्माण होता है।
0: फूल जो है वो हमारे जीवन में केवल रंग ही नहीं भरते, केवल खुशबू ही नहीं भरते, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। जो हमारे किसान भाई बहन फूलों की खेती कर रहे हैं, या ऐसे हमारे साथी जो फूलों की खेती करना चाहते हैं, कोशिश है कि कहीं से कोई आधार मिले, कोई जानकारी मिले, तो आज किसान वाणी कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा विषय है फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं डॉक्टर ऋतु जैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
0: डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: जब बात की मैंने फूलों की खेती की
2: जी,
0: तो ये क्यों महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमें खाने के लिए गेहूं, दाल, चना, सब्जी, सब चीजें इम्पोर्टेंट हैं, तो हमारी आत्मा को खुश रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए फूलों की बहुत जरूरत है। तो फूल एक ऐसी चीज है जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है और हमें खुश कर देती है। साथ ही साथ फूलों का मनोवैज्ञानिक जो है हमारे ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। आप ये देखिए, कभी भी आप किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं, एक फूलों का गुच्छा ले जाइए तो वो कितना खुश महसूस करता है। तो फूल जो है सिर्फ इसी चीजों के लिए नहीं, फूल हमारे किसी भी त्योहार में, शादी में, विवाह में, पर्व में, साथ ही साथ कोई आपकी राजनीतिक रैली है, कोई आपका धार्मिक आयोजन है, इसके अलावा आपके होटल में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, विभिन्न विभिन्न जगह पर फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए किसानों की आय का ये एक बहुत बड़ा साधन है, तो इसलिए फूलों की खेती करना बहुत आवश्यक है।
0: क्योंकि पूरे साल ही जो है फूलों की मांग रहती है और हर कोई चाहता है कि हर मौसम में वो फूल उनको उपलब्ध हो जाए। तो जब हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में जो नवाचार है उससे हम क्या समझे?
2: देखिए, जहाँ तक हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में तो हम बहुत तरह के फूल उगा सकते हैं, चाहे वो कट फ्लावर हो, चाहे वो लूज फ्लावर हो, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो। पर जब हम बात करते हैं नवाचार की, नवाचार का मतलब है कुछ भी नई तकनीक का हमें फूलों को उगाने के लिए इस्तेमाल करना। तो हम उसमें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हम बात करें टपक सिंचाई की, चाहे हम माइक्रो इरिगेशन बोलें उसको, या फिर हम सेंसर का इस्तेमाल बोलें, चाहे हम मल्चिंग की बात करें, तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के हम क्या करें, तो इन सब चीजों के लिए हम बहुत सारी जो नई नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो हम संरक्षित खेती कर सकते हैं, चाहे तो अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पौधे उगा सके, तो वो पॉटेड प्लांट उगाते हैं, या फिर वो नर्सरी की बात कर सकते हैं कि नर्सरी आप किस तरह से उगाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, नए नए हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नवाचार के आयाम है। इनफैक्ट इसके अलावा फूलों को कैसे काटना है और फूलों को किस समय हमें कैसे उनको श्रेणीकरण करना है, उनको कैसे मार्केट में भेजना है, उन सब चीजों के लिए बहुत सारी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: जी, अभी आपने बात की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: जैसे हम बात कर रहे थे नवाचार की, तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब कि हम कुछ भी नई टेक्निक लेकर आते हैं। जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, ग्रोइंग मीडिया जो है, सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया की बात करें जिसमें मिट्टी नहीं होती, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी बालकनी में पौधे उगाने हैं, छत पे पौधे उगाने हैं, तो छत हमारी ऐसी है या बालकनी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा भार मिट्टी का बर्दाश्त नहीं कर सकती
0: जी।
2: तो उसके लिए हम सॉइललेस मीडिया जिसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, रॉक वूल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो लेका बॉल्स आती हैं, जो लेका बॉल्स हैं वो बहुत ही हल्की बॉल्स होती हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं पौधों को उगाने के लिए छत के ऊपर। या आपने देखा होगा अगर आप एयरपोर्ट जाएं या कहीं बड़े बड़े मॉल्स में जाएं तो बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, उसके साथ में छोटी छोटी भूरे रंग की बॉल्स होती हैं
0: जी।
2: तो वो क्या करती हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करती है, मतलब मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है, आपका पानी का वाष्पीकरण कम होता है। उनमें मिट्टी नहीं है तो कोई कीट और व्याधि होने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि फफूंद वगैरह का या कोई रोग उनको नहीं लगता। साथ ही साथ पौधा उसमें स्वस्थ रहता है, और समय समय पर हम अगर उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते रहें, पोषक तत्व है जो कि आप सिंगल न्यूट्रिएंट के जैसे भी डाल सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाकर भी उसको डाल सकते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। साथ ही साथ नवाचार की बात कर रहे हैं या इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, फूलों को जब कटाई करते हैं तो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर भी हम संरक्षित खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस हैं, वहां पर रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है फूलों को काटने के लिए, मतलब कि कली की जो अवस्था है खुलने की या उसका कली का जो रंग है वो दिख रहा है, तो वो सब चीजें रोबोट से देखकर या एआई का इस्तेमाल करके उसे काटी जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि फसल देखनी है आपको, कहीं फसल में कोई व्याधि तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, किसी कीट का प्रकोप तो नहीं हो गया, तो बहुत सारी जो फिनोमिक्स टेक्निक्स होती है, मतलब फोटो ले लेकर देखा जाता है कि कहां पर जो हमारा पौधा है वो क्षतिग्रस्त है, तो उस तरह की चीजों को भी इस
0: शामिल किया जाता
2: है। जी जी बिल्कुल
0: जी। और जब हम बात करते हैं विविधीकरण के आयाम, तो इससे जो हमारे श्रोता हैं वो क्या समझे?
2: जी देखिए, फूलों की खेती सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाने तक सीमित नहीं है। जैसे कि हम बात करें गेंदे की, सबसे ज्यादा जो एक आम आदमी समझता है वो गेंदे का फूल या गुलाब का फूल, या तो हम उसको माला के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुले फूल इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, और या फिर जो गुलाब है उसको कट फ्लावर के लिए भी देते हैं कि किसी को गिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल हैं जो पूरा वर्ष भर उगाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें विविधीकरण में आवश्यकता है ये जानने की कि हमारी मार्केट क्या है, मार्केट में किस समय पे किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सभी लोग गेंदे की खेती या गुलाब की खेती एक समय करने लगे तो उससे किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, मार्केट में एकदम ग्लट आ जाएगा और ग्लट आने से रेट जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कट फ्लावर की अलग अलग क्रॉप्स जैसे जूही, चमेली, गुलाब, गुलदाउदी, बबूना और गैलाडिया, चाइना एस्टर, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में हम रहते हैं उस तरह की क्रॉप्स उगाएं। साथ ही साथ कट फ्लावर के क्रॉप्स जैसे गुलाब है, गुलाब के बाद कार्नेशन है, ग्लैडियोलस है, ट्यूबरोज है, ऑर्किड्स है, जर्बरा है, तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं एक तो हम उसको उगाएं। ये तो होगी फ्लावर की खेती की बात। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी उत्पादन
0: जी।
2: लोगों को पौधे तैयार ना करने पड़े और वो पौध उनको मिल जाए ताकि वो रेडीमेड उसको लगा सके, चाहे वो लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए लगाएं, चाहे वो अपने इस्तेमाल के लिए लगाएं। उसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल, पौध सामग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अच्छे बीज मिलना, अच्छे कंद मिलना ये और अच्छे बल्ब मिलना ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो उस तरह की पौध सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा संवर्धन कर सकते हैं
0: जी।
2: जो हमारे पास मार्केट में ग्लट आ गया है, हमारे जो सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो उसके बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम है, इत्र है, साथ ही साथ अगरबत्ती है और गुलाब जल है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, शैम्पू है, बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन है और ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं। साथ ही साथ एक टर्फ ग्रास की बात करूंगी, लॉन ग्रास, वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, हम मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो ये लॉन ग्रास होता है आप देखेंगे हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स हों, चाहे वो आपके बड़े खेल के मैदान हो, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है, नए फ्लैट्स, नई कॉलोनीज कट रही है, सब जगह टर्फ ग्रास का इस्तेमाल होता है। तो टर्फ ग्रास भी एक अच्छा आयाम है जिसके बारे में हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं फ्लोरिकल्चर के साथ, वो ये कर सकते हैं
0: जी। और आजकल तो डॉक्टर साहब हर कोई ये बोलता है कि हम डिजिटल हो गए हैं, तो जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल डिजिटल और स्मार्ट कृषि के अंतर्गत फूलों की खेती को हम रखकर देख सकते हैं क्या?
2: जी बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे डिजिटल और स्मार्ट खेती हर एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो सबसे ज्यादा डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि इरिगेशन में, कि इरिगेशन किस तरह का होना चाहिए। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें हमें कभी तो स्प्रिंकलर इरिगेशन चाहिए होता है, तो कभी तो ड्रिप इरिगेशन चाहिए होता है, तो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हम डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम कि इस इतने दिन तक हमें ये देना है, उसके बाद हमें ये टेक्नोलॉजी फॉलो करनी। उसके अलावा रोबोट जो है वो देखेगा पौधों को कि किसी में कोई बीमार पौधा तो नहीं है, कोई खराब पौधा तो नहीं है, किसी की क्वालिटी खराब तो नहीं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले तो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, उसके बाद लिक्विड वो दे देते, तो वो भी अब टपक सिंचाई से माइक्रो इरिगेशन के साथ देना है, कितने घंटे के बाद देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, नाइट्रोजन कब देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कब देना है, फास्फोरस कब देना है, पोटाश कब देना है, तो ये सब जो चीजें हैं वो स्वचालित तरीके से आपके स्मार्ट खेती के अंतर्गत आती हैं, तो इनका इस्तेमाल खूब आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल खेती सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, आप अपनी फसल को, अपनी उपज को बेचने के लिए भी उसका इस्तेमाल करें
0: जी।
2: बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया जिनको हम सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देके, अपनी रील्स बना के, अपने प्रोडक्ट की मशहूरी करके उन सब चीजों को आप बेच सकते हैं, कुछ समूह बना सकते हैं। तो इस तरह का जो डिजिटल एरा है, क्योंकि अब आने वाला एरा तो डिजिटल एरा ही है, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई कि जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारी खेती उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और अब बात करते हैं कोल्ड चेन की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए कोल्ड चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लोरिकल्चर का, क्योंकि जो फूल हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और हमें कटाई से लेकर जब तक वो अल्टीमेटली रिटेलर या कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाते, मतलब कटाई से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए हमें कोल्ड चेन का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हमारा फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, फ्लावर की लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी, ज्यादा दिन तक आपका फूल चलेगा, साथ ही साथ उपभोक्ता को अच्छा फूल मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, आपको अच्छा प्राइस देगा। तो कूल चेन मतलब आपने फूल काटा और काटने के बाद इमीडिएटली उसको आपने ठंडे पानी की बाल्टी में रखा, उसके बाद उसको आप पैकिंग हाउस में लेकर जहां पर एक प्रॉपर कोल्ड चेन या कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, वहां पर उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग सब अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन की जा रही है। उसके बाद जब पैकेजिंग हो गया तो पैकेजिंग करके उसको हम फिर कोल्ड स्टोरेज में फ्लावर को रखेंगे जब तक कि वो हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे
0: जी।
2: तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेन हमें रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब वो होलसेलर के पास पहुंचता है, चाहे वो रिटेलर के पास पहुंचता है, वहां जाकर भी वो ठंडे स्थान पर ही उसको अगर स्टोर करेंगे तभी फूलों का प्राइस भी अच्छा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और हमारी जो एक मंशा है कि कोल्ड चेन से क्वालिटी अच्छी बढ़ जाए तो वो भी किया जा सकता है।
0: और डॉक्टर साहब, जब आपने अभी कोल्ड चेन की आप और हम बात कर रहे थे, सुनकर लग रहा है कि ये तो काफी महंगा होगा और एक जो किसान है वो इतने महंगी चीजों को या इतना जो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा, तो क्या ये मिलकर बनाना होगा या इसका भी कुछ ऐसा प्रबंध है कि किराए के हिसाब से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं?
2: जी देखिए, कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो एक अकेले किसान के लिए करना ये संभव नहीं है। अगर हम छोटे सीमांत किसान की बात करें तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर एक समूह बनाकर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इसको किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोरेज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अनुदान भी देती हैं, 60-70% के करीब अनुदान भी मिलता है। तो आप NHB हो या कोई एपीडा हो, या बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे अगर किसान हमारा बात करें तो उनको अनुदान भी मिल सकता है, तो वो ये सब फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं
0: जी। अगर मान लीजिए कि हमारे कार्यक्रम सुनकर कोई किसान भाई खेती करना चाहता है, फूलों की खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या सोचना होगा, कैसे अपनी एक प्लानिंग करनी होगी?
2: जी देखिए, सबसे पहले किसान को ये देखना है कि उसके आसपास की मार्केट क्या है, मार्केट का सर्वे करना है, मार्केट में फूलों की जरूरत है क्या, है क्या नहीं। उसके बाद उसको अपना क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप ग्रो करनी है, उसको अपना सॉइल टेस्टिंग कराना है, वाटर टेस्टिंग कराना है, मिट्टी और पानी की जांच के बाद उसको ये देखना है कि यहाँ के लिए कौन सी सूटेबल क्रॉप्स हैं, किसी एक विशेषज्ञ की सलाह लेकर वो उगाए। और उसके बाद मैं तो ये कहना चाहूंगी कि खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण ले ले, चाहे किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ले ले या फिर किसी कृषि विश्वविद्यालय है वहां से ले सकते हैं, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर भी आकर वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो इस तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं।
0: जी, अब उसको बाजार तो मिल गया है, उसके बाद में क्रॉप जो है वो कहाँ से मिलेगी या बीजों की उपलब्धता जो है वो कहाँ से वो लेकर आएगा, और उसके बाद में उनको जैसे कोल्ड चेन वाली बात की गई है तो उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे, इसके बारे में भी आप हमें बताएं।
2: जी देखिए, बात है जहां तक कि क्रॉप कौन सी उगानी है वो तो उस एरिया की जलवायु और पानी के ऊपर और मिट्टी के ऊपर निर्भर करेगा। आपने लूज फ्लावर उगाना है या कट फ्लावर उगाना है, पहले तो ये हमें डिसाइड करना है। तो लूज फ्लावर उगाना है तो उसके लिए हम गेंदा उगा सकते हैं, गेलाडिया उगा सकते हैं, हम रजनीगंधा उगा सकते हैं, हम गुलाब उगा सकते हैं, तो इस तरह की फसलों का हम चयन कर सकते हैं, या फिर बबूना उगा सकते हैं, गुलदाउदी उगा सकते हैं, तो ये सब फसलें हैं जो कि बहुत अच्छे फूल देती हैं। तो इनका जो बीज है, इनके बीज की उपलब्धता जो पास का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, एक तो वहां से हमें बीज मिल सकते हैं या किसी सत्यापित नर्सरी से बीज लिया जा सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, या फिर जो भी केंद्रीय संस्थान है आसपास में जो कि फूलों पे काम करते हैं वहां से बीज लिया जा सकता है। जैसे हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो इस वक्त अगर हम गेंदे की बात करें तो हमारे पास 5-6 जो किस्में हैं गेंदे की वो ली जा सकती हैं, और उसकी अलग अलग समय पर खेती होती है। तो इन सब चीजों का मेरा मानना है कि किसान अगर किसी विशेषज्ञ के पास जाएगा तो वहां से वो पूरी जानकारी भी मिलेगी, कैसे करना है सब उसको मिल जाएगा। उसके बाद बात की आपने कोल्ड स्टोरेज की। देखिए, कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर हमारी मार्केट दूर हो, नजदीक मार्केट है जैसे दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, और हम गाजीपुर तक भेज रहे हैं और लूज फ्लावर हैं, तो इतना बहुत ज्यादा हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर कहीं पर आपको फसल जो है स्टोर करनी है, आपकी आज डिमांड नहीं है, मान लीजिए कोई त्योहार है, दो दिन के बाद आपको अच्छा प्राइस मिलने वाला है मार्केट में, तो आपको कोल्ड स्टोर की और कोल्ड चेन की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे कि आप चाहे तो सरकारी संस्थान से अनुदान लें, चाहे तो आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, इस तरह के प्रयास करके किसान जो है लाभ उठा सकता है।
0: तो चलते चलते जो हम बार बार AI की बात करते हैं, तो AI का क्या महत्व है?
2: जी देखिए, AI means artificial intelligence। अगर हम बात करें, मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कभी कभी हमसे चूक जाते हैं देखने के लिए, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हर प्रोग्राम एक फिक्स होता है, कोई चीज देखना है इतने डिग्री पे ही देखना है, इतने एंगल पे देखना है, यही कलर होना चाहिए, यही RGB स्कीम होनी चाहिए, इतने ही सेकेंड में वो टेस्ट पास होना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है आपको मदद करती हैं आपका काम आसान करने के लिए। जो चीजें आप आंख से कई बार चूक जाते हैं तो वो आप AI के माध्यम से देख सकते हैं। AI आपको ये भी बता देगा कि आपको पौधे में क्या डिजीज लगी है, AI से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी हुई आपके पौधे को, उसका क्या निदान है, और आपको अगर बीमारी ही पता चल जाए तो उसके लिए आपको ये बता देगा कि आपको ये पौधा रखना है नहीं रखना है, कितना फसल के लिए हानिकारक है या नहीं है। साथ में रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो वो भी AI से ही चलते हैं, स्वचालित जिसे हम कहते हैं, उसके बाद AI का इस्तेमाल आप अपनी क्रॉप को मार्केट में बेचने के लिए भी कर सकते हैं, आप नए नए क्या प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस सब चीजों के लिए भी AI का इस्तेमाल।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम, और इस पर विस्तृत जानकारी दे रही थी डॉक्टर ऋतु जैन, जो प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में।
1: बिल्कुल कमलेश जी, ये तो बात रही कार्यक्रम में बातचीत, जिससे हमारे कहीं ना कहीं साथी जागरूक होंगे और कोशिश करेंगे कि फूलों की खेती में जब हम वैज्ञानिक सोच लेकर के आते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है, लागत मूल्य कम लगता है। वहीं कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं को सुनवाएंगे एक रागनी कलाकार रविंद्र खालोर।

0: मित्रों, ये आप रागनी सुन रहे थे रविंद्र खालोर की आवाज में।
1: हमारी जो कृषि है वो मौसम पर ही आधारित है। जब हम किसान भाइयों को मौसम का पूर्वानुमान बता देते हैं तो उससे उनको फायदा ही होता है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से साफ और धूप वाला मौसम रहेगा। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर हम वर्षा की बात करें तो बारिश की संभावना ना के बराबर है।
0: मित्रों, जब मौसम का पूर्वानुमान कार्यक्रम में आप तक पहुंच जाता है तो वही बात आती है हमारे किसान भाइयों के लिए। वैज्ञानिकों की कृषि सलाह के द्वारा की गई खेतीबाड़ी से निश्चित ही हम अधिकतम लाभ लेते हैं और हमारा उत्पादन अच्छा होता है, लागत कम हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुख्य फसलों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की है। यदि सितंबर के बचे हुए दिनों की हम बात करें तो इस समय धान की फसल के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जाती है कि जो अगेती धान की वैरायटी है वो पकने की कगार पर है, और कृषि मंत्रालय ने सलाह दी है कि कटाई में बिल्कुल भी किसान भाई जल्दबाजी ना करें, अनाज को अच्छी तरह पकने दें ताकि मंडियों में अधिक नमी के कारण फसल रिजेक्ट ना हो।
1: जिन किसान भाइयों ने इस समय सोयाबीन की खेती की हुई है उनके लिए सलाह दी जाती है, अगेती किस्में जो पक रही हैं और पछेती किस्में फलियां भरने की महत्वपूर्ण अवस्था में हैं, और जब 90% फलियां पीली पड़ जाएं तो अगेती किस्मों की कटाई तुरंत कर लें ताकि अचानक

0: बारिश होने पर दाने खराब ना हो।
1: बिल्कुल, और वहीं ये बात कीट नियंत्रण की है तो वही तंबाकू की इल्ली और गर्डल बीटल के प्रकोप पर भी नजर रखें। सब्जियां और रबी की तैयारी, वे किसान भाई जान दें, वर्तमान मौसम अगेती मटर की बुवाई के लिए बेहद अनुकूल है। जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए बुवाई से पहले बीजों को कैप्टन या थीरम जैसी फफूंद नाशक दवाओं से उपचारित अवश्य करें। तो मित्रों, ये थी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह हमारे किसान भाई बहनों के लिए।
0: और हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन है, जब हम किसानवाणी कार्यक्रम लेकर आते हैं तो देखो कितने सारे आयाम हम अपने कार्यक्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं वो क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, ये तो तभी पता चलेगा जो हमें फीडबैक मिलेगा। तो जब फीडबैक की बात करते हैं तो क्यों ना श्रोताओं को अपना ईमेल आईडी भी बता दें। वो हमारे ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आप अपने जो भी विचार हैं या और इस कार्यक्रम में आप क्या चाहते हैं वो सुझाव आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं।
1: मित्रों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: हरे

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने एक खूबसूरत गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार

0: व्यक्त किया।
1: नमस्कार, मेरा नाम वाणी बालिया है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूंगी।
2: मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हुआ है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
3: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी रिज के करीब 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13000 एकड़ हो जाएगा। दिल्ली की पारिस्थितिकी सुरक्षा, हरित आवरण और वायु गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। रिज राजधानी की प्राकृतिक विरासत होने के साथ साथ उसका हरित सुरक्षा कवच है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केवल भूमि को कानूनी संरक्षण देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रिज के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्जीवन और आक्रामक प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CMC स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा विभाग के अंतर्गत अभिलेखागार की ओर से इन विरासत क्लबों के छात्रों के लिए कई व्यावहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली के छात्रों को राजधानी की समृद्ध सांस्कृतिक, स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज PS मौर्य एनक्लेव में थाना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों से सीधे बातचीत करने, शिकायतें सुनने और तय समय में उनका समाधान करने का एक मंच है। श्री संधू ने कहा कि भरोसा कायम करने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए मार्केट समिति के साथ सक्रिय साझेदारी बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल शकुरपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अभियान में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ वृक्षित फाउंडेशन के युवा स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। उपराज्यपाल ने स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपने आसपास की स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर श्रमदान के माध्यम से पार्क की सफाई करना और उसमें सकारात्मक बदलाव देखना बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे।
5: इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र

0: नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। SIR के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। यश दबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। अध्यक्ष यश दबास ने कहा कि PG और हॉस्टल की ऑडिट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: हमारे लिए सबसे जो पहला विशेष मुद्दा रहेगा वो रहने वाला है कि हर एक PG और हॉस्टल का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, क्योंकि आप सभी ने देखा जो सत्य निकेतन पे दुर्घटना हुई थी। हम नहीं चाहते आने वाले भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो।
1: सचिव रिया छाबड़ी ने कहा कि परिषद को जीत युवाओं की बदौलत मिली है।
3: अपनी सीट से बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है अपने संगठन को, अपने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया उनको, अपने टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। जेंजी प्रोटेस्ट में जेंजी हमारे साथ है, तभी हम 3 सीटों से जीते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में इस जीत पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि यह जीत राष्ट्र प्रथम की नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा कि यह जीत परिषद की विद्यार्थियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता में युवाओं के अटूट भरोसे को दर्शाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीनों विजेताओं को बधाई दी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा यह जीत ABVP पर युवाओं के भरोसे को दर्शाती है।
4: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत, 3 सीटों पर ABVP ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। ये दिखाता है कि आज का युवा भ्रमित नहीं है, इसलिए आज का युवा ABVP को समर्थन देता है।
1: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के बीच जाकर उसकी वास्तविक चुनौतियों को समझना और उनके समाधान विकसित करना चाहिए। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली स्टार्टअप नीति के अंतर्गत दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप्स और 4,00,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब के युवाओं और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी का दायित्व है।
6: वो युवा भाई जो इस नशे की गिरफ्त में हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाए। आज गांव-गांव, शहर-शहर में ये नशे का दानव अपना रूप बढ़ाता जा रहा है। अब इसे समाप्त होना होगा और ये नशा मुक्त पंजाब यात्रा उसी की शुरुआत है।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। श्री कटारिया ने कहा कि ये पहल चंडीगढ़ की विकास यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि है। इससे श्रम का सम्मान, सहकारी स्वामित्व, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जोनल कार्यालय ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी के 42 करोड़ रूपये से अधिक के इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की FIR के आधार पर जांच शुरू की। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल मजबूत संबंधों के आधार पर साझेदारी को नया रूप दे सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक संगोष्ठी में डॉक्टर वागले ने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत की त्वरित सहायता की सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
7: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
1: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी में व्यापक स्वच्छता और सफाई गतिविधियां जारी रखी। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जीजे क्लस्टरों, प्रमुख मार्गों, सेंट्रल वर्ज और अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा है कि एआई आधारित टूल्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग आसान हो गई है। राजधानी में दो दिन के डॉक्टर एआई ग्लोबल सम्मेलन में डॉक्टर बरनवाल ने कहा कि बीमारी की समय पर पहचान होने से शीघ्र उपचार संभव होगा, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का दो दिन का आईडीए दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस आज से पश्चिम बिहार में शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ डेंटल क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना सहित कई स्थानों पर आज राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने को मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: सामीन की खदमत में सरफराज आलम का सलामो आदाब। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा लेकर। सामीन, मुशायरे हमारी तहजीब का अहम हिस्सा हैं। इसने माजी में भी जबान व अदब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया है और असर हाजिर में भी इल्म व अदब और तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाने में इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुशायरे उर्दू जबान व तहजीब की एक ऐसी खूबसूरत रिवायत हैं जिसकी मिसाल दुनिया की दूसरी जबानों के अदब और सकाफत में बमुश्किल ही मिलेगी। मुशायरे की ऐसी ही एक खूबसूरत महफिल लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मुशायरे में जिन शुअरा को आप सुनेंगे उनमें शामिल हैं जनाब शर्फ नान पारवी, जनाब अमीर अमरोही और जनाब जावेद अब्बासी। निजामत के फरायज अंजाम दे रहे हैं जनाब फरमान चौधरी।
10: सामईन, एक बार फिर हम उर्दू मजलिस के खास प्रोग्राम महफिल मुशायरा में आपका इस्तकबाल करते हैं। अपने आज के इस खास मुशायरे में डॉक्टर फरमान चौधरी के साथ जिन शुरा को अपना कलाम पेश करना है उनके नामे नामी इस तरह हैं। जनाब शरफ नान पारवी साहब हमारे साथ हैं, जनाब डॉक्टर अमीर अमरोही साहब हमारे साथ हैं और जनाब जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। इस बावकार महफिल मुशायरा का आगाज मैं अपने कलाम से करना चाहता हूं। मैं इजाज़त चाहता हूं सभी सामईन से और शुरका से। गजल का मतलब समाप्त फरमाइए।
11: जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह।
10: तेरे दिल में ठिकाना चाहता हूँ।
11: क्या कहने क्या कहने।

0: आता हूँ।
1: अच्छा शेर है डॉक्टर साहब, अच्छा शेर है। वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लो फिर तुमको जिताना चाहता हूँ, और मुझे ये हिजर है मंजूर यूं भी।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
0: मुझे ये हिजर है मंजूर
1: यूं भी।
0: मैं तुमको याद आना चाहता
1: हूँ, मैं तुमको आजमाना
0: तुमको याद।
1: डॉक्टर साहब क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा।
0: और शेर समाप्त फरमाइए,
1: मैं तुमको याद आना चाहता हूँ।
0: तुम्हारे जिस्म की सरगम को अपने,
1: तुम्हारे जिस्म की सरगम को अपनी,
0: तुम्हारे

0: हाँ, एक घर
1: बनाना।
0: बनाना
2: अरे वाह
1: चार।
2: भाई
1: बहुत
2: वाह भाई,
1: अच्छे
2: अरे वाह भाई
1: हैं।
2: वाह,
1: बहुत
2: बहुत खूब,
1: शुक्रिया।
2: बहुत खूब, वाह वाह।
0: जहाँ
1: पहुंचे ना
0: पहुंचे ना कोई
1: गम का साया।
0: गम।

0: वाह वाह वाह,
1: वहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ। हाजरीन और सामाईन, इस समा खराशी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस महफिल मुशायरे को आगे बढ़ाता हूँ और मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब जावेद अब्बासी साहब से कि बराह करम अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम जावेद अब्बासी साहब।
2: याद उस बे वफा की आई है,
1: वाह वाह,
2: याद उस बे वफा की आई है,
1: वाह,

0: वाह वाह वाह वाह।
1: अब के गुलशन में दिलकशी ही नहीं,
0: अब के गुलशन में
1: वाह,
0: दिलकशी
1: अब
0: ही
1: के
0: नहीं।
1: गुलशन में दिलकशी

0: खोलिए।
1: शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद अब्बासी साहब, अपना खूबसूरत कलाम हमें सुना रहे थे। सामईन, उर्दू मजलिस का ये महफिल मुशायरा, अब हम इसको आगे ले जाते हैं और इस शेर के साथ मैं दावत दूंगा डॉक्टर अमीर अमरोही साहब को कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो सामईन हजरात समाअत कीजिए मोहतरम डॉक्टर अमीर अमरोही साहब को।
2: तुझे अगरचे गुरूरे सितम ज्यादा है,
1: तुझे
2: तुझे अगरचे गुरूरे सितम ज्यादा है, हमें भी अपने खुदा पर भरम ज्यादा है। हमें भी अपने खुदा पर भरम

0: प्यादा
1: है।
0: है।
1: वाह वाह वाह वाह
0: और एक और मतलब देखें, खताए कम हैं हमारी,
1: वाह
0: रकम ज्यादा है।
1: वाह वाह वाह
0: खताए कम हैं हमारी, रकम
1: रकम
0: ज्यादा
1: ज्यादा है।
0: है।
1: वाह
0: कुछ हम पे तेरी नवाजिश कलम
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: है।
0: है।
1: वाह वाह वाह
0: कुछ हम पे तेरी नवाजिश कलम
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: है।
0: है।
1: हाँ
0: और शेर मुलायजा फरमाए, हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो।
1: हाय हाय हाय हाय
0: हमें ये डर है कि
1: रुसवाइयाँ
0: रुसवाइयां नसीब ना हो।
1: हाय हाय
0: कुछ हम पे आपकी नजरे गरम ज्यादा है।
2: बहुत अच्छा है, बहुत
0: हमें
1: खूब।
0: ये डर है
1: अरे
0: कि
1: डॉक्टर साहब क्या कहने,
0: रुसवाइयां,
1: वाह वाह वाह
0: शुक्रिया जनाब,
2: बहुत
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये डर है
2: अच्छा,
0: कि रुसवाइयां नसीब ना हो।
1: हाय हाय हाय
0: कुछ
2: वाह
0: हम पर आपकी नजरे करम ज्यादा है।
1: हाय हाय हाय
0: कुछ हम
2: वाह
0: पर आपकी नजरे करम ज्यादा है। और ये भी शेर देखें, जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं।
1: हाय
0: शर्फ साहब
1: हाय
0: देखिए,
1: जी जी आता आता हूँ बता
0: जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं, सनम कदों से मुकद्दस हरम ज्यादा है। सनम कदों से, जो बुत
1: मुकद्दस
0: कदों के परस्तार
2: हरम
0: हैं समझते
1: वाह
0: हैं,
1: वाह वाह वाह वाह
0: सनम कदों से मुकद्दस हरम ज्यादा है। और ये भी शेर देखें कि हमारे
1: वाह
0: पास तुम्हें क्या मिलेगा हम सुखनों, हमारे
1: ओहो
0: पास
1: तुम्हें क्या
0: तुम्हें
1: मिलेगा
0: क्या
1: हम
0: मिलेगा
1: सुखनों
0: हम सुखनों,
1: वाह
0: हमारे पास खुशी कम है गम
1: गम
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: है।
1: है। वाह वाह वाह वाह
0: हमारे पास खुशी कम है गम
1: गम
0: ज्यादा
1: ज्यादा है
0: है।
1: क्या कहने हैं।
0: और
1: वाह
0: शेर
1: वाह हाय
0: मुलायजा फरमाए, अब ऐसी शक्ल में क्यों कर तुम्हारे पास आए।
1: हाय
0: अब ऐसी शक्ल में
1: क्यों
0: क्यों
1: कर
0: कर तुम्हारे पास आए, हमारी जान पे बारे अलम ज्यादा
1: ज्यादा है।
0: है।
1: हाय हाय हाय
0: हमारी
1: हाय बहुत अच्छा
0: जान पे बारे अलम
1: वाह
0: ज्यादा है। और फरमान साहब शेर
1: इरशाद
0: देखे,
1: इरशाद
0: ये हो गई हैं तेरी आर जार के सत्ते।
1: जी, ये हो गई है तेरी
0: ये
1: आर
0: हो
1: जार।
0: गई हैं तेरी आर जार के सत्ते, जो रोशनी मेरी आंखों में कम ज्यादा है।
1: वाह अरे डॉक्टर साहब क्या
2: अरे
1: कहने
2: वाह भाई
1: हैं।
2: वाह भाई
0: ये
2: वाह
0: हो गई हैं तेरी आर जार के सत्ते, जो रोशनी मेरी आंखों में कम ज्यादा
1: ज्यादा
0: है।
1: है वाह वाह
0: और
1: वाह
0: शेर
1: वाह
0: देखें कि उठाए फिरता हूं दुनिया का बोझ कांधों पर,
1: उठाए फिरता
2: वाह
1: हूँ दुनिया का बोझ
0: उठाए
1: कांधों पर
0: फिरता हूं दुनिया का बोझ कांधों पर,
2: वाह वाह
0: कमर में इसलिए कुछ मेरी खम
1: खम
0: ज्यादा है।
1: ज्यादा है
2: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: भाई बहुत
0: कमर में
1: अच्छा है
0: इसलिए कुछ मेरी खम ज्यादा है। और शेर देखें, यकी है जिंदगी मंजिल को पाने वाली है।
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह
0: यकीन है जिंदगी
1: मंजिल को
0: मंजिल को पाने वाली है, बस अब सफर मेरा दो ही कदम ज्यादा
2: आहा
0: है।
2: वाह वाह वाह वाह
0: बस अब
1: बहुत
0: सफर
1: उम्दा
0: मेरा
1: वाह
0: दो ही कदम ज्यादा है। और इस गजल का आखिरी शेर समाज फरमाने,
2: इरशाद
0: जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता।
1: आहा
0: जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता, तुम्हारी जुल्फों में जानम ये खम ज्यादा
2: ज्यादा
0: है।
2: है वाह वाह
0: जो
2: वाह
0: मेरे बस में ही होता तो
2: अरे
0: मैं ही सुल जाता,
1: वाह
0: तुम्हारी
1: वाह
0: जुल्फों में जानम ये खम
1: एकदम
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: है।
1: है
0: और मक्ते का शेर समाज
1: खता डॉक्टर
0: फरमाए,
1: साहब था
0: अमीर कूच करो अपने गांव की जानिब,
1: अमीर कूच करो अपने गांव की
0: अमीर
1: जानिब
0: कूच करो अपने
1: अपने
0: गांव
1: गांव
0: की
1: की
0: जानिब,
1: जानिब
0: हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा
1: ज्यादा
0: है।
2: है
0: हाय हाय हाय,
1: वाह
0: हर एक शख्स यहाँ
1: मोहतरम ज्यादा
0: मोहतरम
1: है
0: ज्यादा है, अमीर
2: वाह वाह
0: कूच करो अपने गांव की जानिब,
2: वाह वाह वाह
0: हर
1: डॉक्टर
0: एक
1: साहब क्या कहने अच्छी
0: शख्स
1: गजल वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: यहाँ
2: वाह
0: मोहतरम
2: वाह
0: ज्यादा
2: भाई वाह बहुत
0: है।
2: अच्छे हैं
0: गजल के चंद अशआर और समाज
1: जी
0: फरमा
1: अशआर
0: ले,
1: जी अशआर
0: मतला समाज फरमा ले,
1: ये इरशाद अली रखा
0: हाले दिल हम जो उन्हें अपना सुनाकर निकले,
2: हाले दिल हम जो उन्हें अपना सुनाकर
0: हाले दिल हम जो उन्हें अपना
1: सुनाकर
0: सुनाकर
1: निकले
0: निकले, देर तक हम भी कहाँ सदमे से बाहर निकले।
2: वाह वाह वाह
0: देर तक हम भी कहाँ सदमे से बाहर निकले।
2: वाह
0: और शेर देखें, उठ ना जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से।
1: आए उठ न जाए कहीं गुर्बत का भरम
0: शर्फ
1: चेहरे
0: साहब
1: से
0: देखे शेर,
1: आता आता रक्षा होता
0: उठ न जाए कहीं
1: चेहरे
0: गुर्बत
1: का
0: का भरम चेहरे से,
1: जी जी
0: बस यही सोच के हम घर से ना बाहर निकले।
2: जी
0: बस यही सोच के हम घर से ना बाहर निकले। और शेर देखें, हम तो समझे।

0: थे यहां हु के सिवा कुछ भी नहीं।
1: वाह,
0: हम तो समझे थे यहां हु के सिवा कुछ भी नहीं, दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले।
1: हाय हाय हाय हाय,
0: दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले।
2: वाह वाह वाह,
0: दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले। और शेर मुलायजा फरमाए अब्बासी साहब, तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को,
1: तेरी चाहत के लिए जब,
0: तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को, वसवसे कितने मेरे दिल के ही अंदर निकले।
1: हाय हाय हाय, अरे क्या कहने, वाह वाह वाह वाह,
0: वसवसे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया,
1: क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह।
0: तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को, वसवसे कितने मेरे दिल के ही अंदर निकले।
1: हाय हाय हाय,
0: और ये भी शेर देखें, तब समझ लेना मेरे यार ने गेसू खोले। तब समझ लेना मेरे यार ने गेसू खोले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर। तब समझ लेना मेरे यार ने गेसू खोले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर निकले। जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर निकले। और ये भी शेर देखें, चांद देखूं ते तेरा रूह मुनव्वर देखूं।
1: वाह वाह,
2: चांद देखूं
0: तो तेरा रूहे मुनव्वर देखूं, चांद निकले तो तेरा रूहे मुनव्वर निकले।
1: वाह वाह वाह,
0: चांद देखूं तो तेरा रूहे मुनव्वर देखूं, और चांद निकले तो तेरा रूहे मुनव्वर निकले। और शेर देखें, हम जहां पहुंचे वहाँ फतह मुकद्दर पहुँची।
1: बेशक बेशक, हम
0: जहाँ पहुँचे वहाँ फतह मुकद्दर पहुँची, हम जिधर निकले फकत तेरे करम पर निकले। हम जिधर निकले फकत तेरे करम पर निकले।
1: क्या करें डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी देख ले, फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली। फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, जब मेरे बच्चे मेरे कद के बराबर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, जब मेरे बच्चे मेरे कद के बराबर निकले। और फिर लहू रंग हुई जाती है खाके गुलशन। फिर लहू रंग हुई जाती है खाके गुलशन, फिर तेरे नौहा गरा देख सड़क पर निकले।
1: वाह वाह वाह,
0: फिर तेरे नौहागरा देख सड़क पर निकले।
2: क्या कहने।
0: और शेर देखें, वक्त पर जो भी मिला उस पे कनात की है। वक्त पर जो भी मिला उस पर कनात की है, पैर अपने कभी चादर से न बाहर निकले। पैर अपने कभी चादर से न बाहर निकले। और आखिरी शेर फजल का, दिल को तड़पाती है रह रहे के जुदाई तेरी। दिल को तड़पाती है रह रहे के जुदाई तेरी, तू जो आ जाए तो दिल से मेरे नश्तर निकले। तू जो आ जाए
1: तो
0: दिल से मेरे नश्तर निकले। और मक्ते का शेर और आपकी रहमत तमाम, कौन है किसका ये पत्थर लगा आकर के अमीर।
1: कौन है
0: किसका ये पत्थर लगा आकर के अमीर, आस्ती से तो मेरे यारों के खंजर निकले। आस्ती से तो मेरे यारों के खंजर निकले।
1: वाह वाह वाह
2: वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सामईन हजरात, अभी आप डॉक्टर अमीर अमरोही साहब से उनकी मुरस्सा गजलें समात फरमा रहे थे। अब इस महफिल मुशायरा के मख्ता यानी आखिरी शायर की तरफ हम बढ़ते हैं, और मैं इस शेर के साथ मोहतरम शरफ नान पारवी साहब को दावत दूंगा कि इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। तो इस्तकबाल कीजिए जनाब शरफ नान पारवी साहब।
1: एक मतलब से अपना शेरी सफर का आगाज करता हूँ। तितलियों की हंसी कतारों को, तितलियों की हंसी कतारों को, आप समझो मेरे इशारों को।

0: वाह वाह वाह,
1: जावेद भाई शेर सुने। एक बस तुम ही रोक सकते हो,
0: वाह,
2: एक बस तुम्हें हो,
1: एक बस तुम ही रोक सकते हो गम की पागल नदी के धारों को, एक बस तुम ही रोक सकते हो
0: क्या कहने हैं, क्या
1: गम
0: बात
1: की
0: है।
1: पागल नदी के धारों को, हम
0: वाह
1: गजल में पिरोते रहते हैं,
2: वाह वाह,
1: हम गजल में पिरोते रहते हैं तेरी पलकों के टूटे तारों
0: क्या
1: को,
0: कहने हैं, क्या
1: तेरी
2: बात
1: पलकों
2: है,
1: के
2: क्या बात है,
1: टूटे तारों
2: वाह
1: को।
2: वाह
1: डॉक्टर साहब खास कर ये शेर
0: इरशाद इरशाद,
1: तवज्जो का तालिब है। ये मनाजिर बदल भी सकते हैं,
0: ये मनाजिर बदल भी सकते हैं, ये
1: ये

0: एक तितली का दिल दुखाया था, एक तितली का दिल दुखाया था, अब तरसते हैं हम बहारों को, अब तरसते हैं हम बहारों को। खास कर ये शेर नाग साहब, जब तवाजुन में फर्क आता है, जब तवाजुन में फर्क आता है, जब तवाजुन में फर्क आता है, गिरना पड़ता है शहसवारों को,
1: क्या
0: गिरना
1: सच्चाई,
0: पड़ता है शहसवारों को।
1: वाह
0: हम
1: वाह
0: गजल में पिरोते रहते हैं
1: वाह
0: तेरी पलकों के टूटे तारों को। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल की कुछ
1: बहुत
0: शेरों
1: बहुत
0: सुनिए
1: शादी
0: प्लीज। वहां से हमने

0: मोहब्बत की इब्तदा की जनाबे कैसे यहाँ, जनाबे कैसे जहाँ तुमने इल्तहा की, जनाबे कैसे जहाँ
1: क्या कहने हैं,
0: तुमने इल्तहा की, लबों से फूल खिलाने का सिलसिला रखना,
1: वाह
0: लबों से फूल
1: खिलाने का
0: खिलाने का सिलसिला।

0: आपते होठों से इल्तिजा किए, वहां से हमने खालिस गजल का शेर रख सब तवज्जो का तालिब हूँ।
1: शादी
0: कभी कभी तेरी आंखों से खुद को देखा
1: क्या,
0: है,
1: वाह वाह वाह,
0: कभी कभी तेरी आंखों से

0: से जहां तुमने इल्तहा किए, आखिरी शेर जरूरतों का पसीना जो आया माथे पर,
1: वाह, जरूरत
0: जरूरत।

0: परों से मुझे हवा की है, कबूतरों ने परों से मुझे हवा की है। मक्ता इंशाल्लाह आपकी जहमत तमाम। शरफ ये बात तुम्हें
1: वाह
0: किस तरह बताऊं मैं,
1: वाह
0: शरफ ये बात तुम्हें किस तरह बताऊं मैं, कि मेरे साथ मेरे साए ने दगा की है, कि मेरे साथ मेरे साए ने दगा की है। वहां से हमने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामाइन, उर्दू मजलिस के इस खास प्रोग्राम महफिल मुशायरा को आप समाअत फरमा रहे थे। इस मुशायरे में जिन शोरा ने अपने कलाम से नवाजा, उनके नाम मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जनाब शरफ नान पारवी साहब, डॉक्टर अमीर अमरोही साहब, जावेद अब्बासी साहब और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर फरमान चौधरी। तो सामाइन हमें इजाज़त दीजिए इस शेर के साथ कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत शुक्रिया।
2: समीन, अभी आप मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। निज़ामत के फ़रज़ अंजाम दे रहे थे डॉक्टर फरमान चौधरी और तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। इस मुशायरे का बकिया कलाम लेकर हम आइंदा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की।

खूबसूरत सी एक मैं कहूँ गीत है और एक बयान है, वो है फिल्म डेढ़ इश्किया से, और इसे अपनी सुरीली आवाज में बयान किया रेखा भारद्वाज ने। अगला जो गीत है वो अचानक बस किसी दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया और सोचा कि क्यों ना ये गीत मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो ये गीत आप जरूर सुनिए, इस गीत को आवाज दी है हरिहरन साहब ने।

0: चीजों के गुमशुदा हो जाने की रपट आप लिखवा सकते हैं, लेकिन कुछ गुमशुदगियां ऐसी होती हैं जिनकी खबर आपको भी नहीं होती। और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म है जीन्स, उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा।
1: लड़की थी या अजूबा?
2: अजूबा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज आप सुन सकते हैं और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। 9:30 पर समय होगा कार्यक्रम चित्र भारती का। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार

0: मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने

0: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
3: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
4: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
5: I think close to 8 cargo planes have arrived.
6: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
5: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna Ukai Songar section of Western Railway. 2-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
8: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
7: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said

0: More than 270 shuttlers from all the 8 northeastern states took part in the tournament, which also served as the qualifying event for the team competitions of the upcoming National Games 2027 to be hosted by Meghalaya. The shuttlers participated in the Under-17, Under-19, Senior Individual and Team Championships over the past 4 days. While Assam bagged 5 gold medals, Mizoram and Manipur secured 2 gold medals each, and Arunachal Pradesh secured 1. Host state Meghalaya secured 4 bronze medals. For Akashvani News, Anumita Das, Shillong.
1: The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the Games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरिकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई है। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश होने का इम्कान है, और 20वें एशियाई गेम्स बाज़ाबता तौर पर जापान में शुरू हो गए हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्रर किए गए नौजवानों को ये तकर्रुरनामे सौंपे गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने नौजवानों को हुनरमंदी से आरास्ता करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की खातिर उन्हें मौके फराहम करने पर लगातार तवज्जो मरकूज की है।
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्राइवेट शोबे में रोजगार के मौकों को तेजी के साथ वसत देने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद से तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के खराजात के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। उम्मीद है कि मस्कूरा स्कीम से तकरीबन 2 करोड़ नौजवान अफराद को पहली मरतबा अफरादी कुवत में शामिल होने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता चंद वर्षों में तकरीबन 40 मुल्कों के साथ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. جناب مودی نے کہا

0: इस तरह के तजारती समझौतों से नई साझेदारियों की राह हमवार होती है और मुल्क के कारोबारी अफराद को मार्केट भी दस्तयाब होती हैं। नेज नौजवानों के लिए करियर के नए इम्कान पैदा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम मौजूद है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा आलमी औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात के मुस्तकबिल और आबो हवा से मुतालिक अवामिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कार्बन अखराज के लिए अक्सर व बेशतर तरक्की पजीर मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मुनासिब नहीं है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनक़िदा COP21 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले ही पूरा किया है। भारतीय रेलवेज ने शुमाल मशरक़ी रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के 607.7 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर चौथे मरहले के कवच बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दस्तियाब सेफ्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। रेल ट्रैफिक की सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया कवच खुदकार तहफुजाती निज़ाम है, जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवेज ने बस्ती रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बंदोबस्त को मंजूरी दी है, जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा इस डिवीजन में सिग्नलिंग के जदीद तर्ज के निजाम से रेलवे के मुतालिका सिग्नल बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और कवच निजाम पर अमल दरामद की भी सहूलत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने 3 बड़े ओहदों पर जीत हासिल की है। ABVP के यश डबास ने सदर के ओहदे की सीट जीत ली है, जबकि रिया छाबड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार दीपांशु शौकीन कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी पर ABVP को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क मुकद्दम की पॉलिसी में नौजवानों के पुख्ता अकीदे की एक अलामत है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि यह जीत मुल्क मुकद्दम के ABVP के नज़रिए में नौजवानों के पुख्ता एतमाद और तलबा की बहबूद के तई उसके अहद की अक्कासी करती है। इंतखाबी कमीशन कल कौमी राजधानी दिल्ली में सभी पोलिंग मराकज के मकामात पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिन भर की इस मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में इसलाह करने, नेज वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतल्लिका दरखास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल अफसर BLO नामजद पोलिंग मराकज पर मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए Form 6, एतराजात दाखिल करने के लिए Form 7, जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इसलाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए Form 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा SIR अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने यह वजाहत की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर ERO अलग अलग केस की बुनियाद पर समाअत के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात पर भी गौर कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर مسلسل کام کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی خصوصی

0: सीरीज सेवा संकल्प अभियान में इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने किस तरह लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली पैदा की है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकज़ी वज़ारतों के साथ शराकतदारी में उनके बराह रास्त और बरवक्त जायज़े के ज़रिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायात के इज़ाले में तेज़ी लाना था। एक दहाई में प्रगति से फैसला साज़ी में तेज़ी आई है, बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों में ताख़ीर की वजूहात का हल निकाला गया है और जवाबदेही का एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। फरवरी में इस साल राज्यसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वज़ीर आज़म की सतह पर प्रोजेक्टों की तफसीली निगरानी से 85 लाख करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को दूर किया गया और उनमें तेजी लाई गई।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: एम्स बीबी नगर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने उजागर किया कि किस तरह प्रगति तरीक़ेकार ने एम्स के लिए पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंतहाई अहम मामलात को हल करने में मदद की।
3: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: ये प्लेटफॉर्म मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल राबते मिलाकर इमदाद बाहमी वफाकियत को फरोग देता है। वज़ीर आज़म ने अब तक प्रगति के तहत 53 मीटिंगों की सदारत की है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: आज नागालैंड में नागा यूनाइटेड विलेज चुमो के दिमा में दो रोज़ा शुमाल मशरक़ी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 से ख़त्म पजीर हुआ, जिसमें पूरे शुमाल मशरक़ से पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और मुंतज़मीन यकजा हुए और उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर तबादला ख्याल किया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद तालीम की वजारत के साथ इश्तराक में नागालैंड हुकूमत ने किया था और इसका मौजू था कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नफाज, शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए नज़रिया, चैलेंज और इम्कानात। आज इसकी अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए त्रिपुरा की आला तालीम, पंचायतों और इंतजामी उमूर के वजीर किशोर बर्मन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर जोर दिया, ताकि शुमाल मशरक़ में तालीम को ज्यादा हुनरमंदी पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाया जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दिल्ली जोनल दफ्तर ने इज्तिमाई सरमायाकारी की स्कीम के ताल्लुक से मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर माली धोखाधड़ी के सिलसिले में एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स अबूरी तौर पर कुर्क कर लिए हैं, जिनकी मौजूदा मार्केट कीमत 42 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने मरकजी जांच ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर छानबीन शुरू की थी। बाद में सीबीआई ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम चलाने में मुलव्विस होने की बिना पर 33 मुलजिम अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म और एक जिमनी फर्द जुर्म दाखिल की थी। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकतदारी को तकवीत बख्शने के इम्कानात हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इत्तलाआती निज़ाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निज़ाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वागले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिरख़्वाह इम्कानात को बरूएकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल अंडमान निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम माहे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा, जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। 2 घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे, खेलों से मुतालिक अहदेदारान और ओलंपिक की एशियाई काउंसिल के सदर शेख जोआन बिन हमद अल सानी ने शिरकत की। 501 मेंबरान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत

दो मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान में एशियन गेम्स के आगाज़ के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि हर एथलीट ने बेपनाह मेहनत की और लगन और अज़्म का मुजाहरा किया है और भारत उन पर फख्र करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एथलीट्स गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में अख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनखड़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations.

कि जो कलाकार थे, जो गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार, सभी एक से बढ़कर एक थे और सभी ने अपने योगदान से उस जमाने को इतना खूबसूरत गीतों भरा बनाया कि आज भी उन्हीं गीतों में हम खोए हैं।

और जब दौड़ की बात हो रही है तो फिर उस दौड़ में तलत महमूद की बात हो या फिर लता मंगेशकर, गीता दत्त, आप चाहे कोई भी नाम ले लें, चाहे मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, तो फिर वो नाम कहाँ गया जिसके गीत को सुनने पर हर वो लय सामने आता था, जिस लय की भी आप बात कर लें, कोई भी लय अछूता नहीं रह सकता था, क्योंकि उनके गायकी में हर एक सुर को इतना तराश कर गाया गया कि वो गोल्डन एरा को और भी खूबसूरत बना दिया।

क्यों कहा था ना कि वो सुर वो राग वो लय उस एरा में आप ढूंढेंगे और आपको मिल जाएगा। मन्ना डे के स्वर में आपने जब इस गीत को सुना तो कुछ अलग तो लगा ही ना, क्यों ना लगे। गोल्डन एरा की तो बात हो रही है, सुनहरे गीत। जी हाँ, गीत सुनहरे में उन गीतों को लिया गया है जो उस जमाने के तो हिट थे ही, आज भी हिट है। तभी तो वो गाना आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि हम भी उस गाने के दीवाने हैं।

जब गीत सुनते हैं तो ये लगता है कि ये दौड़ ही कुछ अलग था। हर एक समय पर, हर एक मूड पर, हर एक सिचुएशन पे गाने मिलना मुश्किल नहीं था। अब चाहे आप किसी भी गीत का नाम ले लें, हर एक गीत जुड़ा है हर एक सोच से, हर एक सिचुएशन से। और अगर आज के दौर में देखें तो आज भी उसी दौर को याद किया जाता है, उसके गीतों से याद किया जाता है। और जब पुराने गीत यानी गीत सुनहरे आपके समक्ष आता है तो आपको भी, आपके ज्ञान में भी एक और बढ़ोतरी होती है, वो तरोताज़ा हो जाता है। क्योंकि गीत जो उस ज़माने के हैं, गोल्डन एरा के, वो आपके दिलो दिमाग पर छाने लग जाते हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं उसी एरा का एक गीत।

ये वही दुनिया है जिसके गीत को हम सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जी हाँ, अभी आपने गीता दत्त की आवाज़ में इस गीत को सुना। वो वक्त ही कुछ अलग था। देखिए, जितने भी गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार की बात हो रही है, वो सब के सब गोल्डन थे फिल्म संगीत की दुनिया के, और उनके गायकी में जो भी गीत हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो सारे के सारे उस जमाने के हिट गाने थे। यानी गोल्डन एरा गीत सुनने में उन्हीं हिट गानों को लेकर आने की कोशिश रही है। फिलहाल आइए सुनते हैं उसी एरा का एक और गीत।

जाके अगर गीतों की बात करते हैं तो वो गीत उस जमाने के, आप देखिए कितनी सादगी है उसमें, इतनी खूबसूरत उसके शब्द इतने खूबसूरत हैं कि आज इस गीत ने हमें और भी कुछ सिखाया। देखिए गीतों की जो खूबसूरती है, उसकी जो सादगी है, उसकी जो इनोसेंसी है, यानी कि इतना प्यारा और लग रहा है बिल्कुल कि एक नादान व्यक्ति बहुत कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानना चाह रहा है। गीतों की सिचुएशन को देखिए, क्यों? क्योंकि हम उसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इन गीतों के बोल सुलभ और खूबसूरत है। गीतों के बोल की बात आती है तो एक गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो

मिस्टर और मिसेज बचपन की इस फिल्मी गीत में गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने अपने स्वर से इस गीत को सजाया। गीतों का सिलसिला चल रहा है, जी हाँ, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और वक्त बढ़ता जा रहा है, सुइयां आगे जाती जा रही हैं, लेकिन मन होता है कि वक्त को यहीं पर रोक दें या वह स्वयं ठहर जाए, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकी। और यही लागू होता है उस जमाने के गीतकार संगीतकार के रूप में। वो क्या है? वो ये है कि वो समय भी यही था कि लोग लिखते थे, उसे अपने स्वर से सजाते थे, लेकिन वो गीत कभी पुराने होते ही नहीं थे। जो कल थे वो आज भी हैं, और हम सब के धड़कनों में उन्हीं गीतों का एक जुनून सा छाया है, क्योंकि वो वक्त ही था गोल्डन एरा।

कितना खूबसूरत सा गीत था, और गीतों में ऐसा समझ में आ रहा था, सुलाया जा रहा है एक नन्हे मुन्ने को। गोल्डन इरा में जो गीतों की खूबसूरती थी, वो फिल्मों के उस सिचुएशन पे होती थी जिस पर गीत लिखा जाना था और जिस पर गाना सुनना बनना था, और उन गीतों को ढाला कई ऐसे गीतकारों ने जिन्हें हम दिग्गज भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके शब्दों ने हमें गोल्डन इरा के गीत दिए। वो गीतकार, वो संगीतकार, वो गायक कलाकार, सभी ने हम लोगों को एक खूबसूरत विरासत में खूबसूरत और सुनहरे गीत दिए हैं। गोल्डन इरा के गीत आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे में। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। मैं हूँ पूजा भारती।

गोल्डन एरा गीत आप सुन रहे हैं, गीत सुनहरे फिल्म संगीत कार्यक्रम मेरे यानी पूजा भारती के साथ। और देखिए ना, गीत सुनते सुनते उसके बारे में जानते जानते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और वक्त बीतेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि गीत ही कुछ ऐसे हैं, हर एक बोल ने हमें बांध लिया था। वक्त खत्म होने से एक बात और भी है, फिर ऐसा वक्त आएगा और फिर ऐसे गीत सुनेंगे, क्योंकि आप हर रोज रात्रि 1:10 से सुनहरे गीत सुनते हैं, और इन गीतों के सफर में आप उन गीतों को याद करते हैं जो आपसे कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन उन यादों को तरोताजा करने का ये एक मकसद है, जिससे कि आप उन गीतों से जुड़े रहें और उन गीतों के जरिए अपने जीवन में अपने जीवन के उन पहलुओं को भी देख सकें। फिलहाल कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, और आखिरी नगमा आपके लिए, मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

खबर है उसी बेखबर को देखते हैं, दुआएं मांग रहे हाय हाय, दुआएं मांग रहे हैं असर को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज से आप जुड़े हैं। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते

0: कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
0: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe

मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: Anil! Idhar aao na. उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती है तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 से। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फ बॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फ बॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is the world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
3: सेमिकॉन इंडिया 2026, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, ये समय होता है कार्यक्रम गीत गजल का। वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गजलें होती हैं और सुकून भरी गजलें होती हैं, और आप सुनिएगा और सोचिए और महसूस कीजिए उन गजलों को, तभी रोचकता बनती है और आनंद भी आता है। एक कोई भी गजल हो, गीत हो या कुछ और हो, लेकिन यदि आप दिल से, मन से यदि आप सुनेंगे तो वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल से शुरुआत कर रहे हैं और ये गजल वाकई बहुत ही शानदार और बेहतरीन गजल है, और हम बताए देते हैं कि आखिरकार कौन सी गजल आने वाली है जिसका आप सभी साथियों को इंतज़ार रहता है। मैं नसीब हूँ, बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना है। एल्बम अदा, लता मंगेशकर की बहुत ही सुंदर, मधुर, खूबसूरत आवाज़ में शानदार रचना है। और ये अदा एल्बम जो है 1992 प्रदर्शित फिल्म रही है और बहुत ही खूबसूरत है। गीत अनजान के हैं और संगीत से सजाया है बासु चक्रवर्ती ने। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली बहुत ही सुंदर गजल।

जी हाँ साथियों, मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं किसी के पास हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गजल की ओर। ये गजल भी अपने आप में बहुत ही अनमोल है, बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, गजल की बात ही कुछ और होती है। उसमें शेर व शायरी, प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द सब कुछ समाहित होता है ना? जी हाँ दोस्तों, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल। जी हाँ, सख्त है इश्क की रह गुजर, एल्बम तस्वीर से ये शानदार रचना गायक अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज में शानदार रचना है। ये रचना 1995 प्रदर्शित फिल्म रही है, एल्बम रही है, और गजल वाकई बहुत ही शानदार है। गजल जो लिखी है वो है शमीम जयपुरी और संगीत से सजाया है अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल।

बहुत ही अनमोल, बेमिसाल, उत्कृष्ट, शानदार गजल अभी आपने सुनी। साथियों, एक और खूबसूरत गजल आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, दिल लगाने की बात। जी हाँ दोस्तों, जब दिल लगता है किसी के साथ तो सच में जिंदगी आसान हो जाती है, और वही अगर दिल किसी और के पास चला जाए तो सच में क्या कहें, बहुत ही खराब लगता है। जिंदगी नीरस हो जाती है, इंसान का जो सोच है वो बदल जाती है, है ना। दिल लगाने की बात, कुछ दिल ने कहा एल्बम, बहुत ही शानदार एल्बम है, और गायक हैं अनूप जलोटा। 2013 की ये एल्बम है, बहुत ही शानदार संगीत से सजाया है इस खूबसूरत रचना को अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर दिल लगाने की बात सोची है। बहुत ही अच्छी बात है और दिल लगाने की बात सोचना भी चाहिए, है ना। और जिसके जिससे आप नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, तो सच में उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन जो जज्बा है, जो सकारात्मक सोच है, दिल लगाने की बात सोची है, कम से कम दूरियां हो गई हैं, लेकिन दूरियों के पास लाने का ये जो जज्बा है बहुत ही खूबसूरत है ना। तभी तो कह रहे हैं कहीं मैं था। जी हाँ दोस्तों, कहीं मैं था एक एल्बम है बहुत ही खूबसूरत, महबूब तलत अजीज़ की बहुत ही सुंदर आवाज़ में शानदार रचना है। महबूब एल्बम 1997 प्रदर्शित एल्बम रही है और संगीत तलत अजीज़ का ही है। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार गज़ल।

वाह क्या बात है, कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत गजल लबी आपने सुनी। वाकई बहुत ही लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत गजल लबी आप सुन रहे थे। जी हाँ, तलत अजीज की आवाज में शानदार गजल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। कह रहे हैं कि आपसे अगेला आपकी कसम, क्या बात है। यूनिक एल्बम, जी हाँ एल्बम का नाम है यूनिक। जगजीत सिंह की आवाज में बेहतरीन रचना। यूनिक एल्बम 1998 में आई थी और खूबसूरत गजल है। गीत यानी कि गजल जो लिखा है सभा सिकरी और संगीत से सजाया है खुद जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आपने सुनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब गज़ल। जी हाँ दोस्तों, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो उत्कृष्ट होती हैं, बेमिसाल होती हैं। उन्हीं में से एक सुंदर खूबसूरत गज़ल आ रही है और यह गज़ल चित्रा सिंह की आवाज़ में शानदार रचना है। पूरे विवरण हम बताए देते हैं। ये एल्बम वाकई बहुत ही खूबसूरत है। एल्बम का नाम है टुगेदर। जी हाँ, टुगेदर यानी कि एक साथ। कांटों की चुभन पाई टुगेदर एल्बम से बहुत ही शानदार रचना, जो 1999 प्रदर्शित एल्बम रही है और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने, और गीत यानी कि गजल सुरेंद्र मलिक गुमनाम ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल होने वाली है, तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

बहुत ही सुंदर, बेहद लाजवाब, खूबसूरत गजल। बढ़ते हैं एक और सुंदर गजल की ओर। आइए सुनते हैं यह शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई उनसे जब जब भी मुलाकातें हुई, वाह सारे सारी रात बस ऐसे ही निकल गई। वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, हरिहरन की आवाज़ में शानदार रचना। ये एल्बम वाकई बहुत ही सुंदर एल्बम थी, जश्न। जी हाँ, 1997 रिलीज एल्बम। गीत मुज़्ज़तर सिद्दीकी और संगीत हरिहरन का था। और सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की अंतिम गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, दर्द भरी, खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह की आवाज़ में प्यार का पहला खत एल्बम से शानदार रचना। गीत गज़ल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म, कर्नाटक म्यूजिक, सी उमा द्वारा वायलिन वादन। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जी उमा द्वारा वायलिन वादन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और 20 सेकंड हो गए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मंगल ध्वनि और वंदे मातरम। श्रोताओं, कुछ जो प्रोग्राम है हमारे, जी हाँ, अगले जो प्रोग्राम है आज 5 बजे न्यूज इन हिंदी, यानी कि हिंदी में समाचार होंगे 5 बजे, और 5:05 समाचार होंगे इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश समाचार, इंग्लिश न्यूज, और भी जानकारियां हम बताना चाह रहे हैं, विवरण दे रहे हैं अगले जो प्रोग्राम आने वाले हैं। 5:10 पर कार्यक्रम समय होगा, 5:10 आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, योग, उज्जायी, प्राणायाम और वृक्षासन।

पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति संगीत, देशगान, जय जय जनहे, आकाशवाणी के वृंद गान के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। 5:30 पर कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बिमल मुखर्जी द्वारा सितार वादन में राग भटियार। श्रोताओं 6:00 हिंदी समाचार सुन सकेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षो से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने निविवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को आज से अगले सोमवार तक अंडमान सागर और अगले 3 दिनों तक पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। हौसी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने सुबह हुई इस कोशिश के काफी देर बाद बयान जारी किया। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेक बॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
3: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. The ministry highlighted that this major initiative is powered by a massive national network combining government youth chapters, spiritual groups, top business chambers, colleges and local organizations to run programs across hundreds of locations. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to a healthier choices and a Nasha Mukt future. This event follows the nationwide launch of the campaign's new phase yesterday. The Election Commission will hold special camps across

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी

प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

听众朋友们，接下来我们播送印度祈祷歌曲，今天的第一首由舒迪萨德里克唱的。